0: with Ketan.
1: Kia ora, namaste, sasrikaal, salam alaikum, bulab ka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show mein jiska naam hai Lunchbox Show. Well, yes, kaisa gaya aapka raat? Raat kaise biti aapki? Was it too cold for you or did you manage to get over it? बताइए. मैं पता है क्या है, मैंने क्या किया था, मैंने 7 बजे से ही हीट पंप शुरू कर दिया बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि यू नो कुछ भी हो, इशू हो, यू नो बहुत ठंडे होने वाले, तो उस वजह से मैंने वो चीज़ नहीं किया. बट ये साहब मुझे बताइए कैसा रहा आपका. मैं हूँ वैसे यहाँ पे 3 बजे तक हूँ यहाँ पे, बट अभी आप अगर बताएंगे तो वुड बी सो ग्रेट. आप मुझे मैसेज करिए 5599 पे और बताइए मुझे कि क्या वो ये जो रात थी वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी आप सभी के लिए, या फिर यू हैपन टू बी इट वॉज ओवर हाइप्ड. बताइए मुझे 5599 पे. बट यस, थोड़ी देर में होम सिक रेमेडीज के बारे में भी बात होगी.

0: Welcome back. आप सुन रहे हैं हम रेडियो 104.2 FM के जरिए या फिर 702 AM के जरिए. Definitely. Oh, sorry, 702 तो बंद हो गया. 87.7 try किया आपने? Try करिए, वो भी बहुत ही बढ़िया सा frequency है. आप अगर सिटी में है तो 87.7 FM के जरिए भी सुन सकते हैं या फिर of course 104.2 FM तो है ही जिसके जरिए सुन सकते हैं. But other two options you already should know by now, आपके जहन में होनी चाहिए. एक तो रोआ ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन पे, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से. आईपैड है तो उस पर भी डाउनलोड कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि भाई तुमने तो फोन बोला है तो मैं फोन पे ही डाउनलोड करूंगा, मैं आईपैड पे क्यों कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है भाई. हम आपको सारी ऑप्शन देते हैं.
1: वैसे यस, एक बात तो कंफर्म है कि होमसिक रेमेडीज में अभी अभी राहुल भाई का मैसेज आया है, उसे हम पढ़ते हैं.
0: मेरा हो गया भाई, मैं तो खरास आने लग गई. मेरे को तो इधर तो आप मिमिक्री करना इतनी बहुत ही मुश्किल है. वैसे यहाँ पे मिमिक्री से याद आया, यहाँ पे कोई है मुझे जो सुन रहा है अभी जो बहुत ही बढ़िया मिमिक्री करता है? वुड लव टू हियर यार. मतलब कोई मिमिक्री आर्टिस्ट हो जो निकाल के यू नो आवाज़ निकाल सकता हो बॉलीवुड एक्टर्स की, ऐसा कुछ तो बताइए मुझे. टेक्स्ट करिए 5599 पे और यहाँ पे कुछ टास्क वास्क होगा यार, मज़ा आएगा. बट राहुल भाई का मैसेज आया पहले वो पढ़ लेते हैं. वो कहते हैं, Kira Kitten, yesterday I tried making a proper desi tadka with oil and spices in my flat kitchen and within 2 minutes, the smoke alarm started blaring at volume, full volume. That's so cool, yaar. Cooking is all about open flames, outdoor barbecues and rich aromas that bring everyone together. My flatmate was saying the exact same thing. Back home, the smell of tadka floating through the house means dinner was ready. But here in Auckland, it means sheer panic and standing near open windows in freezing weather. How do we enjoy our comfort food without causing a full fire drill every single night? यार पता है क्या है, ये जो इसका सुझाव है ना, मैं एक्चुअली बताऊंगा ना, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा. जो मुझे बाद में जाके रियलाइज हुआ, मैं भी जब नया नया था मैं ऐसे ही करता था. लाइक यू नो व्हेन वी आर कुकिंग, ऑब्वियसली हम इंडियन फूड बनाते हैं तो उसके लिए स्मोक बहुत ज़्यादा होना इज नथिंग न्यू. बट इफ़ यू आर स्टेइंग इन न्यूजीलैंड हाउस तो वहाँ पर सोच समझ के करना पड़ता है हर एक चीज़. बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, हम ऑब्वियसली हर दिन यही बनाते हैं. अभी वी कैन नॉट हैव जस्ट बॉइल्ड फूड एंड ऑल, बहुत ही मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. तो हम क्या करते थे, हम जो मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को, एंड प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस. मैं उसका भी आंसर दूंगा कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए. वेल, जब हम कुकिंग करते थे तो हम वो जो होता ना स्मोक अलार्म वाला, तो वो हम निकाल दिया करते थे जब जब खाना बनाना होता है, और फिर हम वापस लगा लेते थे. बट देन वी रियलाइज, ये एक इंसिडेंट हुआ था कि किसी फ्रेंड ने भी ऐसे किया था और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं था. बेसिकली ही जस्ट लेफ्ट इट एंड ही फॉरगॉट टू पुट इट बैक. सो क्या हुआ कि वो जो कुकिंग थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि उसका जो किचन, ऑब्वियसली यहाँ के घर जो है मोस्टली लकड़ी के ही हैं, तो वो उस लकड़ी ने आग पकड़ ली. बट टचवुड ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट जस्ट इन केस अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचता और वो जो थोड़ी सी आग लगी थी किचन के वुड के वहाँ पे, इट वुड हैव बीन द होल हाउस. तो मतलब जस्ट इमेजिन. सो दैट्स व्हाई किसी रीज़न की वजह से ही वो वहाँ पे रखा हुआ है. अभी आपके साथ नहीं हो रहा या कभी हुआ नहीं है, दैट डजंट मीन कि आगे कभी नहीं हो सकता. जी हाँ, ये आप दिमाग में डाल दीजिए. तो इसलिए वेन एवर यू यूजिंग, सो मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने किया है जो मैंने, ऑब्वियसली टचवुड मेरे साथ नहीं हुआ, बट आई हैव सीन माय फ्रेंड जो उसके थ्रू गया है, एंड देन ऑब्वियसली उसका जो ओनर था उसको निकाल दिया था कि भाई तू निकल, भाई तू यहाँ नहीं रह सकता, बिकॉज आई स्ट्रिक्टली टोल्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट यू कैन नॉट एट ऑल रिमूव द, कि कुछ भी नुकसान हुआ ये नुकसान को इसको भरपाई करनी पड़ेगी ओनर को. सो यस, अगर आप भी ओनर हैं तो आप तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करो, ये लगाओ ही लगाओ. बट यस, बने रहिए, अभी बहुत सारी बातें करेंगे. सो यस, दिस इज़ माय यार एग्जैक्टली तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आपके किचन के पास विंडो है तो आप विंडोज़ ओपन करके कुकिंग करिए, आई नो ठंडी थोड़ी रहेगी क्योंकि ऑब्वियसली अभी एक दो दिन से तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं हो कि बहुत ही माइनस में भी आना शुरू हो जाए, बट उससे ज़्यादा कंफर्ट तो यही, पहले तो आप पूरा जैकेट वैकेट पहन लो, मस्त टोपा लगा लो सर पे ताकि ठंड नहीं लगे, और अगर कुकिंग कर रहे हो तो कोशिश करो कि वो सारी चीज़ें एग्जॉस्ट भी आप चालू करो, उसको तो हटाओ, उसको तो हाथ में मतलब वो तो चालू होना ही चाहिए, उसको हटाओ ही मत जो स्मोक अलार्म होता है, और प्लस ये है कि एग्जॉस्ट चालू कर दो, उसके बाद विंडोज़ ओपन कर दो सारी वाइल यू कुकिंग, थोड़ी देर की बात है बट आई एम टेलिंग यू दिस इज़ गोइंग टू बी वर्थ, आप ट्राई करके देखिए और बताना है को। वैसे यस, किसी और के पास अगर सुझाव है इसके बारे में कैसे स्मूथली कर सकते हैं तो मुझे बताइए, 5599 पे कॉल भी कर सकते हैं 0800 004 866 पे 104.2 FM के जरिए सुनिए, और यस रोआ ऐप के जरिए भी।
2: लंच बॉक्स विद केतन,
3: मुझे पसंद है लड़का।
2: We'll be right back.

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rover.
1: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
2: Shower dome.
3: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
4: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
5: Please use your imagination for the following ad.
6: If I won Powerball, the first person I'd tell would be and would surprise all our friends by
5: Imagine winning $8 million this Saturday. Play in store or online.
7: The moment that matters. When you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
8: Hi, and welcome to the 80s. We love acid wash jeans and overpowering aftershave as much as the next guy. But we also have some out-of-date notions about HIV you don't want to keep. Fact is, HIV can't be passed on through everyday contact, like shared food, hugging, or kissing. And with your modern-day treatment, people with HIV can stay well and have zero chance of passing it on to partners. Out of date on HIV? Get the facts. At healthnz.govt.nz/HIV.
2: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
9: Lunchbox with Ketan.
10: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
9: Hum. Office shout out.
11: ऑफिस शाउट आउट के लिए आप मुझे टेक्स्ट भेज दीजिए क्या खा रहे हैं अभी और कहाँ से यू नो वेदर यू हैव ऑर्डर इट फ्रॉम समवेयर और यू आर हैविंग यू प्रिपेयर समथिंग फ्रॉम होम या फिर आपके घर वाले या मॉम ने या फिर आपकी वाइफ ने या फिर आपके हस्बैंड ने या फिर आपके बॉयफ्रेंड ने या फिर आपके डैड ने अगर खाना बनाया है तो बताइए मुझे और 5599 पे बता सकते हैं बट यस फैमिली से याद आया माय फैमिली इज़ कमिंग माय मॉम डैड्स आर कमिंग ओवर नेक्स्ट वीक यार काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और गोना बी सो गुड यार मतलब फैमिली फाइनली ईहान को मिलेगी फाइनली ईहान अपने दादा दादी से मिलेगा So I'm really, really looking forward to it. Hopefully, सब बढ़िया रहा emotions में नहीं गया तो मैं vlog भी बनाऊंगा कि वो आए यहाँ पे enjoy किया उन्होंने क्या है क्या है क्या नहीं किया But yes, आप भी मुझे बताइए ऐसा कोई like incident when you have a child and उससे पहली बार उसके नाना नानी या फिर उसके दादा दादी से मुलाकात हुई तो किस तरह का reaction था क्या preparation करिए आप ये भी मुझे बता सकते हैं 5599 पे आप call करिए मुझे 0800-004-866 पे और बताइए कि जब भी यू नो योर मॉम डैड या फिर योर इन लॉज केम ओवर हियर जब आपके बेटे या बेटी ने पहली बार अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से नानी नानी से मिले थे तो किस तरह का माहौल था क्या यू नो क्या अरेंजमेंट की थी आपने उनको वेलकम करने की या फिर कुछ अगर आपने वीडियो बनाया है तो बताइए वो सिनेरियो आप मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कोई है यहाँ पे जल्दी से कॉल करिए, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता ना यार कि सब सिंगल्स हो, कोई पेरेंट्स नहीं हो यहाँ पे, हो सकता पेरेंट्स भी हो, वो भी अपना शेयर कर सकते हैं बातें। 0800-004-866 पे कॉल करिए, 0800-004-866 पे। जब तक फोन नहीं आता है तब तक फटाफट में बता देता हूँ कि काफ़ी एक बढ़िया अभय कोहली जो कि एक प्रिंसिपल एडवाइजर इन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम गाइडेंस एंड एंगेजमेंट एट एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड MBIE में काम करते हैं, और उन्होंने हमारे साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है जहां पे उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। या तो आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं या फिर खुद आप मालिक हैं, तो क्या राइट्स हैं दोनों के, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के, और प्लस ऑफ कोर्स कितनी छुट्टियां अलाउड है, कितनी सिक लीव ले सकते हैं, एनुअल लीव्स का क्या अपडेट है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। तो वो पता आप हमारे पॉडकास्ट से कर सकते हैं, और ये काफ़ी कुछ चीज़ें बताते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड लीव्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, हाई प्रोफाइल बस्ट के बारे में बताते हैं, राइट्स एट वर्क के बारे में भी बताते हैं कि आपके राइट क्या होते हैं। काफ़ी ऐसे स्टोरीज आपने सुनी होगी दैट यू नो माय एम्प्लॉयज इज आर नॉट गुड, और या फिर मेरा बॉस इज़ नॉट गुड, तो आप वो चीज़ भी पता कर सकते हैं। प्लस ऑफ कोर्स फ्री सपोर्ट एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे एम्प्लॉयर हो या खुद एम्प्लॉय हो या फिर जॉब करने वाले हो, ढूंढ रहे हो, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप मुझे सिंपल बस ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए, आपको एक लिंक मिल जाएगी और उसके थ्रू यू कैन कैच अप। बट यस, बिट्स एंड कन्वर्सेशन के लिए आप मुझे BF लिख के 5599 पे भेज दीजिए, ताकि विजय एंड पूजा के जो कन्वर्सेशन होते हैं ब्रेकफास्ट शो में उसके बारे में आपको मिल सके। एंड यस, अगर आप नए लिसनर हो और पुराने भी हो तो भी कोई बात नहीं, आप YouTube पे जाइए और सर्च करिए केतन सफायर या फिर सफायर केतन करके सर्च करिए, यू विल गेट द फुल वीडियो। मैंने 10 जुलाई को किया था रिलीज और अभी भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो डू लेट मी नो, बताइए मुझे 5599 पे क्या लगता है आपको, कैसा रहा वीडियो, आप रिव्यू दे सकते हैं मुझे यहाँ पे, आप प्लीज़ वहाँ पे भी कमेंट करिए, कैन बी सो ग्रेट। बट यस, फ़ोन नहीं आया यार, मुझे लगा शायद स्टोरी सबके पास होती है, सब बयां करना चाहते हैं, सब शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे, आप करते तो बहुत ही बढ़िया रहता। 0800-004-866 पे अगर ऑफ एयर भी कोई कॉल करके बताना चाहता है वो भी आप कर सकते हैं। बट यस, 5599 पे भी मैसेज कर सकते हैं। आज तो हद ही होगी ना, कॉल आया ना फ़ोन आया यार, मतलब इतनी देर में तो आ जाता है। चलिए लेट्स वेट, अगर पता नहीं शायद ऑफलाइन आ जाए किसी का फोन।
2: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मैंने वैसे गाना ये स्टॉप अभी इसलिए किया है बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्चुअली, एक फोन आया था मुझे, आया है एक्चुअली, और वो बात करना चाहते हैं। मैंने जैसे कहा था कि स्टोरी अबाउट जब आपके यू नो आपका जो बेटा है या बेटी है उसका पहली मुलाकात जब हुई थी अपने दादा या दादी से या फिर नाना नानी से, तो वो उसका एक्सप्रेशन कैसा रहा। तो ऑफ एयर मुझे कॉल आया है और वो अपनी कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग हिम ऑन एयर। थैंक्स टू हिम, हिज नेम इज कुणाल, सो ही वुड लव टू शेयर द स्टोरी ऑफ व्हाट ही हैज बीन। हाय कुणाल, हाउ आर यू?
1: Good, good, Ketan. How are you?
0: Great, great. Thank you so much. So yeah, you tell me what was the story about?
1: हाँ सर, ये दिस लाइक 2017 की स्टोरी है। मैं थोड़ा बहुत वीजा के इश्यूज हुए थे।
0: हाँ जी।
1: एंड माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट, सो देन दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी हैड टू कम बैक हियर, लाइक शी वेंट टू इंडिया टू गेट इट डिलीवर।
0: ओके।
1: और क्योंकि जॉब सर्च और वो सब था, बट देन लास्ट मोमेंट पे एम्प्लॉय ने डिच किया, जिसकी वजह से मुझे उसे वापस बुलाना पड़ा, because she was the main applicant and I was the dependent.
0: All right.
1: तो वो सब था, but then luckily visa sort out हो गया, सब कुछ हो गया after she came back. But we had to leave my daughter back in India. She was at that point of time 2 months old.
0: Oh.
1: It was a bit hard time, and then after almost like when she turned 11 months, 11. That's where we could able to go and get her back to New Zealand. So that was the story. But that point of time was very difficult.
0: Right.
1: Wife, जब मैं गया तभी wife यहाँ पर ही थी। मैं पहले गया था।
0: Right.
1: She was working at that time. So मैं गया मिला। She was at my in-laws place.
0: Right.
1: But we used to do a video call every day.
0: Okay.
1: फिर मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचा, मिला उसे। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 1.5 hours अलोन विद हर इन दैट रूम।
0: राइट।
1: एंड फिर उसके बाद जो बॉन्डिंग बनी है टिल डेट, यस,
0: दैट्स सो कूल यार।
1: वो एक है, मेक अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, सो आई वुड रेकमेंड दैट आप रेगुलरली वीडियो कॉल कीजिए उनसे।
0: हाँ।
1: और एंड कीप टॉकिंग अबाउट देम।
0: हाँ, वो मैं करता हूं।
1: शी विल, yes, she will, he will realize that ke kitni grandparents hai, and thoda bahut unka automatically affection, and leave them alone for time being.
0: Ji,
1: jab aate hain to for sure they will definitely love it, and bachcha bhi unse kafi pyar karega, aur yeah, things will go quite smoother.
0: थैंक यू सो मच कुणाल भाई, मैं काफ़ी आई कैन रिलेट एज वेल कि कितना किस यू नो सिचुएशन से आप गुजरे होगे। आई नो दैट आप ये भी नहीं था कि आप यू नो यू मेड योर ओन डिसीजन, इट वॉज जस्ट सिचुएशन, सरकमस्टांसेस ऐसे थे दैट यू कुडंट डू एनीथिंग, तो वो भी ज़रूरी था एंड ये भी ज़रूरी था, बट आई एम ग्लैड दैट यू हैव फाइनली मैनेज टू यू नो गो थ्रू विद इट। एंड अभी कितने साल के हो गई वैसे बेटी आपकी?
1: अभी 9 साल, मतलब 8 रनिंग है उसका।
0: राइट।
1: एंड यस, शी एंड वन ऑफ अवर ग्रुप वो उसके सफायर 2 में भी है।
0: अरे,
1: शी इज नॉट द पार्ट बट ग्रुप है वो पार्ट के अंदर।
0: क्या नाम है ग्रुप का?
1: केस। केस।
0: ओह, खोटे सिक्के। ओह नाइस नाइस, दैट्स सो कूल टू नो। क्या नाम है आपकी बेटी का?
1: आशी।
0: आशी।
1: Yes.
0: Right. And does she know about does she know about jo 11 month ka wo time nikla hai, does she know about it?
1: A little bit.
0: Right.
1: We tried not to say much in front of her, but she know a little bit about it.
0: True.
1: Jab kabhi bhi kisi parents ke saath kabhi hum baat karte hain,
0: ji,
1: to unhe pata hota hai ki haan bhai main meri baat kar raha hai.
0: Ji. That's so cool. Thank you so much, Kunal भाई, आपकी बात शेयर करी। Actually, you know, बहुत ही दिल को छू गई आपकी बात। But again, very proud on you as well कि वो जो सिचुएशन आपने फाइट किया and then you just managed to go through it. But thank you so much बताने के लिए यहाँ पे भी।
1: हाँ जी, it was more of my wife's effort because she was not at all ready कि 2 महीने की बच्ची को छोड़ के आना है।
0: True. वो बहुत ही मुश्किल होता है।
1: Quite a lot difficult phase. जहाँ पे फैमिली, बोथ साइड ऑफ द फैमिली, उनका भी सुनना पड़ा काफी सारा।
0: True.
1: But eventually at the end of the day, आपकी मेहनत कहते हैं ना कि रंग लाती है और टुडे वी हैव गॉट हाउस हियर एंड एवरीथिंग सो यस
0: दैट्स सो
1: रियली प्राउड ऑन ईच वन ऑफ अस
0: परफेक्ट परफेक्ट वेल कभी मौका मिला तो उन्हें लेके आइएगा आप रेडियोथॉन होगा तो तभी उनको लाना अगर इफ पॉसिबल आई वुड लव टू सी हर
1: श्योर डेफिनेटली
0: परफेक्ट थैंक यू सो मच कुणाल भाई यू हैव अ लवली डे थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी थैंक यू बाय
1: बाय बाय

0: Breakfast with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम।
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
4: ये मैं

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: सिर्फ रोवा पर।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
5: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
6: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
7: Lunchbox with Ketan.
8: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी। हम
9: चटनी शॉट्स। चटनी शॉट्स के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे खबर बताता हूँ भी लेटेस्ट, यू मस्ट हैव फेल्ट इट यस्टरडे, न्यूजीलैंड में तेज कोल्ड स्नैप की वजह से टेम्परेचर्स हर जगह पर कई रिकॉर्ड के करीब पहुंच चुकी है। ताऊ मारुनुई में करीबन -6.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जो 2007 के बाद सबसे दूसरा सबसे ज़्यादा ठंडा दिन रहा है 2007 के बाद। ऑकलैंड ने 2021 के बाद अपनी सबसे ठंडी सुबह देखी है, जबकि माउंट कुक एयरपोर्ट के टेम्परेचर जो है करीबन -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुके हैं। मेट सर्विसेज ने वार्निंग भी दी है कि अगले दिन भी काफ़ी तेज़ फ्रॉस्ट और ब्लैक आइस हो सकती है, इसीलिए ड्राइवर्स और लोगों को एक्स्ट्रा सावधानी रखने की सलाह दी है।
10: Dil se dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: चलिए बात करते हैं एक सवाल की. एक सवाल मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मुझे फट से जवाब देना है 5599 पे कि ये कौन सी फिल्म में का डायलॉग है और ये डायलॉग डिलीवरी जो है कौन सा एक्टर या फिर कौन सी एक्ट्रेस कर रही है. सो यप, देयर यू गो, आई एम गोना प्ले इट नाउ.
3: अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया.
2: वेल यस, ये था एक मूवी का डायलॉग. बताइए मुझे 5599 पे कौन सी मूवी का था और ये डिलीवरी जो थी वो किसने की है, आई मीन डायलॉग की. 5599 इज द नंबर.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हालचाल जान लेते हैं। 13 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 2 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, सेम कल की तरह। हो सकता है आपको फील्स लाइक और भी ज्यादा मिनिमम हो, पर यस आज का सनसेट होगा 5:41 PM पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच वॉक शो, हैपनिंग बाय वन एंड ओनली केतन फ्रॉम हम 104.2 एफएम के जरिए। साथ में यस आप 87.7 एफएम के जरिए भी सुन सकते हैं, रोआ ऐप के जरिए भी सुन सकते हैं। और यस आप एक बार ट्राई करके देखिए 87.7 की फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी आ रही है, लेकिन वो सिर्फ सिटी तक ही है। लाइक सिटी में हो तो ही आपको सुनाई देगा, ऐसे आप कहीं और हो, पापड़ टोटे में या मनुरेवा या फिर कहीं और हो तो वहाँ पर नहीं पकड़ेगा वो। तो अगर हो सिटी में तो ट्राई करके देखिए और बताना मुझे कि कैसी फ्रीक्वेंसी उसकी। बट यस एट द सेम टाइम रोआ ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आपको मिल जाएगा। और आप उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट hum.roa.nz उसके जरिए भी हमें सुन सकते हैं। बट रोआ ऐप के जरिए सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसी ऐप के थ्रू भी मिल सकती है। एंड यस 3 बजे तक मैं हूँ, 12 बजे से यहाँ पे हूँ और बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस आर में आपके लिए। बॉलीवुड की खबर भी लेके आऊँगा, लेटेस्ट खबर भी लेके आऊँगा और देखते हैं बीच में कुछ कॉन्टेंट, लंच टाइम रेंट लाइन की बातें भी होगी थोड़ी देर में। सो बस सुनते रहिए, एंजॉय करिए मेरा शो।
0: बचाओ क्या

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए आपको मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि थोड़ी देर में आप सभी के लिए मैं लंच टाइम रेंट लाइन के लिए फ़ोन लाइन जो है वो ऑन करने वाला हूँ। सो यस, आपके पास कुछ ऐसा कंटेंट है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो 5599 से नंबर जहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट भेजेंगे और बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो मेड यू फील लाइक क्या भाई, क्यों, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, समथिंग लाइक दैट, राइट। बट यस, 5599 से नंबर जहाँ पे अगर टेक्स करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट फोन करेंगे तो वुड बी सो सो ग्रेट। 0800 4866 पे थोड़ी देर में।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
4: अपने घर को रेडी कीजिए माइटी 10 मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन के साथ, क्योंकि अभी पाइए सीलिंग इंसुलेशन फ्रॉम जस्ट 69.95 पर बेल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एलिमेंट आर 3.6 सीलिंग इंसुलेशन नाउ अवेलेबल एट माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
8: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
10: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
10: Available at selected branches. T's and C's apply.
11: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
12: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 7kg clothes dryer just $249. 9kg heat pump dryer just $499. 10kg 9-star energy rated heat pump dryer $899. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
1: TradeDepot.co.nz. बॉक्स विद केतन।
13: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम लंच टाइम रेंट लाइन।
0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स और लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आप मुझे कॉल करिए 0800-4866 पे, पर उससे पहले आपको बता देता हूँ दैट आप मुझे मैसेज, मेरे को एक मैसेज आया, मैं जो उसे पढ़ूंगा, बट उससे पहले लास्ट आवर में मैंने एक सवाल किया था आप सभी से, एक मैंने डायलॉग चलाया था, प्ले किया था मैंने, और उसे पूछा था आप सभी से कि बताइए कौन सी फिल्म का है और किसने, कौन सी एक्टर या एक्ट्रेस ने वो डायलॉग बोला है। So yes, the right answer was Bajirao Mastani, 2015 में रिलीज हुई थी और प्रियंका चोपड़ा का ये डायलॉग था, यानी कि उन्होंने इस सीन में आंखों में आंसू लेके ये डिलीवरी की थी, आई मीन डायलॉग की। सो यस, दो लोगों का मैसेज आया, दो का सही है। एक तो मदनी मदनी मैडनी Madni. And another one, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, but that's completely fine. Thank you so much, यार. Thank you so much आपके मैसेजेस के लिए. चलिए ये जो मैसेज आया regarding lunch time rent line, उस पे थोड़ी नजर डाल देते हैं. अर्जुन वो कहते हैं botany से he had a funny rent. He said a few weeks ago, मतलब ये उनके टेक्स्ट में लिखा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ. He said Arjun from botany had a funny rent. One of his colleague asked, bro, can I borrow your phone charger for just 10 minutes? Arjun said, sure, no worries. The next day, his charger was still on the other person's desk. He waited another day, but nothing happened. Finally, he asked, bro, have you seen my charger? The colleague looked around, opened a few drawers and said, oh, I think I accidentally took it home. Arjun laughed and said, he got his charger back almost a week later. Now, whenever someone asks to borrow it, he jokes, you can use it here, but the charger is not leaving my desk. that's cool, yaar. ये तरीका सही है. मतलब काफी मतलब ये चीज होती है, भाई मैं इसको दे तो रहा हूँ अपनी चीज, but ये मुझे वापस लौटाएगा नहीं लौटाएगा. आपके साथ हुआ ऐसा? मतलब मेरे साथ तो बहुत हुआ है, बट ऑब्वियसली नॉट यहाँ पे हम पे बिल्कुल नहीं होता है. हम पे तो एक्चुअली ना मैं चार्जर लेके नहीं आता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, बट कार में चार्ज कर लेता तो ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि 3 घंटे का शो होता है तो यूजुअली ज़रूरत पड़ती नहीं है. बट आप अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं कहीं पर और आपके साथ अगर ऐसा होता है, कैसे हैंडल करते? लाइक समवन आस्क्ड यू कि भाई चार्जर चाहिए, तो व्हाट डू यू आल्सो डू द सेम थिंग व्हाट ही लर्न फ्रॉम, या फिर आप पहले वाले करते हैं भाई ठीक है और फिर आप मतलब वापस आपको मिलता नहीं है. सो यप, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं आप मुझे जवाब दे सकते हैं 5599 पे. बट अर्जुन ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है दैट यू कैन यूज़ इट हियर बट द चार्जर इज नॉट लीविंग माई डेस्क. दैट्स सो कूल आंसर यार ब्रो, सो प्राउड ऑफ यू.
1: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: non-stop Bollywood.
1: Hum,
0: playing Bollywood's biggest hits.
2: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। आज के दिन क्या हुआ था, हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड पे बात कर लेते हैं। 6 अगस्त की बात है, आज की तारीख, इफ यू डोंट नो द डेट, 1936 की बात है, जब ये बर्लिन ओलंपिक्स में जैक लवलॉक ने 1500 मीटर रेस जीतकर न्यूजीलैंड का ओलंपिक पहला ओलंपिक एथलेटिक्स गोल्ड मेडल हासिल किया था। उन्होंने 3:47.8 का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और रेस के लास्ट 300 मीटर्स में उनकी तेज स्प्रिंट्स ने सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया। ये जीत न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे यादगार अचीवमेंट में से एक माना जाता है। क्या बात है यार, सो ग्रेट टू नो, बट हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी न्यू अबाउट इट। वैसे आप मुझे बताइए कि न्यूजीलैंड ने अभी तक ओलंपिक में कितने मेडल्स, गोल्ड मेडल जीत चुकी है अभी तक, लाइक इन द हिस्ट्री।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं एक ऐसे इवेंट की जहां पे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स और यू नो अड़ोस पड़ोस पूरे परिवार के साथ आप जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं साथ में 5 साल से छोटे के, तो उनके लिए भी फुल सुविधा है। खास बात पता है क्या है, अगर आपके बच्चे हैं साथ में एंड यू कैन नॉट लीव देम होम, वी वुड हाईली रिकमेंड कि उनको घर पे छोड़ने के बजाय उनको भी लेके आइए। बट जस्ट इन केस अगर आप लाते भी हैं तो उनकी एंट्री जो है कम्प्लीटली फ्री है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रवितेश देव, जो कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने इनक्रेडिबल बैंड के साथ, लाइव बैंड के साथ, आपकी शाम को यादगार बनाने, एक डिवोशनल म्यूजिक, कुछ फ्यूजन भजन और कीर्तन के साथ। जी हाँ, एक्सपीरियंस करें बहुत ही अमेजिंग सा शो जो होने वाला है, भजन जैम्स लाइव सैटरडे 22nd ऑफ अगस्त को 7 बजे के बाद, वैदिक सेंटर, 32 ग्लासगो एवेन्यू, पापा टोयोटो पे। टिकट जो है सिर्फ $30 है। एंड एज आई सेड, अगर आपके 5 साल का बच्चा है या फिर उससे छोटा है तो वो उनके लिए एंट्री जो है कम्प्लीटली फ्री है। स्नैक्स एंड कावा विल बी सोल्ड एज वेल। टिकट जो है आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन जाके eventbrite.com पर जाकर, या फिर जयेश फ्रेश पापा टोयोटो, वेली फ्रेश पापा टोयोटो, शिव प्रसाद कैल्सन से आप ले सकते हैं। तो जल्दी से अपने कैलेंडर में डाल दीजिए, बट टिकट लेना ना भूलिए बिफोर इट गेट्स सोल्ड आउट।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: Secret destination, 2 lucky people, 1 unforgettable adventure.
3: On vacation,
4: take a trip,
5: get away.
1: Plus, $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum.
6: I'ma get away.
1: Listen on 104.2 FM and Rover.
7: Imagine you're a snowboarder looking down a mountain. Zero crowds, zero noise, zero wind, zero ice, and zero things to worry about. It's just you, your fellow compadres, and at the end of the run, an ice cold Zero by Corona. Corona Zero, zero alcohol served everywhere this winter with a lime.
8: This Thursday.
9: No time, Briscoe's lady. The sale is for one day only. So hurry in for up to 60% off all electrical heating, duvetners, kitchen appliances, sheets, and much, much more. Thursday only. Open late at Briscoe's.
8: See online for T's and C's.
10: Get fresh deals from the fresh food people at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, or yummy ambrosia apples, $4.79 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
11: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ,
12: अच्छा
11: बताओ, तो अंडा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
12: मिसेस सिंह,
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
14: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
15: लंच बॉक्स विद केतन।
16: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
17: इसके पीछे
1: हम
15: लंच के मंच पे।
0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। एंड यस, अभी बॉलीवुड की खबर लेके आ गया हूँ। नमित मल्होत्रा की बिग बजटेड फिल्म रामायण की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट जो है वो कंफर्म हो चुकी है, 6 नवंबर 2026 अनाउंस की गई है। फिल्म को दिवाली वीकेंड पर एक ही दिन दुनिया भर के मेजर मार्केट्स में रिलीज की जाएगी। और इस एपिक मूवी को नीतीश तिवारी ने डायरेक्ट किया है, और इसमें रणवीर कपूर राम का रोल, श्री राम भगवान का रोल कर रहे हैं, साई पल्लवी जो कि सीता माता का रोल कर रही है, और यश रावण का रोल कर रहे हैं। वैसे यस, मेकर्स का एम है कि फिल्म को ग्लोबल लेवल पर एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के रूप में प्रेजेंट करना, जो लग रहा है काफ़ी हद तक दैट इट माइट गोना बी सो अमेजिंग, बिकॉज काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, पॉजिटिव बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो जाइए यूट्यूब पे और देखिए, रामायण का जो ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ है, मुझे तो ऑब्वियसली गूज बम्प मिले यार, लाइक लिटरली व्हेन आई सॉ द ट्रेलर, ट्रेलर छोड़ो मतलब टीजर के टाइम में भी हुआ था, एज आई सेड कि मैं बहुत बड़ा बिग फैन हूँ यार, ये अपनी जो हिस्ट्री है हिंदू लोगों की जो हिस्ट्री है उसको जान के आई वॉज सो इम्प्रेस एंड सो यू नो एकदम गूज बम्पी जैसा मेरा फील हुआ था. सो यस, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और देखिए. बट यस, एट द सेम टाइम लेट मी जस्ट पुट ऑन कि दिल वाले दिल दीवाना हो गया ने अभी तक 0.12 का करोड़ का कलेक्शन किया इंडिया से. भाई तेरा स्टार है 0.83 आई थिंक फ्लॉप हो गई है, सुपर फ्लॉप हुई एक्चुअली. बैंड बजा बारात 0.002 और कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसने अच्छा कलेक्शन किया हो. स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इज हैज ऑलरेडी क्रॉस 300 crores फ्रॉम इंडिया अलोन. वाओ, दैट्स सो कूल यार. बट यस, कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली है इस वीकेंड, यानी कि कल के दिन और कल के बाद. आज 6 तारीख है, कल है 7 तारीख. ओ माई डॉग रिलीज होने वाली है कल. उसके बाद बंटवारा नेक्स्ट हफ्ते यानी कि 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है. पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे के दिन रिलीज होने वाली है. और इस फिल्म में एक्चुअली बताया है गया है कि कैसे रिलेशन, यू नो, वन ऑफ द रिलेशन वॉज वेरी गुड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया जब बंटवारा हुआ था. और काफ़ी पाकिस्तानियों को बोला कि यू जस्ट गो एंड स्टे इन, यू नो, जो ऑब्वियसली मुस्लिम्स लोग थे वो इंडिया में जो रह रहे थे उनको कहा था कि तुम पाकिस्तान में जाके शिफ्ट हो जाओ एंड ऐसे अलोकेट कर रहे थे. और सेम वॉज फॉर हिंदू एज वेल, जो पाकिस्तान में हिंदू थे तब के उनको भी शिफ्ट करके कहा जा रहा था कि तुम इसमें रहो. बट देयर वॉज वन पाकिस्तानी लेडी जो नहीं चाहती थी अपना घर छोड़ना. और वहाँ पे नए एलोकेट होते हैं हिंदू, हिंदू फैमिली होती है तो किस तरह से हिंदू फैमिली उस मुस्लिम फैमिली को बचाती है. जस्ट टू पुट अ पोर्ट्रेट अबाउट दैट इंसानियत इज़ वे अहेड देन एनी वॉर, एनी डिविजन और एनी रिलीजन. जी हाँ. सो यस, ये भी आप देखिए, बहुत अच्छी लगी मुझे तो ट्रेलर, बहुत अच्छा लगा. होप मूवी भी बहुत अच्छी हो. आवर अपन 2 भी सेम दिन रिलीज़ होने वाली है. मेरे ख्याल से 20 साल बाद आ रही है, गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और जीवन बीमा योजना ये 28 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है.
3: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: Well, yes, जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे आपको तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विस पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इनकी एक्सपीरियंस्ड टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रही है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना। बट यस, अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की जरूरत है जो इन चीजों में फंसा हुआ है या फिर यू नो गो थ्रू हो रहा है टफ कंडीशन से, तो डेफिनेटली आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। एशियन हेल्पलाइन पर आप कॉल करिए 0800-862-342 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए। जी हाँ, आप कॉल करिए, कोई यू नो लीक नहीं होगा, पूरा कॉन्फिडेंशियल रहेगा एंड डेफिनेटली दे विल हेल्प यू इन एनी वे। या फिर उनकी वेबसाइट है एशियन फैमिली सर्विसेज.nz पर आप विजिट करके बात कर सकते हैं।

0: Media. Streaming on Rover. वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
1: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
2: And award goes to Indelible Homes.
1: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
3: Kahani of Indelible Homes.
4: अपने घर को रेडी कीजिए माइटी 10 मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन के साथ क्योंकि अभी पाइए सीलिंग इंसुलेशन फ्रॉम जस्ट 69.95 पर बेल. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना. एलिमेंट आर 3.6 सीलिंग इंसुलेशन नाउ अवेलेबल एट माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन.
5: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है. कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट.
6: Andy didn't think he needed a DVS system.
7: Nah, we're all right, aren't we?
6: But Andy forgot about his daughter who suffered from asthma and allergies.
8: Yeah, Dad!
6: So, Andy got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work making their rooms drier, healthier and more comfortable. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
9: टाइम हो चुका है दिन के ठीक दो.
0: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
10: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 2. Consumer New Zealand hopes legal action involving Foodstuffs South Island will send a strong message. The Commerce Commission alleges

0: जाएगी।
1: क्यों ना नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं फिर से आज के इस लंच बॉक्स शो में। 104.2 एफएम के जरिए आप सुन सकते हैं, रोआ ऐप के जरिए भी सुन सकते हैं। बस यस, अगर आप मुझे 12 बजे से सुन रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही बस बने रहिए। और 3 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ, मेरा नाम केतन है। सैंडी विल बी जॉइनिंग इन द कॉफी ब्रेक आफ्टर 3 एंड रुजबे विल जॉइनिंग हिम जॉइनिंग हर फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स। सो यस, स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू अस। अभी इसमें स्पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सी नई खबर है, साथ में ऑफकोर्स आपको और भी बातें बताने वाला हूँ। करण औजला के लिए भी एक बढ़िया चीज में लेके आया, जहां पे आप जीत सकते हैं हिस्सा लेके डबल पास, कैसे बताऊंगा थोड़ी देर में। एंजॉय करिए गाना गुज्जू पटाखा मीट ब्रॉस की आवाज में।

0: वेलकम बैक, ये रही अभी की लेटेस्ट खबर। वैसे यस, कुछ नए नए इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें ऑब्वियसली आपको हम बताते रहते हैं, बट अभी एक फ्लाइट से रिलेटेड हुआ है बिकॉज ऑफ द वेदर। क्वींसटाउन से सिडनी जा रही क्वांटस फ्लाइट QF 123 124 एक सीरियस रनवे इंसिडेंट में शामिल हो गई है। ये घटना जुलाई में सिडनी एयरपोर्ट पर हुई थी, जिसका खुलासा अब ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कोऑर्डिनेशन में हुई गलती की वजह से दो क्वांटस एयरक्राफ्ट एक ही रनवे के आसपास आ गए। सिचुएशन काफ़ी इतनी सीरियस थी, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने वक्त रहते डेंजर को पहचान लिया और तुरंत इंस्ट्रक्शन देकर दोनों फ्लाइट्स के बीच टकराव होने से बचा लिया। इस इंसिडेंट में किसी भी पैसेंजर्स या क्रू मेंबर को कोई भी चोट नहीं लगी और दोनों फ्लाइट सुरक्षित रही। हालांकि एविएशन एक्सपर्ट्स इसे एक सीरियस सेफ्टी इंसिडेंट मान रहे हैं, क्योंकि रनवे पर इस तरह की गलतियां बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अब ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ATSB इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इन्वेस्टिगेशंस में ये पता लगाया है जाएगा कि कम्युनिकेशंस और कोऑर्डिनेशन में कहां कमी रह गई और फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए क्या सुधार किया जा सकता है। फिलहाल अथॉरिटीज का कहना है कि पैसेंजर सेफ्टी किसी भी समय कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई और एविएशन सिस्टम में सेफ्टी प्रोटोकॉल ने एक बड़े हादसे को टाल दिया है।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: हाँ।

0: और दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer. Showerdome.co.nz.
2: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट एट अश्योर वन नितेश शीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड नथिंग इज मिस्ड नथिंग फॉरगॉटन बिकॉज द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल अश्योर वन प्लान फॉर टुमारो टुडे कॉल 0800-77 हीरा नॉर्थ एनवेल एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर.
3: It's a mum wanting a free kid's haircut for her adult son. It's another chewing gum and hair mishap. It's someone asking if frosted tips are back in fashion. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
4: Okay, let's run through this. You've set up a coffee group, a mum's group, a connect group, and you've adopted group fitness like a religion. Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Friends, whānau, workmates, get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
5: In Yucatan, the local Mexican surfers pronounce cero, cero. During the warm summer evenings in bars around the coast of Nayarit, you'll hear them say, cero. In New Zealand, zero alcohol Corona, cero, is pronounced cero. Easy, eh? However you say it, Corona Cero will always be the smooth zero alcohol beer that's still served with a lime.
6: Freedom's ultimate sofa sale is on for a limited time. Get up to 50% off all sofas. All fabric and leather sofas, modulars and armchairs up to 50% off. Hurry, sale ends Monday, only at Freedom.

0: Lunchbox with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: हम
0: skip your replay.
4: Welcome back. आज अब मैं बता देता हूँ करण औजला जो कि आ रहे हैं यहाँ पे पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर ऑकलैंड में ग्लोबल स्टार स्पार्क एरिना में 25 अगस्त को ये इवेंट होने जा रहा है. बहुत ही बढ़िया शो होने जा रहा है. इक्की स्पेशल गेस्ट इक्की को भी लेके आ रहे हैं एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ हिट सॉन्ग्स एंड इनक्रेडिबल एनर्जी के साथ. वेल यस टिकट जो है वो शुरू हो चुकी है कब से ही और काफ़ी हद तक फिल आउट भी हो चुकी है. सो यस इट इज़ योर टाइम नाउ टू गेट इन टू इट एंड गेट द टिकट बाय द टिकट एज ऑफ लाइक नाउ ओनली बिफोर इट गेट सोल्ड आउट. हम .ro.nz इज द वेबसाइट एंड livenation.co.nz इज द अनदर वेबसाइट जहाँ पे आप ये पता कर सकते हैं कि कैसे आप टिकट ले सकते हैं. यस स्पार्क एरिना में होने वाला है 25 अगस्त को होने वाला है. सो यस वन नाइट वन सुपरस्टार एक्चुअली मैं कहूंगा कि टू सुपरस्टार वन एपिक शो एंड यस यू शुडंट बी मिसिंग आउट एनीथिंग फ्रॉम देयर. एंड साथ में ऑफ कोर्स आप डबल पास अगर जीतना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे जाइए. वहां पे करण औजला का पोस्टर हमने डाल रखा है तो कमेंट सेक्शन में जाइए उस पोस्ट पे और करण औजला को टैग करके उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं वो वहां पे लिख दीजिए. द बेस्ट विल गोइंग टू गो इनटू ऑब्वियसली सभी ड्रॉ में जाएंगे बट बेस्ट वन विल बी विनिंग द डबल पास फॉर दिस शो.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स.

रग्बी से जुड़ी एक खबर लेके आया हूँ। ऑल ब्लैक्स ने साउथ अफ्रीका टूर के अपने पहले मैच के लिए स्टॉर्मर्स के खिलाफ टीम अनाउंस कर दी है और इस स्क्वाड में दो नए प्लेयर्स जॉश जेकम और साइल लुआकी अपने ऑल ब्लैक्स डेब्यू के साथ बहुत ही करीब है। दोनों को बेंच पर जगह मिली है और अगर उन्हें मौका मिलता है तो ये उनका पहला इंटरनेशनल अपीयरेंस होगा। चीफ्स के फर्स्ट फाइव जॉश जेकम ने इस साल रग्बी सुपर रग्बी में अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से सेलेक्टर्स का दिल जीता है। वही हरिकेन्स के प्रॉप सेल लुआकी भी अपनी पावरफुल स्क्रमेगिंग और फिजिकल गेम की वजह से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। टीम अपनी एक्सपीरियंस्ड ब्यूरिन बैरेट भी इस साल अपना पहला मैच खेलेंगे और फ्लाई हाफ की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। आयरलैंड से वापस आए रिको लोअन भी स्टार्टिंग लाइनअप में शामिल हैं, जबकि पैट्रिक तुईपुलोतू को टीम की कैप्टेंसी की सौगात मिली है। वैसे ये मुकाबला कैप टाउन में खेले जाएंगे और ऑल ब्लैक्स के साउथ अफ्रीका टूर की शुरुआत जो है वो वहीं से होगी और इस टूर को 30 साल बाद न्यूजीलैंड के सबसे बड़े साउथ अफ्रीकन दौरे के दौरान एक माना जा रहा है, जहां टीम प्रोविंशियल साइट्स के साथ साथ स्प्रिंग बॉक्स को भी संभाला जाएगा। सो लेट्स सी कैसा रिजल्ट रहता है एंड होप बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहे ऑल ब्लैक्स की, यही आशा है, बट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं अभी एक कम्युनिटी इवेंट्स के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बट कम्युनिटी इवेंट्स के बारे में भी जानने का आपका पूरा पूरा हक है। सो यस, मेघ उत्सव होने जा रहा है यहाँ पे, कल्चर परफॉर्मेंस जहाँ पे होने वाली है, ट्रेडिशनल इंडियन डांस एंड म्यूजिक होगा, फूड स्टॉल्स, डेडिकेटेड किड्स कॉर्नर भी होने वाला है, गेम्स एंड एक्टिविटीज भी होने वाली है फॉर फन ऑल एजेस। जी हाँ, एंड शॉपिंग भी आपको करने को मिलेगा। सो यस, बहुत सारा पैसा लेके आइए, एंजॉय करिए, खरीदारी करिए और मुझे भी कुछ गिफ्ट दे दीजिए, मेरा बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट ईयर है वैसे तो 8 अगस्त को ही होने वाला है माउंट एल्बर्ट वॉर मेमोरियल में, यानी कि परसों 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं वो मेघ उत्सव। उसके बाद रामलीला भी होने वाली है सेम डे 8 अगस्त को, 5 बजे के बाद शुरू हो जाएगी, 6 बजे तक रामलीला प्लेयर्स होगी 5 बजे और फिर रामलीला परफॉर्मेंस होगी 6 बजे के बाद। वैदिक सेंटर में होने वाला है 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोटो में। टिकट जो है वो सिर्फ और सिर्फ $10 पर पर्सन है, 5 साल से कम बच्चों के लिए, पांच साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कंप्लीटली फ्री है। सो यस, वी आर मीडिया पार्टनर ऑफ दिस इवेंट एज वेल। और एक और, डिस्कवर हाउ अ टाइमलेस डायलॉग कैन इलिमिनेट योर मॉडर्न पाथ टुवर्ड राइट लिविंग, फोकस एंड इनर पीस। चिन्मय मिशन आप सभी को इनवाइट करते हैं भगवत गीता रिकॉर्ड्स अ मास्टर क्लास, जहां पे आपको सिखाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा वेदांता टीचर बी आर ईशान चैतन्य की तरफ से, एंड बेस्ड ऑन द कमेंट्री ऑफ पूज्य स्वामी चिन्मयानंद, जो कि इंटरेक्ट करेंगे इस सेशन में। और जिसे भी चाहिए ये अटेंड करना, डेफिनेटली आप आ जाइए 7 अगस्त को, यानी कि कल के दिन 7:30 बजे से 9 बजे के बीच शाम को, न्यू लिन कम्युनिटी सेंटर मेन हॉल 45 टोटारा एवेन्यू न्यू लिन में। एंट्री कम्प्लीटली फ्री है, तो आप chinmay.org.nz पे विजिट करिए और चेकआउट करिए। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हाँ।
1: Ladies and gentlemen, unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Tom DeAndre Spee on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
2: Kyun? Kya hua?
1: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents mange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya, no response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
3: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy. And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
6: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
7: Thinking about your next phone? You could already be closer than you think. Open your One Wallet to see how many phone dollars you have. One phone dollar equals $1 off your next interest-free phone. How wonderful. One New Zealand. Let's get connected.
8: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
0: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
10: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
11: इसके पीछे
0: हम. Tech Talk.
12: अमेरिका घबराया हुआ है. Well, काफी लोग बोलते हैं नई बात नहीं, वो हमेशा घबराया रहता है, तभी कुछ ना कुछ करता रहता है. Well, अभी घबराने का कारण कोई और नहीं, चाइना है. यानी कि अमेरिका में चाइनीज मेड रोबोट्स को लेकर काफी चिंता बताई जा रही है. यूएस गवर्नमेंट को बहुत ही डर लग रहा है कि अगर चाइनीज कंपनीज का जो रोबोट्स है वो मार्केट पर कंट्रोल कर गया तो फ्यूचर में अमेरिका की टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं देने वाला, सिक्योरिटी रिस्क भी पैदा हो सकते हैं. वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना आज दुनिया का सबसे एडवांस और अफोर्डेबल ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रहा है और इन रोबोट्स का इस्तेमाल जो है वो फैक्ट्रीज, वेयरहाउस, हॉस्पिटल्स और रिसर्च लैब्स में तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन यूएस ऑफिशियल्स का मानना है कि अगर ऐसे रोबोट्स सेंसिटिव एरियाज में यूज किए गए तो डेटा सिक्योरिटी और एस्पियोनेज का खतरा जो है वो बढ़ता रहेगा. इसी वजह से अमेरिका ने नए चाइनीज ह्यूमनॉइड रोबोट्स को के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी है. गवर्नमेंट का कहना है कि ये कदम नेशनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक रोबोटिक्स इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है. लेकिन कुछ रोबोटिक्स स्टार्टअप और रिसर्चर्स का मानना है कि इसे इनोवेशन की स्पीड भी कम हो सकती है क्योंकि चाइनीज रोबोट्स काफी सस्ते और आसानी से उपलब्ध मिल जाते हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि एआई और रोबोट्स की रेस में अब सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित ही नहीं है बल्कि ये इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का भी हिस्सा बन चुका है. अमेरिका और चाइना दोनों इस सेक्टर्स में ग्लोबल लीडरशिप में सबसे आगे हैं. क्या लगता है आपको? मेरा सवाल पता आपसे यहाँ पे क्या है, वो तो खैर जंग उनके बीच में चलती जाएगी. मेरा सवाल ये है आपका आपसे कि अगर आपको मौका मिलता है खरीदने का तो आप अपने किस निजी काम के लिए खरीदेंगे? आप मुझे जवाब दीजिए 5599 पे. मैं पता है किस काम के लिए समझ नहीं आ रहा यार, मैं एक्चुअली मैं वेट करूंगा, मैं सोचूंगा इसके बारे में और आपके आंसर्स का वेट करूंगा. तो आप मुझे 5599 पे भेजिए और बताइए कि कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है. क्या लगता है सैंडी?
13: क्या चीज केतन? हाय. मैं हेडफोन पहन के अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी.
12: हाँ नहीं, आप अगर हमारे इर्द गिर्द हो तो ऐसे सरप्राइज की उम्मीद रखा करें.
13: या
12: कभी भी बम फट सकता है,
13: कभी भी हो सकता है। क्या पूछा तुमने?
12: मैंने पूछा कि अगर आपको मौका मिलता है रोबोट खरीदने का, ह्यूमनॉइड रोबोट, तो आप किस काम के लिए लेंगे? इट हैज टू बी आपका निजी काम, प्रोफेशनल नहीं।
13: ओ, निजी काम के लिए ना बहुत काम है यार, लिस्ट है तो
12: नहीं, एक ही काम करवा सकते आप,
13: एक ही करवा सकते हैं।
12: वो भी इंसान नहीं है, वो मशीन है, मशीन का बच्चा है यार वो, उसको भी यार सांस लेने पे थोड़ा।
13: मुझे लगता है रोबो को मैं यूज करूंगी एवरी डे घर पे सफाई के लिए, मतलब एज इन की फ्लोर की जो सफाई होती है, डस्टिंग एंड
12: क्लीनिंग, बेसिकली
13: क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए मैं यूज करूंगी 100%।
12: मैं थोड़ा और फनी एक्सपेक्ट कर रहा था, but it's fine।
13: मैं और नहीं, this is one thing, क्योंकि ये मेरे को रोज करना पड़ता है because of pet dog, उसके वो बाल निकलते हैं ना,
12: makes sense, makes
13: तो इसके कारण वो हम everyday cleaning करते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो मेरे को लगता है robot काम थोड़ा easy कर देगा,
12: easy कर देगा। वैसे महंगा नहीं है, only 20,000 अभी हाल फिलहाल यूएसडी में, यानी कि यूएस वाला जो मिल रहा है वो 20,000 यूएसडी का ही मिल रहा है, लेकिन अभी चाइनीज रोबोट आ रहा है जो और भी सस्ते होने वाले।
13: 20,000 तो मैं रोबो के ऊपर नहीं खर्चा करने वाली है।
12: नहीं, वो तो अमेरिकन है ना,
13: वही तो
12: अभी चाइनीज रोबोट आ रहा है जो और भी सस्ते होंगे,
13: 10,000 को हो गए, 5,000 का,
12: 5,000 का होगा आई गेस। मैं तो सोच रहा हूं
13: वाला तो फिर भी अफोर्डेबल है।
12: मैं सोच रहा हूं नया फोन लेने के बजाय मैं ये ले लूं,
13: रोबो ले लो, क्या काम कराओगे?
12: गुड क्वेश्चन है, हम सोचने वाले, क्योंकि बहुत ऐसा काम है।
13: हाँ वही ना, टॉप प्रायोरिटी पे कौन सा काम रहेगा तुम्हारा जिसको करने में तुम्हें ऐसा दिक्कत होती है कि यार ये करना पड़ेगा मुझे? वो
12: यार पता है क्या है, अब शादी के बाद ये जो सारे जो काम है ना, मुझे लगता है कि नहीं यार मेरे को करना चाहिए, बिकॉज आई कैन नॉट सी खुशबू अलोन इज डूइंग मैं नहीं करवाता हूँ भाई, मेरे में कहा इतनी हिम्मत,
13: तुम नहीं करवाते साथ में काम?
12: मैं करता हूँ, मैं करवाता अच्छा, नहीं हूँ, अच्छा, आप क्या पूछ रहे हो? बोल रहे तुम नहीं करवाते हो, मैं कर नहीं मैं करता हूँ, ये बोलो तुम नहीं करते,
13: तुम भी करते हो ना?
12: मैं करता हूँ बट ऑब्वियसली उतना नहीं, बट मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं, इनफैक्ट आई हैव नोटिस दैट खुशबू आल्सो डोंट लाइक टू कुक मच, रोबोट अगर क्या पता कुछ खिला दे तो वो तो मैं काम नहीं दे सकता।
13: ओके, जहर रखा होगा तो ही डालेगा ना वो।
12: अरे उसका क्या पता हाथ में हो, पता नहीं मशीन से यूं खोले डाल दिया, पता नहीं पड़ा।
13: ए भगवान,
12: हमारा क्रिएटिव फील्ड से मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, और अभी तो एआई आ गया, तो एआई से तो कुछ भी बना सकते हो।
13: ये तो एआई के तो नहीं।
12: हाँ, मैं ना अपना बनाना चाहता हूँ,
13: खुद का रोबो बनाना चाहता हूँ,
12: मतलब बेसिकली जो
13: तुम्हारे काम कर सके,
12: ताकि मुझे जहाँ चाहिए मैं वहाँ रहूँ, बट जो चीज ऑलरेडी मेरे अपॉइंटमेंट लिस्ट में है वो मुझे जाने की जरूरत नहीं है।
13: कल को पता ना चले कि ये केतन है कि ये एआई केतन है,
12: नहीं वो तो लोगों को धीरे धीरे पता पड़ ही जाएगा, बट ये मैं करवाना चाहूंगा। हाँ,
13: okay, अपना डुप्लीकेट
12: बनाना चाहूंगा, मैं वही करूं जो मुझे पसंद है।
13: okay.
12: जो मुझे पसंद नहीं है बट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द जॉब ड्यूटीज वहां पे। आई नो, मैंने खुद ही अपना कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने पूछा था कि निजी काम और मैं अपना प्रोफेशनल काम करवा रहा हूँ उससे।
13: एनीवे गाइस, तो आप क्या करवाएंगे? आप ही बताइए केतन को यहाँ पे।
12: हाँ, 5599 पे आप टेक्स्ट कीजिए और बताइए मुझे कि आप अपना कौन सा निजी काम करवाएंगे अगर रोबोट आप खरीद ले तो।
0: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

प्यार इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी, मानसिक संतुलन अपना खोने लगी, पहले गंदा किया फिर खुद ही धोने लगी, एक रात में हिला उसे होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पीए से है रखे जो घूटों से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी, मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी, मेरे गोयाट के बैक कानों में टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी, कोई टिप्पणी पे ना करूं टिप्पणी, तेरे जैसे कहां से मैं आंट चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी कैसी तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी चलता है उसको फाड़ता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, 3 रात लगातार मैं जागता फिरूं, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं।

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: made an alleged local link to a Mexican cartel. A 10-year mental health and wellbeing strategy has been launched. Minister Matt Doocy says it has 50 actions for faster access to support, more frontline workers and a better crisis response. To sport, the All Blacks will come up against one of South Africa's hottest young talents in the clash with the Stormers on Saturday morning our time. First five, Yakin Ahmed, inspired South Africa's under-20s to glory at the Junior World Championship in June. He will be making his senior debut. And to football updates brought to you by Hisense, FIFA boss Gianni Infantino and the senior leadership of football's governing body have presented a united front after the crisis meeting in Morocco.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
3: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 11.6 डिग्रीज और आज का ओवर नाइट 1 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. सनसेट आज का 5:41 पर.
2: द बीट ऑफ बॉलीवुड
4: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
1: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
3: 3:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हैविंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे रहने वाला है. आज रात को भी काफ़ी ठंड रहने वाली है. कल भी वैसे ना मैंने आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसी ठंड एक्सपीरियंस की जो मैंने इंडिया में एक्सपीरियंस करती हूँ. सो वो वाली ठंड होती है ना कि जो जब हवा ज़्यादा नहीं चल रही होती है बट इट्स स्टिल चिली आउट देयर. बिकॉज न्यूजीलैंड में ज़्यादातर जब हवा तेज़ चलती है तो उससे हमें ज़्यादा ठंड लगती है. हवा वाली ठंडी हवा वाली ठंड भी यहाँ पे होती है. बट दिस वॉज मोर ऑफ लाइक कि हवा नहीं है, बारिश नहीं है, लेकिन ठंड है प्रॉपर. एंड देखो ना धूप भी कितनी अच्छी खिली हुई है. सो यस, आज रात को भी वैसे ही ठंड रहने वाली है. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल गाइज. मैं आर्टिकल देख रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग जो आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ी देर में, कि हाउ टू कीप योर होम वार्म if you are renting or on a budget. Anyway, if you are not renting या फिर budget पे नहीं हो, हर किसी को जानना है कि अपने घर को आप in a cheaper way warm कैसे रख सकते हैं. So stay tuned.

0: 3:14 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड आज ट्रेंड मेकर्स में 6 बजे के बाद एक म्यूजिक कंपोजर को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। फिर आज के जो म्यूजिक कंपोजर है, लेट्स सी किनको, कितने लोगों को इनका नाम पता है। ये इन्होंने हमेशा म्यूजिक कंपोज किया है जोड़ी में, तो 90s का टाइम था एंड इवन 2000s का ऐसा टाइम था जब बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स जोड़ी में काम करते थे, राइटर्स भी कई करते थे, लेकिन बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स का नाम हमने हमेशा जोड़ी में ही ऐसे सुना हुआ है। तो इनका जो नाम है, इनका पूरा नाम मुझे आज तक नहीं पता था जब तक मैंने इनके बारे में सर्च नहीं किया, क्योंकि हमेशा जोड़ी में इनका नाम लिया गया था एक और कंपोज़र के साथ। 90s के ये एक सुपर डुपर हिट जोड़ी रही है एंड उसमें से एक का आज बर्थडे है। ये जो म्यूज़िक कंपोज़र है, इन्होंने जब शुरुआत की म्यूज़िक इंडस्ट्री में, अपनी पहली मूवी जो इन्होंने की, एक लेजेंडरी मूवी हो गई वो 90s की, वो लेजेंडरी मूवी होगी। उस मूवी ने नॉट जस्ट इस म्यूज़िक कंपोज़र को बड़ा नाम दिया, उसमें जो एक सिंगर थे उनको भी बहुत बड़ा नाम दिया, जिसे वो 90s के सिंगर वही हो गए। देखा जाए तो बहुत सारी मूवीज़ में ये म्यूज़िक कंपोज़र, वो सिंगर जो थे, वो 90s की उस मूवी से बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए। कितनी जोड़ियों के नाम आपको पता है, लिख के बताइए यहाँ पे। एंड ये जोड़ी का नाम जो है, यू नो, अपने ब्लॉकबस्टर साउंडट्रैक के लिए तो ये जाने ही जाते हैं। इन्होंने हर एक खान के साथ भी काम किया है, बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हुए हैं एंड ही रिलोकेटेड टू यूके एज वेल। तो उन्होंने 1997 में एक्चुअली में यूके में रिलोकेट हुए थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ काम किया, देन ही केम बैक एज वेल। तो इसी जोड़ी में से किसी एक का जो है हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके बारे में और इन्फॉर्मेशन वैसे आपको और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इनके बारे में आपको पता चलेंगे आज 6 बजे के बाद। इतनी गारंटी देती हूँ कि 6 बजे के बाद जो गाने आप सुनने वाले हैं ना, वो जो म्यूज़िक आप सुनने वाले हैं, इज़ अ फुल नॉस्टैल्जिक 90s एरा का म्यूज़िक। सो किसी को अगर नाम पता चलता है किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं 5599 पर।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम,
2: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम,
1: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
3: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere।
4: अच्छा, Hunua west में?
5: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
6: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
7: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
8: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
7: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और 2 और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
8: पर डेवलपमेंट के पैसे
7: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI।
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा, कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
12: MediaWorks complaints. How can I help?
13: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
12: Thank you.
13: It's all I can think about.
12: What does it sound like?
13: Yeah, I'd rather not.
12: Go on, why don't you have a crack?
13: Okay, got a plumbing problem.
12: Oh, I need a bit more than that.
13: They've got your back.
12: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
13: Oh, okay.
14: There's no better plumber to give it a crack.
12: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
13: No, I want a plumber.
14: Advertise with
15: Media Works.
14: New Zealand listens to us.
16: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
17: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
18: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
19: अब हमारा क्या होगा?
20: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
21: तो क्या करें?
22: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
0: तीन बजकर 20 मिनट हो चुके हैं यार, आप तो बड़े तेज हो। मैंने छोटे से हिंट आपको दिए कि ये म्यूजिक कंपोजर, अगर मैं आपकी जगह होती, कोई मुझे ऐसे म्यूजिक कंपोजर के बारे में हिंट दे रहा होता, मुझे नहीं समझ में आता। सो यस, नदीम के बारे में हम बात कर रहे थे, नदीम श्रवण, ये जोड़ी के बारे में हमने हमेशा सुना है और आज तक मुझे इनका पूरा नाम भी नहीं पता था वैसे। नदीम अख्तर सैफी वैसे इनका नाम है और नदीम का ही बर्थडे आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं बिकॉज ही सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे। सो आज 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में स्पेशल जो है ये नदीम, क्या नदीम श्रवण स्पेशल ही रहने वाला है बिकॉज इन्होंने साथ में मिलके ही हमेशा काम किया है। सो जो काइंड ऑफ सॉन्ग्स उस आवर में आप सुनने वाले हैं, आशिकी से लेके साजन मूवी, दीवाना मूवी, परदेस मूवी, राजा हिंदुस्तानी, धड़कन, राज एंड सो ऑन, देखते हैं कि उस आवर में हम कितने गाने फिट कर सकते हैं। तो बिकॉज रुजबे आ जाएगा तो बातें भी तो होंगी ना, तो आप भी अपने फेवरेट गाने लिख के भेज डालिए 5599 पर जो गाना नदीम श्रवण का आप सुनना चाहते हैं 6 बजे के बाद। वैसे अभी यहाँ पे अभी अभी आए हैं। हाय अभी, कैसे हो?
23: आई एम गुड सिंधी, आप कैसी हो?
0: बढ़िया बढ़िया। मैंने आपसे पूछना था, रामलीला इवेंट हो रहा है ना अभी ओवर द वीकेंड?
23: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: सो यू विल बी देयर?
23: मैं रहूंगा, जिकाश रहेंगे ऑन द 8th ऑफ ऑगस्ट।
0: या और क्या क्या होने वाला है? बिकॉज देखो यहाँ पे तो हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो हमें पता है कि 8 अगस्त को होने वाला है, ठीक है। रामलीला प्रेयर्स 5 बजे शुरू हो जाएगी, उसके बाद परफॉर्मेंसेस है 6 बजे से।
23: हाँ।
0: वैदिक सेंटर में होने वाला है जो कि पापाटोए में है, टिकट सिर्फ $10 की है एंड बच्चे जिनकी एज 5 साल से उनसे कम है उनकी एंट्री एकदम फ्री है। दिस इज व्हाट वी नो,
23: राइट?
0: नाउ यू एड सम मोर इन्फॉर्मेशन
23: जो अभी तक पता नहीं है।
0: हाँ।
23: अच्छा, ये जो कास्ट है ना जो रामलीला स्टेज कर रहे हैं, इसको एडप्ट किया है रामायण से।
0: ओके।
23: और बच्चों ने काफी, मैंने ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं पिछले साल मैंने देखा था, तो काफी बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वो आकर कड़ी मेहनत करते हैं, इसकी रिहर्सल्स महीनों महीनों चलते हैं।
0: ओ वाओ।
23: और बड़े ही अच्छे स्तर पर, प्रोडक्शन लेवल्स पर, लाइटिंग भी बहुत बढ़िया होता है और काफी अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड इवेंट ये रहता है। और काफी मेहनत के बाद में तब बच्चे उस रात को परफॉर्म करते हैं। और पेरेंट्स और बड़ों के लिए भी ये अच्छा मौका है कि आप अगर जो कभी कभी ऐसा कहते हैं ना, जहाँ कला और कल्चर साथ में अगर जो मिल जाए तो उससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती।
0: 100%। हाँ। और क्या होता है कि ऐसे इवेंट्स में जाके आपके बच्चे भी कल्चर के बारे में सीखते हैं जो चीजें शायद उनको बाकी सारी जगह पे समझ में नहीं आएगी, उनको वहाँ पे जब वो लाइव देखते हैं परफॉर्मेंसेस, उनको वो भी समझ में आता है।
23: और एक तरह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, पब्लिक स्पीकिंग कह लो या फिर कैसे परफॉर्म करना है बीच पब्लिक के बीच में, तो ये सभी कुछ उसी से आती है, स्टेज परफॉर्मेंस से आती है, ड्रामा से आती है। एंड काफी एक बड़ी टीम है जिन्होंने मेहनत करके और इसको यहाँ तक पहुँचाया है जो अब 8 अगस्त को सरडे को रहेगा। और वहाँ पर काफी स्टॉल्स भी रहेंगे आपके आपके मील्स के लिए, आपके डिनर के लिए भी वहाँ पर आप कर सकते हैं, वहाँ पर स्टॉल्स रहेंगी जो बेचेंगी ये सभी कुछ आपके लिए।
0: एंड यू एंड जिकाश गोना बी देयर?
23: जी हाँ बिल्कुल, 100% हम रहने वाले हैं। जिकाश तो इनफेक्ट वो एमसी ज्यादातर वही करेंगे, मैं इन्वॉल्व हूँ एज अ वॉलंटियर,
0: थोड़ा काम संभालने के लिए,
23: काम संभालने के लिए मैं हूँ।
0: एंड ऑल्सो कुछ लोग जो वहाँ पे, अगर आप जाके जिकाश एंड अभी से मिलते हैं, you can win some hum merchandise as well.
23: Absolutely. वही इसीलिए मैं आज आपके साथ में हूँ कि मैं आया हूँ कुछ पिक करने आपसे और जो
0: कुछ कप वगैरह है ऐसी चीजें मिल सकती हैं आपको
23: जो वहाँ पर बच्चों को देने पर ऐसा कुछ करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग जहाँ पर बच्चे भी काफी इंटरेस्टेड रहे और वो भी आकर एक उनके लिए भी एक मेमोरेबल इवेंट हो जाता है कि दे हैव वन समथिंग एंड दे कैन टेक इट बैक होम विद देम.
0: या या 100%. सो गाइस जरूर पहुंचेगा रामलीला ये 8 अगस्त को सैटरडे के दिन शाम के 5 बजे से शुरू हो जाएगी रामलीला प्रेयर से शुरू हो जाएगी वैदिक सेंटर में जो कि 32 ग्लासगो एवेन्यू पापा टोए में लोकेटेड है. टिकट इज लाइक रियली चीप सिर्फ $10 हमारे कॉफ़ी खरीदने जाओ उसके साथ एक और चीज़ लो तो उसी में खैर हमारे $10 निकल जाते हैं. सो $10 इज़ क्वाइट चीप टिकट एंड इवेंट एक ऐसा इवेंट जो कि मस्ट अटेंड इवेंट रहने वाला है. डोर सेल होगी वहाँ पे
23: जो नंबर हमारे पास में है अगर जो सिंडी आप एक बार पढ़ दे
0: मास्टर अशोक का
23: जी हाँ.
0: सो इनका नंबर है 02117954559 इन्हें कॉल कीजिए तो आपको पता चलेगा कितने टिकट्स बाकी है. सो इट्स 02117954559.
23: जब मैंने लास्ट इनसे बातें की थी तो कम से कम टिकट्स बाकी थे.
0: ओह नो.
23: लेकिन अगर जो आप अभी भी आना चाहते हैं तो इनसे बातें करें मेबी ही इज एबल टू ऑर्गेनाइज समथिंग.
0: या यू नेवर नो. So thank you so much Avi and all the best for this.
23: Thank you so much Cindy.
2: Hollywood's most wanted.
15: Gundi khad jao. Ya seedha andar aao.
19: Main laun apna A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं और आर्टिकल है जो इस समय पर आपके बहुत काम आ सकता है कि अपने घर को आप कैसे वार्म रख सकते हैं दिस विंटर। सो विंटर पावर बिल्स जो है ये इजीली किसी को भी हर्ट कर सकते हैं, स्पेशली यू नो जब आप ऑलरेडी बजटिंग कर रहे हैं, आप रेंट कर रहे हैं, नया घर खरीदा है या कोई भी सिनेरियो है आपके लिए। सो देयर आर फ्यू ट्रिक्स, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स कुछ होती है जो इस आर्टिकल में है, जो आप जिससे आप खर्चा बचा सकते हैं और अपने घर को वार्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन टिप इज स्टॉप द कोल्ड एयर स्नीकिंग इन। तो अपने घर पे गैप्स ढूंढिए जहाँ से जो कोल्ड एयर है वो अंदर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, डोर, विंडोज, फ्लोर बोर्ड्स, ईजिली वहाँ पे बहुत सारे गैप्स होते हैं जहाँ पे कोल्ड एयर एंटर करती है। तो वहाँ पे आप कुछ घर पे जो चीप आपके कुछ स्टॉपर्स हैं या फिर इवन जो पुराने टॉवल्स हैं आपके घर पे ना, उनको रोल अप करके आप वहाँ पे अंडर डोर्स कर सकते हैं ताकि वहाँ से जो ठंडी हवा है वो अंदर ना आए। काफ़ी काउंसल्स एंड लाइब्रेरीज जो है ये कई बार थर्मल कैमराज भी ऑफर करते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि वेयर हीट इज़ एस्केपिंग। नाउ अनदर टिप इज़ रग्स जो होते हैं घर पे, ये सिर्फ डेकोरेशन पीस नहीं है, जो बेयर फ्लोर्स है इससे आपका रूम थोड़ा फ्रीजिंग हो सकता है। जब आप रग्स एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो वो काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इंसुलेशन लेयर हो जाती है। सो दिस इज़ अनदर वन। देन अनदर टिप इज़ कि मेक योर कर्टन्स वर्क हार्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सन डाउन होता है, जब सनसेट होता है, उसी समय आपको कर्टन्स क्लोज कर देने चाहिए एंड इससे जो है कि बाहर जो है यू नो ठंडी हवा जो है वो ज़्यादा अंदर नहीं आती है। देन देयर इज अनदर हैक जिसका नाम है ट्राई द बबल रैप। सो बबल रैप जो है ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए तो खैर इतना अच्छा नहीं है, बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू एड अ लेयर ऑफ अ हीटिंग, तो बबल रैप जो है अगर आप इसे विंडोज़ के ऊपर स्टक करते हैं, इट क्रिएट्स अ एयर लेयर जो एक्ट करती है एज अ बेसिक एक्स्ट्रा इंसुलेशन। एंड अनदर वन इज़ हीट योर सेल्फ, नॉट द होल हाउस। सो अगर आप एवरी रूम में हीटर लगाते हो तो उसे डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। रेदर यूज़ मोर ब्लैंकेट्स, वार्म क्लोदिंग। कई बार होता है ना, आदत होती है कि बाहर तो आपने चाहे गर्म कपड़े पहने लेकिन घर पर आप नहीं पहनते हैं, तो मे बी घर पर भी वो आपको पहनने चाहिए। क्लोज़ द डोर्स उन रूम्स के जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जब आप एक रूम को थोड़ा कोजी रखते हैं तो एक वार्म जोन वो बन जाता है। एंड चेक योर हीटर चॉइस एज वेल इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। हीट पम्प्स जो है जनरली चीपर होते हैं टू रन हीटिंग करने के लिए देन पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल हीटर्स। फॉर स्मॉलर स्पेसिस लाइक बेडरूम, ऑयल कॉलम हीटर्स जो है ये बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन रहते हैं। डोंट फॉरगेट द मॉइस्चर। अ डैम्प होम जो होता है वो कोल्डर होता है, सो वेंटिलेट किचन्स एंड बाथरूम, एक्सट्रैक्टर फैंस आपको यूज़ करने चाहिए। अवॉइड द ड्राइंग लॉट्स ऑफ क्लोथ्स इनडोर विदाउट वेंटिलेशन। ड्राई होम जो होता है इज़ बेसिकली ईजियर टू हीट। बहुत सारे और भी विंटर हैक्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नो आप अपने फर्नीचर को रीअरेंज कर सकते हैं एंड अवे फ्रॉम द कोल्ड वॉल्स, ये आप कर सकते हैं सो दैट आपका जब आप बैठते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ठंड ना लगे। फ्यू हेयर एंड देयर थिंग्स जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा सिमिलर हैक है आप भी शेयर कीजिए। 5599 इज द नंबर।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: वेलकम टू कबाब्स किचन, आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
4: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
3: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स, हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
4: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग, स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
3: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
5: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
6: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
7: This Thursday.
8: No time, Briscoe's lady. The sale is for one day only. So hurry in for up to 60% off all electrical heating, duvetas, kitchen appliances, sheets, and much, much more. Thursday only. Open late at Briscoe's.
7: See online for T's and C's.
9: Flight Centre has Bali on sale now. Book your Qantas full service flights from 1,199 return. Depart Auckland, book in store or online. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
10: And then Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas mera focus hai.
11: Achha,
10: batao. Tuhanda focus. Sada kuch nahi.
11: Shh, Mrs. Singh.
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33।

0: 3:46 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. थोड़ी देर में थ्रोबैक गाना भी हम यहाँ पे सुनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस आर्टिकल के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है. नाउ आर्टिकल इज अबाउट जो नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं यहाँ पे. गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं कुछ नए सब्जेक्ट्स जो कि न्यूजीलैंड में सेकेंडरी स्कूल्स में आ रहे हैं. सो 9 फ्यूचर फोकस्ड कोर्सेज जो है ये इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. सो जो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं दे माइट हैव दिस न्यू सब्जेक्ट्स फॉर द फ्यूचर जॉब्स. बिकॉज क्या है कि टाइम के साथ जो है जो AI आ चुका है उसके हिसाब से जो जॉब्स डिमांड है ये चेंज हो रही है. तो सब्जेक्ट्स जो है ये इंडस्ट्री ग्रुप से लेके बहुत सारे और भी है विच इज़ अवेलेबल फॉर ईयर 12 and 13 फ्रॉम 2029 एज पार्ट ऑफ द न्यू क्वालिफिकेशन सिस्टम जो कि NCEA को रिप्लेस कर रही है. जो 9 सब्जेक्ट्स हैं वो है नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग, देन अप्लाइड इंटेलिजेंस सिस्टम जिसमें कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह ये सब रहेंगी. देन अनदर सब्जेक्ट इज़ कंस्ट्रक्शन एंड बिल्ट इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फूड एंड फाइबर सिस्टम, हेल्थ सर्विसेज एंड केयर, हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेज एंड टूरिज्म. सो गवर्नमेंट का ये कहना है कि उनका एम है टू गिव स्टूडेंट्स मोर पाथवेज. अगर वो यूनि में जाना चाहते हैं, ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली इनटू एम्प्लॉयमेंट जाना चाहते हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये इस वे से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वो क्लासरूम को कनेक्ट कर सके विद रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज एज वेल. सो NCEA जो है इज बीइंग रिप्लेस्ड विद अ न्यू सीनियर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन सिस्टम 2028 से. सो NZ सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन जो है ये रहेगा फॉर ईयर 12 NZCE, एंड NZ एडवांस सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन विच इज NZACE रहेगा फॉर ईयर 13. न्यू फाउंडेशनल अवार्ड जो है ये रहेगा विच विल बी फोकस ऑन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एज वेल जो कि इंट्रोड्यूस की जाएगी. इससे याद आया कि हमारी मुलाकात एक्चुअली में मेरी और रुजबे की कल बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ हुई है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हुई है, ईयर 13 के स्टूडेंट्स के साथ. एंड कल हमने उनके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है जो कि अगले हफ्ते आपके लिए हम रिलीज़ करने वाले हैं. दिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ईयर 13 के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कुछ बनाया है एंड इन्होंने बनाया है अपने भी यंग बच्चों के लिए, अपने से भी यंग बच्चों के लिए. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम जस्ट ग्लैड कि जनरेशन जो आगे आ रही है इनका दिमाग किस किस क्रिएटिव चीज़ों में जाता है. नॉट जस्ट क्रिएटिविटी में, ऐसी क्रिएटिविटी में जो और बच्चों की हेल्प कर सके इन अंडरस्टैंडिंग फ्यू थिंग्स. सो इसके रिलेटेड वैसे अगले हफ्ते हम और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे जब ये पॉडकास्ट आपके लिए हम रिलीज़ करेंगे. बट या इफ यू आर अ स्टूडेंट आउट देयर एंड यू आर डूइंग समथिंग, इफ़ यू आर अ पेरेंट आउट देयर, आपके बच्चे जो है कुछ ऐसा क्रिएटिव कर रहे हैं जो आपको लगता है कि सबकी नज़र में आना चाहिए, तो आप हमें अप्रोच यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं. आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कीजिए यहाँ पे 5599 पर, या फिर हमें कॉल कीजिए यहाँ पे 0800 000 हम पर.
1: Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

रुजबे बस थोड़ी देर में यहाँ पे शामिल हो जाएगा. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है, हाउ इज इट गोइंग सो फार, यहाँ पे आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं. एंड आज कुछ टॉपिक्स भी आपके लिए रहेंगे, इवेंट्स की ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए रहने वाली है. ओवर दिस वीकेंड भी एक इवेंट होने वाला है एंड आने वाले दिनों में भी एक इवेंट होने वाला है जिसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी. एंड हम आज यहाँ पे किसी से बात भी करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वेल, इसके बारे में और डिटेल्स आपके साथ हम थोड़ी देर में शेयर करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड जिनसे हम बात करने वाले हैं वो आपको इसके बारे में डिटेल में एलेबोरेट वे से और भी ज़्यादा समझा पाएंगे. फिलहाल वैसे यहाँ पे एक गाने के साथ शुरुआत करते हैं, देन मोर फॉर यू.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए एक से गाने यहाँ पे लेकर आएंगे हम, और उसके साथ साथ आज ड्राइव शो में बातें भी ढेर सारी करेंगे आपके साथ.
1: Hi, Sandy. Good afternoon, Rizbe. कैसे हो तुम? How are you feeling right now?
0: I'm feeling all right, यार. आवाज से तो अभी ऐसा लग रहा है कि क्लियर आउट हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी नहीं हुआ है.
1: अंदर बहुत कुछ चल रहा है
0: अभी भी. ऐसे मेरे को मन में ऐसे ही चल रहा है, बेहती नक्शा था वो.
1: वेल, बहती नाक तो छोड़ो, आज एक किस्सा हुआ है यहाँ पे स्टूडियो में.
0: क्या किस्सा हुआ?
1: I want to share that किस्सा, because इसके बारे में मुझे पता चला है. सो क्या हुआ, ब्रेकफास्ट शो करके यहाँ से पूजा निकली, ठीक है. और पूजा निकलने से पहले शी मेड श्योर कि मैं थोड़ा क्लीन कर दूँ स्टूडियो, स्प्रे वगैरह कर दूँ, वो सब उसने किया. और जो हमारे यहाँ पे जो स्प्रे है, ये आज मैं स्प्रे करना चाहती थी लेकिन बॉटल खाली है ये. सो क्या हुआ वो किस्सा, मैं
0: स्प्रे कर दिया उसने.
1: सुनो ना, उसने वो स्प्रे किया और हमारे टेबल के नीचे ना वहाँ पे एक बना हुआ है वो ट्रांसमिशन वाला समथिंग कुछ है, उसने रखा उसके ऊपर. एंड पूजा जब यहाँ पे शो करती है ऐसा, वो फुल खड़े रह के ऐसा शो कर दिया. और गाइस, जो हमारा टेबल है ना, ये स्टूडियो का जो टेबल है जिसके ऊपर सब पैनल रहता है, तो यहाँ पे एक बटन है जहाँ पे हम टेबल को ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं.
0: मुझे पता है क्या यहाँ पे जा रही है.
1: नहीं, मैं सुन लो, तुम प्रेडिक्ट मत करो. तो टेबल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, एज पर आवर कन्वीनियंस.
0: दैट्स राइट.
1: पूजा अपना शो करके जाती है यहाँ से, ठीक है.

0: उसके बाद कशिका आती है
1: वो,
0: हाँ. अब कशिका जब शो करती है यहाँ पे, वो टेबल को एकदम नीचे करके शो करती है, जैसे जमीन के बस पास नहीं लगा होता है, इतना वो नीचे करती है टेबल को,
1: क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को नजरअंदाज रखते हुए करती है ना, मतलब वो मतलब पैर ऐसा पलाठी मार के, इसलिए
0: या सो कशिका आती है, ठीक है, टेबल नीचे किया उसने, मस्त होके हेडफोन लगाया, अपना शो शुरू किया.
1: टेबल नीचे हुआ उनसे मतलब?
0: हाँ, टेबल नीचे किया उन्होंने.
1: काफी बार ये भी अटक जाते हैं क्योंकि उनकी वो चेयर नीचे नहीं होती है.
0: या उन्होंने वो सब किया, वो उसकी तो आदत हो गई ना उनको. तो उन्होंने किया एंड देन शो शुरू किया, और शो शुरू करते हुए उनको खांसी आ रही है.
1: ओह नो,
0: उनको आवाज आ रही है कि ये शूं की आवाज कहाँ से आ रही है,
1: क्या हो रहा है,
0: शूं ऐसे आवाज आ रही है. ओके, एंड उनको ऑन एयर शो करते हुए खांसी भी आ रही है.
1: अच्छा.
0: एंड आई थिंक शी सेड ऑन एयर कि मैं पानी पी के आती हूँ, कुछ ऐसे कुछ, समथिंग इज रॉन्ग इन द स्टूडियो. एंड माइक ऑफ किया, और कशिका ने बोला कि वो आवाज खत्म ही नहीं हो रही थी, एंड शी फ्रीक्ड आउट.
1: क्यों, क्या था ऐसा?
0: बिकॉज सांस भी नहीं आ रही है, चोकिंग की प्रॉब्लम हो रही है उनको, शू आवाज भी आ रही है.
1: ओह नो,
0: देन शी कॉल्ड इंजीनियर्स.
1: डॉक्टर को क्यों नहीं कॉल किया पहले यार?
0: इंजीनियर्स को कॉल किया. वो लगा स्टूडियो में कि क्या ही पंगा हो गया है, वो जो टेबल नीचे किया था उससे जो बॉटल थी वो प्रेस हो रही थी नीचे.
1: अच्छा.
0: स्प्रे वाली. और वो लगातार स्प्रे हो रही थी.
1: ओ माय गॉड.
0: या एंड उन्होंने बोला दिस इज द प्रॉब्लम, ये जो पीछे बॉटल पड़ी हुई है लगातार स्प्रे हो रही है.
1: माय गॉड, इंजीनियर्स हैव टू गो थ्रू वाटर यार.
0: आई नो.
1: और अक्सर हमारे स्टूडियो में ही ऐसे सारे पंगे होते हैं. हमारे स्टूडियो में मतलब लाइक लिटरली मेरे को काफी बार शर्म आती है हमारे इंजीनियर्स को कॉल करने को.
0: कशिका कह रही है तुम स्टूडियो में जाओगी ना, स्टूडियो आज महका महका है. ये नहीं पहले अच्छे से बताया कि ये सब कांड किया है पहले.
1: अच्छा, तो ये बॉटल इसलिए खाली हो गई.
0: बॉटल इसलिए खाली है भाई.
1: ओह वाओ.
0: पूरे जंप्स मार दिया आज कशिका ने.
1: क्रेजी हो गया ये तो आज,
0: बहुत ही क्रेजी हो गया ये.
1: Yeah.
0: और वो खांस भी रही है, मतलब उसको आवाज भी आ रही है, जैसे कहां से आ रही है आवाज समझ में नहीं आ रहा है,
1: ऐसे ऐसी आवाज.
0: हाँ, स्प्रे हो रही है ना, लगातार स्प्रे हो रही थी आज.
1: ओह माय गॉड,
0: आई विश कैमरास होते यार, कितना मजा आता
1: यार. सैंडी यार, किसी की यहाँ पे ये हुई
0: हम हंस रहे थे बाद में.
1: अच्छा, या हम हंस रहे थे, मतलब आप और पूजा हंस रहे थे?
0: नहीं, मैं और कशिका. कशिका टोल्ड मी एवरीथिंग.
1: अच्छा, ओके.
0: या शी ओनली टोल्ड मी ना, बिकॉज कोई था नहीं और बात करने के लिए, तो शी हैड टू वेंट इट आउट कि ये हुआ है.
1: वाओ. सो ऐसे कभी कभी क्रेजी किससे आपके काम पे हुए, अगर कोई ऐसे, अगर आप शेयर करना चाहो हमारे साथ, जहाँ पे आपने ना हेल्प के लिए कॉल किया है, एंड आईटी सपोर्ट. ये आईटी सपोर्ट एक बहुत एक होता है, आईटी सपोर्ट आपने कॉल किया है, लेकिन फिर आईटी सपोर्ट से आपको पता चला है कि अरे यार ये आईटी रिलेटेड क्वेरी नहीं थी,
0: ये कुछ और ही था, ये बॉटल टाइप जो आज जो किस्सा हुआ है कशिका के साथ. कल पूछना गाइस माय टाइम में फोन करके कशिका को, हाय कशिका बॉटल चेक कर ली पीछे? उनको बोला था पीछे देखो पीछे.

0: थे उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEETA. North Henvale Advisory Limited, trading as Assure One is a licensed financial advisor.
5: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
6: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है, सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए, मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
0: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
7: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the winter sparkle celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
8: Are you ready to go home?
9: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
10: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Bollywood's most wanted.
11: Kundi khadao, ya seedha andar aao.
12: Main laun apna A game.
10: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
13: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए एक से गाने यहाँ पे और drive show में और भी सारी बातें लेकर आते हैं.
14: Yes, 4:19 हो चुके हैं रुजबे, एंड अवी के साथ मैं पहले भी बातें कर रही थी. अवी स्टिल रोमिंग अराउंड हियर.
13: क्या बात कर रहे हो, पहले बात हो गई आपकी अवी के साथ?
14: पहले हुई मेरी.
13: अरे,
14: क्योंकि
13: अवी आओ यार.
14: क्योंकि क्या है ना, अभी अभी तैयारी में है, लोड कर रहा है सामान, वो रामलीला की तैयारी में है.
13: रामलीला की तैयारी हो रही है अभी. बताइए हमें रामलीला में क्या हो रहा है एग्जैक्टली यार?
15: ओ, रामलीला में ये तो आपको भी आना पड़ेगा. हाँ. और आकर आप देखिए, जहाँ पर स्टेज परफॉर्मेंस होगा, बच्चे साथ में मिलकर काफ़ी मेहनत करने के बाद में ये स्टेज करने वाले हैं, जो रामायण से एक एडेप्टेशन है उसको लेकर एक ड्रामा ये स्टेज करने वाले हैं ऑन द 8th of August, इसी शनिवार
13: सैटरडे को,
15: सैटरडे को.
13: कितने बजे?
15: ये 5:45 से ये शुरू हो जाएगा ड्रामा, लगभग 6 के करीब. लेकिन उससे पहले जो वहाँ पर ऑफिशियल ओपनिंग है, ये सभी कुछ रहेगा. लेकिन द एक्चुअल ड्रामा स्टार्ट्स अराउंड 5:45 to 6.
14: ओके,
13: एंड कितने टाइम का होगा ये ड्रामा? 15 मिनट का?
15: नहीं, ये ड्रामा फुल स्केल ड्रामा लगभग 3-3.5 घंटे की. इट्स अ बिग प्रोग्राम.
13: ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग यार.
14: और बीच में कुछ ब्रेक्स भी रहने वाली है ना, जहाँ पे हम मर्चेंडाइज लोगों को मिलने वाली है.
15: बीच में ब्रेक्स भी होने वाले, क्योंकि मैं और जिकाश दोनों रहेंगे. और वहाँ पर जो हम मर्चेंडाइज है, लोगों के साथ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करके, और जो मर्चेंडाइज है ये देने को है.
13: क्या बात है. तो ये इसके टिकट्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा?
15: टिकट्स लेने के लिए, वही मैं सैंडी से बोल रहा था, मैंने जहाँ तक सुना था टिकट्स कम से कम बचे हैं. लेकिन आप रुजबे, वहाँ पर एक नंबर होगा मास्टर अशोक का.
13: अच्छा,
14: आप रुजबे तुमने ओपन किए?
13: बस ओपन ही हो रहा है.
15: हाँ, बस वही नंबर आप एक बार बोल दे, ताकि लोग जान जाए. अगर जो वो अभी भी आना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल करके वो टिकट के जो इन्फॉर्मेशन है ले सकते हैं.
13: राइट तो हाँ, ये नंबर आपको बताएंगे हम बहुत जल्द, लेकिन आज आज नहीं, इस वीकेंड पे अगर आपको अवि और जिकाश को मिलना है हमारी हम टीम से, तो आप जरूर पहुंच जाइएगा, और प्लस इनका जो प्ले है इसको हाँ. भी आप एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे.
14: सो नंबर मास्टर अशोक का है 02117959
15: जी हाँ वही नंबर है.
13: हाँ तो पहुंच जाइएगा, वीडिंग सेंटर में होने वाला है ये, 32 ग्लासगो पापा टोटोए, एंड $10 का ही टिकट है,
15: और बहुत सारे स्टॉल्स भी रहेंगे. तो आप क्या करें कि डिनर की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर ढेर सारे स्टॉल्स रहेंगे जो फूड वगैरह स्नैक्स सभी कुछ बेचेंगे, और इसके साथ में एक फैमिली आउटिंग भी आप कर सकते हैं.
13: फैमिली आउटिंग भी हो जाएगा ना सब फैमिली के लिए. आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव यार, और बच्चों के लिए आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू लर्न आल्सो, एक उनको अपने माइथोलॉजी के बारे में भी पता चल जाता है
15: ना, चलेगा ना. हाँ
13: क्या हो रहा
14: है, एजुकेशन एज वेल.
15: कला और कल्चर एक साथ में देखने का मौका मिलेगा.
13: कला और कल्चर, क्या बात है.
14: नाइस.
13: कला देगा अभी और जिकाश हमारे कला है.
14: कला और कल्चर वहाँ पे पहुँचने वाले हैं.
13: नाइस. और इसके साथ फिर बाकी क्या चल रहा है जिंदगी में यार, अभी ये भी बताओ.
15: अरे बहुत ठंड पड़ रही है यार.
13: ठंड बहुत है ना.
15: कैसे मैनेज कर रहे हो?
13: मैं तो क्या करूँ, अभी शादी हो गई ना मेरी. तो मैनेज हो रहा है.
15: अच्छा इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा खुल के एक्सप्लेन करो.
13: खुल के क्या है, तुम्हारी अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी पार्टनर है तो ऑब्वियसली द बॉडी टेम्परेचर टुगेदर इज वार्म. या कडल करने का मौका मिलता है. अभी तो मैं प्राउडली बोल सकता हूँ.
14: yeah.
13: जब शादी नहीं हुई रहती तो छुप छुप के बोलना पड़ता है.
14: अभी वो टेंशन नहीं है.
15: ना, अभी वो टेंशन नहीं है ना.
13: या
15: तो सिंगल सिंगल लोगों की कैसे कट रही होगी?
13: तो क्या भाई, सिंगल लोगों को ऑप्शन नहीं मिलता है क्या? क्या यार अभी
15: मिलता होगा, मिलता होगा.
13: आपका कैसे चल रहा है फिर?
15: मेरा
13: हाँ.
15: मेरा ब्लैंकेट भी है और हीटर है, हीट पंप.
13: अच्छा
15: चालू कर देते हैं, चालू करते हैं.
13: ओके
14: या एनीवे कनाडा भी गए थे ना आप?
15: हाँ हाँ कनाडा भी गए.
13: वहाँ पे भी ठंड, वहाँ पे तो गर्मी थी.
14: वहाँ पे तो गर्मी थी यार.
13: वहाँ पे भी गर्मी थी ना.
15: वहाँ तो
14: आई थिंक कनाडा समर के टाइम पे इज वेरी ब्यूटीफुल टू रोम अराउंड.
13: कनाडा इज ब्यूटीफुल ऑल द टाइम यार, ऐसे थोड़ी है.
14: सर्दी में थोड़ा मुश्किल है ना वहाँ पे.
13: सर्दी में कितना ब्यूटीफुल यार, पूरा व्हाइट व्हाइट ऐसा, पूरा मतलब -40 degrees तक जाता है काफी कुछ जगहों पे.
14: हाँ हमारे लिए ब्यूटीफुल है तो देखना.
13: हाँ क्योंकि हम तो ब्यूटीफुल है, एक आध दो दिन देखेंगे, एक हफ्ता देखेंगे.
15: यहाँ तो 1-2 में हमको आफत आ जाती है.
14: अभी 1-2 में कह रहे हो बहुत सर्दी हो गई है.
13: अरे आज सुबह वेस्ट ऑकलैंड में -2 degrees था.
15: सो
13: जब हम उठे, मैं बाहर गया डेक पे, तो मेरा काफी बड़ा डेक है, तो वहां पे लिटरली आधा डेक वाज कवर्ड इन आइस.
14: वाओ,
13: पूरा व्हाइट. So, बाहर भी आप जाओगे तो ग्रास पूरा लाइक लिटरली उसके ऊपर एक आइस का लेयर है हर जगह पे, ग्रास के ऊपर भी.
15: मैंने सुबह गाड़ी स्टार्ट की, पूरा एक लेयर का फ्रोस्ट था. इट टुक अबाउट 5 to 7 minutes टू एक्चुअली क्लियर हुआ. तब तक
13: वो भी आपकी अपडेटेड गाड़ी होगी इसलिए 5-7 minutes में हो गया.
14: मेरी गाड़ी में 20 minutes
13: लगते हैं. मेरे गाड़ी में उस दिन मैं पोकेनो से निकल रहा था, पोकेनो भी ज्यादा ठंडा होता है, तो हम लोग ऑलमोस्ट आधे रास्ते घर तक पहुंचे तब जाके फॉग निकला गाड़ी की. मतलब यार
14: इट्स ओके,
13: गरीबी कहते इसे. एनीवे
14: टाइम टू बाय न्यू कार उसमें.
13: या या प्लीज गिव अ लिटिल, पेज खोल रहा हूं मैं आपके लिए बहुत जल्द. प्लीज सेंड इन योर डोनेशंस. एनीवे अभी थैंक्स सो मच यार, नाइस चैटिंग विद यू.
15: सेम यार.
13: आपका नेक्स्ट शो कब हो रहा है अभी रेडियो पे?
15: अभी आज रात को लेके आएंगे.
13: आज रात को आप आने वाले हो? अरे क्या बात है. तो नाइट कैफे में अभी का साथ देना 8 बजे से 12 बजे तक. अभी के लिए आवारा पन 2 देखने वाले हो आप?
15: मैंने 1 नहीं देखी है अभी तक.
13: 1 नहीं देखी है?
15: अरे यार मैंने 1 नहीं देखी है.
14: 1 देखो पहले, बिकॉज ये कहानी वहां से शुरू होती है जहाँ पे वो खत्म हुई है.
13: बट उनको पहले पूछो ना, उनको तुमको पसंद है इमरान हाशमी?
15: नहीं नहीं बिल्कुल पसंद है. मैंने बाकी देखे उनके फिल्म, लेकिन ये पता नहीं कैसे रह गया,
13: क्योंकि इसमें किसने किया ना उन्होंने
15: नहीं किया था इसलिए रह गया.

0: ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: सुपर से ऊपर ये शो जारी है आपके लिए. ड्राइव शो आप सुन रहे हैं. 4:40 हुए हैं ऑन द 6th of August टुडे. आज अगर आप आपका बर्थडे एनिवर्सरी कोई खास दिन सेलिब्रेट कर रहे तो हमें जरूर बताइए. वी'd like to make it even more special for you.
2: यहाँ पे आप मैसेज करके जरूर शेयर कर सकते हैं. वैसे कल का जो इंसिडेंट हुआ था नारुज बे, उसके बाद पुलिस ने कुछ अपडेट्स भी इसके बारे में दी है. उन्होंने बोला है कि डिफरेंट फुटेजेस को वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं अराउंड द एप्सम एरिया जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था. बिकॉज देन फिर वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे. एंड ऑल्सो उन्होंने रिपोर्ट में ये भी बताया है कि कॉल करने के बाद 8 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पे पहुंच चुकी थी. विद इन 8 मिनट्स पुलिस वॉज देयर टू सी एवरीथिंग एंड उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए.
1: मतलब वो हमें कल बात भी हुई थी ना हमारी मंथन के साथ. उसने बोला था कि पहली पुलिस की गाड़ी जल्दी आ गई थी लेकिन फिर दूसरे पुलिस की गाड़ी का इंतजार करना पड़ा था क्योंकि अकेले टैकल नहीं कर सकते थे उसके साथ.
2: पर पुलिस ने अभी कुछ ऐसा कमेंट नहीं किया है कि वेदर मेंटल हेल्थ ड्रग्स या अल्कोहल प्लेड एनी रोल इन द इंसिडेंट. इसके बारे में उन्होंने नहीं बोला है.
1: तो अपेरेंटली
2: उसने बोला कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है.
1: नीचे कुछ नहीं पहना था.
2: ओके.
1: उसने कुछ नहीं पहना था, नहीं सिर्फ टी शर्ट पहना था. कल अपने को मंथन ने भी बोला वो. तो कुड बी अ मेंटल हेल्थ
2: 100%
1: यू नेवर नो. But anyway, we'll wait for police to comment on that.
2: Yeah, and थोड़ी देर में एक और आर्टिकल आपके साथ शेयर करेंगे. How does your pay compare to the average?
1: अरे रे, ये क्यों ऐसे डिप्रेसिंग वाले आया करना यार.
2: पता होना चाहिए ना. द नॉलेज इज रियली गुड. और इसी से याद आया, मेरा नया पॉडकास्ट जरूर सुनेगा बिकॉज वो नॉलेज के साथ भरा हुआ है. अगर आप अपनी आपने नई जॉब शुरू की है या फिर यू नो आप एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयर हैं, कोई भी कैटेगरी में हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है. इसको सुनिएगा बिकॉज इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, जो आपकी लीव्स होती है, सिक लीव्स होती है, एनुअल लीव होती है, इन सब चीज़ों के बारे में, क्या आपको कोई ट्रेनिंग पीरियड के ऊपर फ्री में काम करवा सकता है, इसका आंसर भी इस पॉडकास्ट में आपको मिलेगा. प्रीमियम्स के बारे में भी आपको आंसर मिलेगा. सो लॉट ऑफ स्टफ गाइज इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाली है. इट्स गुड फॉर योर नॉलेज आई विल से. You need to be aware of the things.
1: But on having said that, I would also like to put forward this thing that मैं understand करता हूँ कि you know training के लिए you need to get paid if you're doing you know something. मतलब अगर आप help कर रहे हो, काम कर रहे हो कुछ, तो definitely. लेकिन also consider, don't I think also look at this from a different lens. कि sometimes ट्रेनिंग में पेमेंट मिलना इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज यू नो यू बीइंग एबल टू लर्न समथिंग एंड देन बीइंग एबल टू डू दैट जॉब.
2: या आई थिंक वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और क्या आपको प्रोवाइड हो रहा है और आपका स्टेटस क्या है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है उसपे.
1: या मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए.
2: देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन एक्सप्लॉइटिंग समवन और उसको बोलना कि या दिस विल
1: और बीइंग रीजनेबल इनफ
2: रीजनेबल या फिर उसको ये बोल देना कि या ये तो तुम्हारा पैशन है ना.
1: उसके लिए आप ये पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा. आपको ड्राइव कीवर्ड के साथ ये पॉडकास्ट मिल जाएगा.
2: ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर. फुल एपिसोड आपको मिल जाएगा. इनफैक्ट रियल केसेस के बारे में भी इसमें बातें की है जहाँ पे मैसिव पेनल्टीज हुई है.
1: तो सब जानेंगे आप. बस ड्राइव लिख कर भेजिए ऑन 5599.
0: From the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now.
1: आप सुन रहे हैं हम एंड अभी सैंडी बताने वाली है कि आपका क्या पगार के बारे में ना
2: पगार के बारे में
1: ओह नो डिफिकल्ट
2: सो आर्टिकल है बेसिकली सो व्हाट इज द एवरेज कीवी सैलरी इसके बारे में आर्टिकल है सो एवरेज इनकम जो न्यूजीलैंड में होती है वो डिपेंड करती है हाउ इट इज मेजर्ड इसमें लिखा है कि जो एक मीडियन सैलरी होती है यानी कि द पर्सन इन द मिडल हाफ अर्न मोर हाफ अर्न लेस इज बेटर मेजर ऑफ अ टिपिकल वर्कर सो रिसेंट सैलरी डाटा जो है ये बताता है कि जो एवरेज एनुअल वेज है वो है अराउंड $80,000 का मार्क वाइल जो मीडियन सैलरी है इज क्लोजर टू $70,000
1: अच्छा सो मीडियन इज $70,000
2: एंड एवरेज एनुअल वेज इज अराउंड $80,000 मार्क इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस भी है इसमें रुजवे जैसे कि सर्टेन इंडस्ट्रीज जो है आर रेगुलरली अबव 100,000 मीडियन सैलरी मार्क जिसमें है माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस टेलीकम्युनिकेशंस फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन एंड हॉस्पिटल्स
1: ये 100,000 के मार्क पे
2: मीडियन सैलरी मार्क इज $100,000
1: उनके लिए ओह बाप रे
2: ये इंडस्ट्रीज के लिए
1: अच्छा
2: सो यू नो फ्यूचर में अगर किसी को कुछ करना है क्या करना है अगर हाई सैलरी मीडियन में आप जाते हैं तो
1: और मीडिया कहाँ पे आता है फिर
2: मीडिया इसमें तो नहीं है क्या टेलीकम्युनिकेशंस
1: नहीं या
2: सो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में फैसिनेटिंग एंगल है पब्लिक सेक्टर वर्कर्स हैव ऑन एवरेज अर्नड मोर देन प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स रिसेंटली
1: Public sector have earned
2: on
1: more.
2: average, yeah, oh, wow. they have earned more than private sector. एक time हुआ करता था बोलते थे कि भाई private में अच्छे होती है than public sector. But yeah, data
1: नहीं,
2: has
1: public ज़्यादा secure है शायद से.
2: यहाँ पे मुझे भी वही लग रहा है. Data has shown average ordinary hourly earnings were higher in public sector compared with private sector. So hourly भी अगर देखा जाए ना, वो भी public में better है than private sector. सो यू नो अगर आपको मिथ है कि द पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होता है तो स्टडी जो है रिसेंट ये बोलती है कि पब्लिक सेक्टर जो है उसमें ज़्यादा रहता है
1: या सो इंटरेस्टिंग स्टैट्स यार सो मीडियन वेज इज 70
2: सो एनुअल वेज इज अराउंड $80,000 मार्क
1: एंड
2: एवरेज मीडियन इज क्लोजर टू 70,000
1: ऑलराइट
2: आप बताइए आप कितना क्लोज है किसके क्लोज है आप एनुअल आप एवरेज के क्लोज है कि आप मीडियन के क्लोज है
1: आई डोंट थिंक सैलरी इज अ थिंग दैट पीपल लाइक टू शेयर पब्लिकली
2: या आई नो एंड आल्सो आई वुड लाइक टू नो अनदर थिंग कि आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो आपको लगता है कि बहुत हाई सैलरी डिजर्व करता है जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट बोली ना माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी गैस टेलीकम्युनिकेशंस
1: नर्सेस हॉस्पिटल्स
2: हो गया हॉस्पिटल ऑलरेडी है लिस्ट में
1: वो हाई डिजर्व करते हैं
2: इसके अलावा आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है यू थिंक डिजर्व अ मच बिगर सैलरी जो लिस्ट में जिसका होना चाहिए कि भाई इनका मीडियम तो 100,000 ही होना चाहिए
1: अच्छा
2: या ऐसा कौन सा प्रोफेशन है क्या लगता है उसपे
1: वैसा कोई मन में नहीं आ रहा है मेरे यार
2: क्या बात कर रहे हो
1: आपके मन में कौन सा आ रहा है
2: मन में नहीं आ रहा है तुम्हारा जब बैठे हो वो तुम्हारे मन में नहीं आ रहा है
1: मुझे नहीं लगता है कि ये सैलरी डिजर्व करता है ये रोल ये रोल प्रॉफिट्स डिजर्व करता है शेयर इन प्रॉफिट्स
2: की ना बैंक वाले बाबू की तरह बात उसने
3: Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
4: Yo ho, I experienced that too. I

0: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
6: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
7: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा
0: NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI
8: Time check. Hum News brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. The man accused of violent events in Epsom yesterday remains in hospital with his court date now shifted to Monday. The 49-year-old was due to appear today, but RNZ reports his lawyer has asked for more time to be able to talk to her client. Winston Peters says doing away with MMP would amount to a power grab. In a media interview today, Christopher Luxon said he's open to asking voters if they still support MMP and would like to if National returns to power. Peters says it's inexplicable.
10: I can't imagine why it would have passed his mind. I've travelled this country extensively. No one's ever raised this issue with me at all.
9: An opening date for Auckland's City Rail Link has brought relief to businesses. Passengers can step aboard from September the 13th, about 10 years since the first sod was turned. The heart of the city's Viv Beck is thrilled.
11: What it's going to do is really open up access in, out and around the city centre, which has been challenging in this particular part of it for a significant period.
9: A bill expanding citizens' arrest powers has passed its final reading. It also includes new specific offences for assaulting first responders and three new coward punch offences. To sport, the ABs will face one of South Africa's rising stars in the tour opening match against the Stormers. At first five is Yakin Ahmed, who idolised Beauden Barrett growing up. Barrett will be wearing the number 10 jersey against him on Saturday morning our time. And to rugby league with Machinery House in a league of their own, week 23 of the NRL kicks off this evening at 10-10. The Titans hosting the Cowboys, who were totally embarrassed by the Roosters last week, conceding 82 points.
8: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari good brands bhi hai.
8: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
13: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 10.2 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 1 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है एंड आज का सनसेट होगा 5:41 पर.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
4: पांच बज के दो मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ एंड रुज़बे बस आता ही होगा वापस. सो कैसे हैं आप और आपका आज का डे कैसा जा रहा है वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. बहुत सारे इवेंट्स हमारे आसपास हो रहे हैं. करण औजला पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके यहाँ पे बहुत ही जल्दी पहुँचने वाले हैं.

0: to anyone जिसको Netflix का access है.
1: But see, that's what I don't understand ना कि देखो अभी आप देखोगे जो ये episode हुआ latest करण औजला वाला उसमें it is very much similar to season one. Like हाँ चलो कुछ कुछ चीजें beep हुई है उसमें या जो भी है लेकिन the crux of the matter is the same.
0: It's the same.
1: The feel is the same.
0: Yeah.
1: The vibe is the same. But the hate is not there now.
0: मुझे लगता है जो लोग हेट कर रहे थे उन्होंने सीजन वन देखा ही नहीं था.
1: अच्छा वो ऐसे ही एक हाथ दो वीडियोस देखकर ही हेट कर रहे थे.
0: या ये ट्रेंड होता है कि हम कुछ वीडियोस देखते हैं देन वी थिंक कि यार ये तो बहुत ही गलत हो रहा है
1: और फिर ऐसा भी हो जाता है ना कि कुछ लोग जेन्युइनली हेट कर रहे थे वो चीज को एक दो वीडियो देखकर और फिर जो लोगों ने शो देखा है वो भी उस पे चढ़ गए कि हाँ हाँ चलो हम भी वीडियो बनाते हैं चलो इसी बहाने.
0: या क्या हो रहा था ना कि पहले जो लोग जिन्होंने देखा था समय रैना का शो वो सब्सक्रिप्शन लेके स्पेसिफिकली यूट्यूब पे एक सब्सक्रिप्शन लेके देख रहे थे मेंबर्स ओनली के लिए था. सो दे न्यू कि समय रैना का शो क्या है क्या कर रहा है. जो उसको नहीं देख रहे थे जो उसकी कुछ एक दो वीडियोस रैंडमली बाहर देख रहे थे जो कि जब हम रील्स देखते हैं तो उसमें बहुत सारी एडिटिंग होती है. वी आर इन दिस बिजनेस हमें पता है वो कैसे होता है.
1: विश वी कुड आल्सो डू इट
0: लेकिन हम नहीं करते हैं वो और मेरे को लगता भी नहीं है वो सही वे मेरे को लगता भी नहीं है कि जहाँ पे यू नो
1: आधी अधूरी चीजों को
0: आधी अधूरी चीजें हम वहाँ पे दिखा रहे हैं. सो हम वो चीजें देख रहे थे और वो यार तुम दो तीन चीजों को जोड़ के किसी को दिखा दोगे. अब तो वैसे भी ए का टाइम है कि दो तीन चीजें जुड़ी हुई है ऐसा नजर भी नहीं आएगा तुम्हें वो लगेगा कि प्रॉपर ही कॉन्टेक्स्ट है वो. तो किसी को दिखा दोगे तो एक इंसान जो जो जिसको पता नहीं है समय रैना के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है वो ऐसा थोड़ा उसको लगेगा कि यार ये क्या गलत हो रहा है बहुत गलत हो
1: रहा है क्या चीज है ये इसमें क्या लोगों को एंजॉयमेंट हो रहा है.
0: Netflix ने क्या कर दिया है कि जहाँ पे बाकी शोज आते हैं Netflix में जब ये शो आया तो लोगों ने जब देखना शुरू किया कि अच्छा समय रैना ये करता है which is very similar to Roadies kind of concept जो उस समय हुआ करता था but Roadies was a show दो जहाँ पे आगे भी था लेकिन वहाँ पे
1: Roadies के auditions जो थे
0: Roadies के auditions हुआ करते थे. अगर किसी ने Roadies के audition enjoy किए हैं that person will enjoy India's Got Latent as well because it's a roasting only it's a roasting show and या फिर किसी ने roasting videos enjoy की है तो that person will enjoy this as well. और क्या है ना जब बंदे का नाम हो जाता है ना उसके बाद वो कुछ भी करे रुस्बे
1: ना वही तो फिर चल जाता है
0: लोग हंसते ही है. तो या बस नाम बनाने की बात है.
1: शाहरुख खान ने सही कहा है कि भाई तुम पहले पैसा कमा लो फिर तुम प्रवचन करो फिर तुम्हारी लोग सुनेंगे.
0: लोग सुनेंगे ही सुनेंगे कोई रैंडमली उठ के कुछ बोलेगा तो नहीं सुनेंगे ना
1: इसलिए हमारी नहीं कोई सुन रहा ना
0: तो क्या करना है पहले नाम बनाओ ना फिर होगा.

0: accurate traffic.
1: Get up and Gold Coast.
2: Clear overnight. For Auckland, maybe frosty, a low of 2 degrees. On the northern, it's heavy heading north from Spaghetti Junction to Northcote Road. On the northwestern, slow from Bond Street to Rosebank. The southern's looking slow southbound from town to Loop Street and heavy northbound from Princes Street to just past Green Lane. On the southwestern, it's a slow trip from Puhinui Road to Mangere Bridge, heading north and south from Puhinui to the southern.
1: Trade the winter chill for Gold Coast sunshine with great low fares at jetstar.com.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: Moisture और ventilation का problem लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
6: अपने घर को रेडी कीजिए माइटर 10 मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन के साथ, क्योंकि अभी पाइए सीलिंग इंसुलेशन फ्रॉम जस्ट 69.95 पर बेल. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एलिमेंट आर 3.6 सीलिंग इंसुलेशन नाउ अवेलेबल एट माइटर 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन.
7: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
8: The Bedzara's birthday sale is on now with amazing savings, like the Chiropractic HD Radiate Bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Bedzara's, Medical and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.
9: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge. Providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi, or Shu Prasad, Kelston.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. वैसे आज हम यहाँ पे बात करने वाले एक हमारे एक लोकल आर्टिस्ट ही है, लेकिन आज उनके साथ हम एक अलग, टुडे ही इज वेयरिंग अ डिफरेंट हैट. मैं बात कर रहा हूँ नील पटेल के बारे में. नील पटेल के साथ हमने काफ़ी बार बात की है, लेकिन आज वी आर टॉकिंग टू हिम एज समवन फ्रॉम एशियन फैमिली सर्विसेज. हाय नील, गुड आफ्टरनून, कैसे हो?
4: हेलो सैंडी एंड रुज़बे, गुड आफ्टरनून. मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप दोनों कैसे हो?
3: बहुत ही बढ़िया है सैंडी, अभी बढ़िया ही है.
5: Yes, I'm good as well, Neil.
3: Yeah, I'm good as well.
4: Good to know.
3: Okay, so Neil, let's talk about something very important today, and this is something that we're talking about whole of this month. क्योंकि ये बहुत सारे families को touch करता है, and it is something that doesn't get talked about enough. We're talking about mental health, and आज नील आपसे जानना चाहेंगे from the start. So, just for our listeners who haven't come across Asian Family Services before, can you tell us something about you and what do you do?
4: Absolutely. Rujwe, बहुत ही important बात हम अभी शुरू हो रही है पूरी campaign. And Asian Family Services is an NGO. It was established in 1998, so last almost 28 years से it's been here in New Zealand and providing support, mental health support, free and confidential counseling, social support to Asians living in New Zealand. से बहुत सालों से बहुत ही अच्छा काम करे आ रही है NGO.
3: क्या बात है. एंड सो यू आर हियर टुडे टू टेल अस अबाउट रीच इन एंड रीच आउट.
4: करेक्ट. सो एशियन फैमिली ओवर द इयर्स क्या हुआ है उसपे, अपना जो एशियन पॉपुलेशन है इन न्यूजीलैंड, वी हैव बीन अंडर रिप्रेजेंटेड इन एनी मेंटल हेल्थ पॉलिसीज और मेंटल हेल्थ जो भी रेगुलेशंस बने हैं उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा है एज अ एशियन कम्युनिटी. सो नाउ एशियन फैमिली सर्विसेज हैज कम अप विद दिस, वी गॉट दिस कॉन्ट्रैक्ट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, यू नो, रिप्रेजेंट आवर एशियन कम्युनिटीज एंड सपोर्ट एंड हेल्प दीज एशियन कम्युनिटीज, एंड यू नो मेनली टू फ्रीली टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, टू डिस्टिग्मेटाइज. सो रीच इन रीच आउट इज अ प्रोग्राम विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय एशियन फैमिली सर्विसेज, जहाँ पे वी आर एनकरेजिंग पीपल टू टॉक फ्रीली अबाउट मेंटल हेल्थ, राइट. सेकेंडली जो भी अपने कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको एनकरेज कर रहे हैं टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ ओपनली टू देयर कम्युनिटीज. एंड फॉर दैट वी हैव गॉट अमेजिंग वर्कशॉप्स विच वी कैन प्रोवाइड, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट इन रीच इन रीच आउट. सो दैट्स बेसिकली अबाउट मेंटल हेल्थ, वी आर प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ एंड freely talking about mental health for now.
3: तो अगर अभी हमारे कोई listener है जिनको currently एक mental health situation या फिर क्या मतलब कह सकते हैं कि if उनको नहीं सही लग रहा है, अगर उनको ऐसे लग रहा है कि यार you know कुछ सही नहीं हो रहा है या mental stress अगर उन्हें हो रहा है, something of that sort.
4: Correct.
3: So how do they, like what do they do, what's next steps for them? अगर आप हिंदी में भी हमें बता सको, क्योंकि हमारे काफ़ी listeners हैं जिनको शायद हिंदी और ज्यादा कंफर्टेबल कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज लगती है.
4: श्योर श्योर. सो जो एशियन फैमिली सर्विसेज है, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. इट्स 0800-862-342 एंड वहाँ पे उनको हिंदी में ही उनको फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग मिलेगी. सो जिस उनको कोई भी तकलीफ हो, मेंटल हेल्थ इश्यू हो, उनको किसी काउंसलर से बात करना हो, और ये मुफ्त है, ये फ्री है. एंड एशियन फैमिली सर्विसेज काउंसलर्स हैं जो हिंदी में बात करते हैं, कल्चरल सपोर्ट टीम भी है जो हिंदी में बात करती है, एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब जो सपोर्ट करने के लिए जिस किसी को भी ज़रूरत हो फॉर मेंटल हेल्थ इश्यू. वी आर हियर फॉर देम.
3: नील, आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूँ कि काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ पे हम अगर जाते भी है सेशंस के लिए, थेरेपी के लिए या कहीं, तो काफ़ी बार ड्यू टू कल्चरल बैकग्राउंड वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में हमारा इशू है क्या.
4: एग्जैक्टली.
3: एंड वो ये उनको ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों, मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि अरे तुम खुद के लिए जियो ना, तुम खुद का करो ना, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि यू नो हमारे कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस होते हैं या हमें हमारे पेरेंट्स के बारे में सोचना होता है या हम यू नो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, उनको नहीं समझ में आती है वो चीज़ें. एंड दैट्स वेयर आई फील यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव आप लेकर आ रहे हो एशियन फैमिली सर्विसेज, दिस इज़ वेयर इट विल स्टैंड अपार्ट, क्योंकि यहाँ पे नाउ आई विल गेट समवन who will understand my culture.
4: Absolutely. Absolutely.
3: Who understands where
4: That's
3: I come
4: very
3: from.
4: True. So, absolutely. So, ये एकदम ही culture को ध्यान में रखते हुए ये सारे programs बनाए हुए हैं हमने. Specifically, I would like to talk about the workshops. हम workshops कर रहे हैं for young groups, for community leaders, for religious leaders as well, और for parents. बिकॉज जो इंटरजेनरेशनल गैप होता है, अभी जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं पेरेंट्स इंडिया से या कोई और कंट्री से आए हुए हैं, सो उनमें जो एक गैप है उसको कैसे ब्रिज करें, तो ब्रिजिंग कल्चर्स, ब्रिजिंग दोज गैप्स इज वन ऑफ द अदर थिंग्स इज वेल. सो इसके लिए हमने बहुत अच्छी वर्कशॉप्स बनाई हुई है जो हम लोग रन कर रहे हैं. सो उस वर्कशॉप्स के लिए भी अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए, कोई आप अगर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर सुन रहे हो और इफ यू थिंक कि आपके ग्रुप के लिए एक एक वर्कशॉप करी जा सकती है फॉर योर कम्युनिटी मेंबर्स या फॉर पेरेंट्स फॉर यंग ग्रुप्स, प्लीज रीच आउट टू अस एशियन फैमिली सर्विसेज पे. यू कैन गेट कॉन्टेक्ट डिटेल्स फ्रॉम रोजबी एंड सैंडी एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू अरेंज वर्कशॉप्स फॉर यू ऑल.
3: सो इज दैट फ्री एज वेल फॉर कम्युनिटी कम्युनिटीज?
4: दैट इज एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट.
3: ओके,
4: वी डोंट चार्ज अ पेनी फॉर एनीथिंग. या
3: आई थिंक इट्स
4: फ्री है.
3: इट्स अ ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव. बस मेरे को यही चाहिए कि हमारे लीडर्स को लगना चाहिए कि हाँ इट्स ओके टू यू नो गो ऑन गो फॉर वर्कशॉप्स एंड एंगेज इन अपस्किलिंग एंड ऑल्सो यू नो लर्निंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग.
4: या सो वो वर्कशॉप्स में यही सिखाते हैं कि कैसे वी गिव यू स्किल्स एंड नॉलेज कैसे हैंडल करना है. अगर कोई आपके पास आ रहा है कि आई नीड सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ, तो कैसे हम उसको सपोर्ट कर पाए राइट वे में, कौन से सर्विसेज में उसको लिंक कर पाए, कैसे अर्ली साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर पाए, यू नो. और उसके बाद विल गिव यू कॉन्फिडेंस, इस वर्कशॉप विल गिव यू कॉन्फिडेंस. इनफैक्ट रुजबी एंड सैंडी आप दोनों भी कर सकते हो अटेंड इस वर्कशॉप को, बिकॉज यू आर पब्लिक फिगर्स एंड यू कीप मीटिंग सो मेनी पीपल. सो पीपल लाइक यू एज वेल जो जो बाहर है आउट एंड अबाउट है, वी एनकरेज यू ऑल टू टेक ऑन दिस वर्कशॉप्स. इट विल बी रियली गुड.
3: एब्सोल्युटली नील, वुड लव टू. या वुड लव टू. सो या डेफिनेटली. सो 0800-862-342 is the number. You can call and you can have a chat with the team. But अगर आपको वर्कशॉप्स के बारे में जानना है तो वर्कशॉप्स के बारे में भी यही नंबर पर कॉल करके हम जान सकते हैं कि उसके लिए.
4: So they can contact me. They can contact me on 02. I mean, मेरा नंबर जो है, or maybe they can contact Hum FM and they can forward the details.
3: तो एक काम करिए, हम ऐसे ही करते हैं ना कि एक काम करें, हमें कॉन्टैक्ट करें और हम साथ में ही वर्कशॉप करते हैं, क्योंकि सैंडी और मैं भी कर लेंगे ये वर्कशॉप, क्योंकि हम मुझे लगता है हमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना.
4: Absolutely amazing. Sounds good.
3: Cool. Thank you so much, Neil. Yeah. Thanks for joining us.
4: And, no, thank you. Thanks, रुजबी एंड सैंडी. हम एफ एम पर बहुत सारी आगे जानकारी मिलेगी आपको इस रीच इन रीच आउट प्रोग्राम के बारे में.
3: जी एब्सोल्युटली.
2: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
6: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
7: मैं लाऊं अपना ए गेम.
2: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: भीगे, वेल भीगे तो नहीं होने वाले हम अभी, क्योंकि भाई बारिश का कोई सीन अभी ऐसा दिख रहा नहीं है ना। सैंडी वेदर देखा आपने क्या है?
1: मैंने देखा है और अच्छा वेदर है, देयर इज नो बारिश का सीन अभी।
0: अभी कल वापस से 4 डिग्री बढ़ने वाला है, लेकिन सुबह
1: संडे को माइट बी अ बिट बारिश, बट आई होपिंग कि ना हो।
0: Anyway, it's okay यार, थोड़ा तो बनता है।
1: हाइकिंग करना है उस दिन ना, तो
0: हाइकिंग के लिए जा रहे हो वापस? है हाइकिंग चालू हो गया आपका?
1: So Sunday morning it's gonna be
0: hiking. You found a new group now?
1: नहीं नहीं, तुम इन्फॉर्म नहीं हो।
0: मैं इन्फॉर्म नहीं हूँ। Yes,
1: yeah, the only thing is
0: that's right. Okay, so Sandy, आज हमारा टाइम वैसे बहुत ही जल्दी चला गया, बट आज का सेगमेंट ये है जो वैसे भी ज्यादा हमें इसका डिमांड आता नहीं है। Drive through confessions. Yeah, well, is it something that you want to confess about? अगर आपको कोई चीज confess करनी है,
1: maybe हम कुछ category बोलते हैं कि इस category में अगर आपको confess करना है, right?
0: बताओ category, बताओ ना कोई।
1: क्या आपने कभी किसी के signature copy किए हैं?
0: Oh my God!
1: Have you ever copied someone's signature for a harmless reason? Like harmless? I'm not saying harmless कि आपके benefit के लिए किए, लेकिन किसी को harm नहीं हुआ।
0: ये तो मतलब ये मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि बचपन में जिनके डायरीज में रिमार्क्स साइन करने होते थे ना,
1: पेरेंट्स के आप करते थे कॉपी?
0: हाँ, तो क्या आप करते थे साइन? तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ,
1: मैंने उनको हार्म नहीं हुआ ना, हमारा बेनिफिट हुआ।
0: हार्म तो हुआ ना, आपने झूठ बोला ना।
1: Yeah, but I'm saying the literal harm, जैसे कि किसी के property के साइन, मतलब you know, I'm that way I'm saying. So have you ever copied someone's signature for a harmless, उनके लिए harmless नहीं था, लेकिन आपके लिए benefit जरूर था।
0: अच्छा, okay, let's hear from him. Hi.
2: Hello.
0: जी, क्या नाम है आपका?
2: मैं नाम नहीं बता
1: रहा। Obviously.
0: अच्छा, हाँ, sorry, my bad. Tell us, what is the story?
2: हाँ, तो मैंने अपने डैड का भी किया है, बीवी का भी किया है, बेटी का भी किया है।
1: क्या बात कर रहे हो, क्या रीजन, क्या रहे, different reason से क्या?
2: डैड का तो वो मतलब जो अभी रुजवे बोल रहा था स्कूल में
0: रिमार्क्स और वो सब। हाँ
2: हाँ, और बीवी का तो मतलब कन्वीनियंस के लिए, मतलब कुछ यहाँ अगर कुछ प्रॉपर्टी लाइक यू नो पेपर
1: मतलब शी वाज अवेयर अबाउट इट, राइट?
2: ऑफ कोर्स।
1: अच्छा, हाँ, फिर ठीक है ना,
2: टाइम बचाने के लिए और कुछ नहीं।
1: अच्छा,
0: हाँ, वो हंस रही पीछे, हाँ हाँ, उसको कुछ और कहना है?
2: नहीं, वो कोई गलत इंटेंशन नहीं, बट
1: सही इंटेंशन से किया।
2: बीवी का भी ऐसा मतलब काम थोड़ा जल्दी फटाफट करने के लिए।
0: Yeah, but you know what? Actually, my dad also used to do the same thing.
1: Yeah.
0: Actually, मैं एक point पे ऐसा था कि मेरे dad मेरी mom की signature और better करते थे compared to my mom.
1: क्या बात कर रहे हो? I think वो हो जाता है ना कि अगर आप कहीं पर गए हो and then आपको documents चाहिए, बहुत important है, तो something like this.
0: और कुछ लोग होते हैं जिनकी ना signature कभी match नहीं करती है, मतलब like for example, I don't know, but I know like for example my mom, I can talk about her. वो उनको आप दो जगह पे साइन करने बोलो, वो दोनों मैच नहीं करेगी दूसरे के साथ। तो इसलिए होता है ना ये भी।
1: बचपन में काफी लोगों ने ट्राई किया होगा, मैंने भी किया है।
0: मैं भी मेरी मॉम की सिग्नेचर और डैड की सिग्नेचर भी ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे डैड की सिग्नेचर मेरे से नहीं जमती है, मेरी मॉम की थोड़ी बहुत जम जाती है मुझे। मेरे डैड की हैंडराइटिंग बहुत बाप है। मेरी बिल्कुल हैंडराइटिंग नहीं गई उनके ऊपर।
1: आप भी शेयर कीजिए अगर आपने कभी ऐसा किया, कॉल करके या फिर मैसेज करके।
0: यहाँ पे मैसेज एक आया है, अश्नील का मैसेज आया है। सैंडी, वी यूज टू डू अ लॉट व्हेन वी यूज टू स्किप फ्रॉम आवर स्कूल, यूज टू साइन माय मॉम सिग्नेचर।
1: वो भी सिक लीव होती है ना, मतलब सिक लीव का कुछ और नाम होता था, मुझे वो नाम याद नहीं है, बट
0: डायरी होती थी और डायरी में पीछे रिमार्क्स होते थे लाइक टॉकेटिव वाज टॉकिंग इन क्लास या ऐसे कुछ, तो भी ऐसा नॉर्मल सा। तो मैं
1: भरे होते होंगे तुम्हारे,
0: तो मैं उसके ऊपर हमको क्या रहता था, नेक्स्ट डे साइन लेकर आना है, तो मैं वो साइन नहीं लेकर जाता था, मैं घर वालों को दिखाता नहीं था। एक एक दो दो हफ्ते, एक एक महीने बाद जब अभी दो रिमार्क्स लग गई है क्योंकि, तो टीचर बोलेगी कि इसके पहले वाले रिमार्क पे कोई साइन नहीं है, तो दो तीन रिमार्क्स एक साथ साइन करवा देता था फिर मैं, क्योंकि पता नहीं बहुत डर लगता था यार वो टाइम।
1: हाँ यार, डर लगता था। मैंने भी ऐसे बहुत घपले किए थे अंटिल घर पे टेलीग्राम ही आ गया।
0: अभी आजकल के बच्चे नहीं डरते मुझे लगता है। आजकल के बच्चे बोलते हैं कि हाँ वो
1: पेरेंट्स भी फ्रेंडली हो गए हैं ना,
0: टीचर की गलती थी
1: मैं तो, वो हमने भी बोला हुआ है,
0: हमने भी बोला है, राइट है, मेरे घर वालों ने कभी माना नहीं है, मेरे घर वाले बोलते थे हमेशा क्या टीचर की गलती होती है क्या,
1: वही ना यही सही है, टीचर ही गलत है सारे।
0: लेकिन कभी कभार ऐसा होता था, मेरे को लग रहा है ना टीचर्स इफ यू आर लिसनिंग, कभी कभार होता है कि ऐसा परसेप्शन बैठ जाता है तुम्हारा कि मस्ती आवाज आया है, मतलब ये बंदे ने आवाज किया होगा।
1: और ऐसा हर क्लास में कोई ना कोई एलिमेंट होता था,
0: आई वॉज दैट एलिमेंट
1: जो बस जाता था

0: आप सुन रहे पावर ड्राइव एट 5 और हमने यहाँ पे आज कन्फेशन में पूछा कि क्या आपने कभी किसी और की साइन की है,
1: सिग्नेचर कभी आपने क्या डॉज की है, अगर आपको कन्फेस करना है।
0: लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया कन्फेस किए। एक मैसेज आया यहाँ पे, इट्स नॉट रिगार्डिंग सिग्नेचर बट ये बहुत अनबिलीवेबल है लेकिन बहुत पॉसिबल भी है। तो इन्होंने कहा है कि इनकी जो लिटिल डॉटर है, शी इमोशनली प्रिटेंड हर हैंड्स वर सोर एंड माई हस्बैंड डज हर होमवर्क बट अनबिलीवेबल शी वॉज फर्स्ट इन हर क्लास।
1: मतलब बच्ची ने प्रिटेंड किया कि हाथ उसके सोर है,
0: ऐसा माँ बोल रही है।
1: ऐसा
0: अगर आप उनके पति को पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं यार, मेरी बेटी के सच्ची में हाथ बहुत दुख रहे थे।
1: मतलब फादर ने पूछा कि यार बेटी का इतना हो रहा है तो मैं उसके ब्याह पे मैं करता हूँ होमवर्क।
0: और फादर ने खुद का होमवर्क कभी नहीं किया होगा।
1: वही ना, बेटी का होमवर्क किया फर्स्ट टाइम वो क्लास में। और मैं सोच रही हूँ यार, छोटी सी बच्ची कैसे उसने प्रिटेंड किया होगा, कितना लंबा उसने प्रिटेंड किया उस पे।
0: नहीं, इतना लंबा नहीं, आपको लग रहा है ऐसा। भाई बाप ऐसे बहुत पिघल जाते हैं लड़की के मामले में।
1: Obviously, I know, yeah.
0: तो वो उसने बस एक ही बार आके बोला, डैडी माय हैंड्स आर सो, ओके बेटा मैं करता हूँ।
1: कोई बात ही नहीं बेटे, ये ले
0: मैं करता हूँ।
1: एक और का मैसेज आया है कि आई डिड फ्यू टाइम्स My husband signed. Hope आपके हस्बैंड को पता है कहाँ साइन किए हैं आपने।
0: देखो चेक बुक्स वैसे भी अभी चेक्स तो यहाँ पे यूज नहीं होते,
1: वो तो होते नहीं है। काफी लोग तो ये थैंकफुल करते होंगे कि भाई ठीक है चेक्स नहीं होते अभी, सारे साइन तो उधर ही होते हैं,
0: सारे साइन वहाँ पे होते हैं। बट हाँ अभी आजकल एक्चुअली साइन होता भी कहाँ पे, अभी आजकल सब डिजिटल सिग्नेचर ही होने लग गया है ना।
1: नहीं रियल होते हैं, फिर भी रियल होते हैं बहुत सारी जगह पे, आपको रियल करके
0: कुछ दिखाने भी होते हैं, दिखाना पड़ता होगा।
1: फ्यू फॉर्म्स आते हैं जहाँ पे रियल सिग्नेचर की अभी भी जरूरत होती है, बट या यू कैन स्कैन एंड सेंड देम।
0: अभी आज ट्रेंड मेकर्स की अगर बात करें 6 बजे के बाद, तो क्या हो रहा है आज ट्रेंड मेकर्स में?
1: आज ट्रेंड मेकर्स में एक जोड़ी है जो बड़ी फेमस हुई एज अ म्यूजिक कंपोजर इन 90s, उस जोड़ी में से एक इंसान अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: अच्छा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल?
1: नो, नदीम।
0: ओ श्रवण, नदीम श्रवण।
1: या सो मुझे नदीम का तो आज तक पूरा नाम भी नहीं पता था, बिकॉज़ वी ऑलवेज सेड नदीम श्रवण के म्यूजिक में, नदीम श्रवण के म्यूजिक में।
0: मुझे तो लगता था कि नदीम का लास्ट नेम श्रवण है।
1: टुडे नदीम इज सेलिब्रेटिंग बर्थडे। आशिकी मूवी के गाने आप सुनेंगे, राजा हिंदुस्तानी, यू नो क्लासिक सॉन्ग्स ऑफ 90s एक्चुअली आज आप सुनने वाले हैं।
0: नदीम का लास्ट नेम श्रीवास्तव नहीं, वो आदर्श श्रीवास्तव, वो अलग है,
1: वो अलग है।
0: अच्छा, नदीम श्रवण,
1: नदीम अलग है, श्रवण अलग है।
0: आज किसका बर्थडे?
1: नदीम का।
0: आज नदीम का बर्थडे।
1: सो आज नदीम का बर्थडे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं ट्रेंड मेकर्स में। Throwback. Brought to you by 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, that's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: easy queen beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
3: छह बज चुके हैं ट्रेंड मेकर्स में. स्वागत है आपका. आज ट्रेंड मेकर्स में क्या होगा, लेकिन उससे पहले सैंडी, गुड इवनिंग.
4: अ वेरी गुड इवनिंग रुज़बे. यस, ट्रेंड मेकर्स शुरू हो चुका है. आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नदीम अख्तर का बर्थडे. नदीम श्रवण की जोड़ी में से नदीम आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. नेम इज नदीम अख्तर सैफी.
3: हाँ, वही मैं बोल रहा था कि नदीम अख्तर, नदीम सैफी बोल रहा है मेरे इस पे तो यार.
4: हाँ, नदीम अख्तर सैफी इनका पूरा नाम है.
3: आपको पता है ये बहुत ही फ्लैम्बॉयंट और इंटेंसली पैशनेट हाफ थे. मतलब अबाउट द, मतलब ही वाज द फ्लैम्बॉयंट वन नदीम, एंड श्रवण वाज द मोर क्लासिकल वन. नदीम वाज द वन हु एकदम मेलोडी के वो थे, वो मेलोडी मशीन बोलते थे उनको, मेलोडी जनरेटर.
4: ओके, मेलोडी दी मशीन आज के टाइम पे अगर बोल रहा हो तो.
3: मेलोडी दी मशीन, अभी मेलोडी का अलग ही चल रहा है लेकिन.
4: Anyway. खाओगे तो जानोगे. हम आगे बढ़ते हैं नदीम की

0: besides the lead actors.
1: This is amazing, yaar. मेरे को लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा किया और आज के टाइम पे शायद ये सब कुछ वापस करना चाहिए बाकियों को भी. Well, उनका जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था वो आशिकी के थ्रू था.
0: और इमेजिन आपको पता है आशिकी का एक खास स्टोरी. सो आशिकी एक्चुअली वाज सपोज्ड टू बी ओनली अ म्यूजिक एल्बम.
1: ओके.
0: लेकिन फिर उसके बाद महेश भट्ट ने जब ये सुना तो उन्होंने कन्विंस किया गुलशन कुमार को कि भाई इसके अराउंड एक मूवी बनाते हैं.
1: क्या बात कर रहे हो.
0: हाँ, और फिर उसके अराउंड मूवी बनी.
1: दिस इज सो अमेजिंग. 20 मिलियन कॉपीज इस साउंडट्रैक की सोल्ड हुई थी उस समय पर, मेकिंग इट वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बम एवर.
0: वेल, तो आशिकी की बात कर रहे तो उसी का ये गाना आपके लिए इस बार. बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड डायरेक्टेड बाय नदीम श्रवण.

0: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और ट्रेंड मेकर्स में आज नदीम को हम शाउट आउट दे रहे हैं फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन बॉलीवुड एंड प्लस आज उनका बर्थडे भी है.
1: साउंड ट्रैक्स जो उन्होंने अपने बॉलीवुड को दिए हैं, जितना टाइम वो बॉलीवुड में एक्टिव रहे हैं रुजबे, देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही हिट साउंड ट्रैक दिया है. जिस भी मूवी में उन्होंने साउंड ट्रैक दिया है उसके गाने जरूर हिट हुए हैं.
0: सुपर हिट
1: हुए हैं. इमोशनल रोमांटिक मेलोडीज को ले लो या फिर उनके कोलैबोरेशंस को अगर देखा जाए, कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम,
0: टॉप सिंगर्स
1: सबके साथ काम किया इन्होंने.
0: एक टाइम ऐसा था नदीम शर्मन का इतना डिमांड था कि प्रोड्यूसर्स उनको गाड़ियां गिफ्ट करते थे, गाड़ी लग्जरी गाड़ी गिफ्ट करते थे कि प्लीज ये गाड़ी लो और हमारे ये करो. उन्होंने दोनों ने मिलकर अराउंड 250 फिल्म्स को रिजेक्ट किए हैं just so that वो क्वालिटी को मेंटेन कर सके.
1: ये आजकल में भी है म्यूजिक कंपोजर्स में, लेकिन आजकल क्या हो चुका है ना, मेरे को लगता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर एक कोई नहीं कर रहा है तो दूसरा तीसरा चौथा अवेलेबल है उस चीज को करने के लिए.
0: आजकल पूरी पूरी एल्बम्स थोड़ी मिल रही है ना एक म्यूजिक डायरेक्टर को,
1: भी नहीं मिलती है,
0: एक एक गाना मिलता है सिर्फ.
1: या एल्बम मेरे को लगता है जब मिलती है पूरी की पूरी इट वर्क्स वंडर. फॉर एग्जांपल धुरंधर को ले लो, धुरंधर पूरी की पूरी एल्बम एक ही म्यूजिक कंपोजर के पास थी तो बहुत अच्छा लगा, साउंड ट्रैक भी उसी के पास था. धोनी के बाद हमारे साथ अमर मलिक ने ऑलरेडी किया बिकॉज होल एल्बम वॉज विद हिम, तो वो साउंड ट्रैक अलग ही साउंड करता है. तो मेरे को लगता है म्यूजिक कंपोजर्स के पास जब पूरी एल्बम आती है वो काइंड ऑफ जैसे 90s में काम करता था ये आज भी काम करेगा.
0: जी तो अभी आपको जो गाना सुनाएंगे ये भी एक बहुत ही प्यारा सा गाना है फ्रॉम द मूवी
1: दीवाना जिसमें शाहरुख खान का डेब्यू हुआ था.
0: ओह राइट, उसका ये गाना एंजॉय कीजिए.

0: Trend Makers.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.
2: Hey, hey.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
4: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 09-2788-600.
5: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten because the right advisor knows the application process, the policy wording and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEERA. North Henvale Advisory Limited, trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
6: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
7: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI
8: This Tuesday?
9: No time, Briscoe's lady. The sale is for one day only. So hurry in for up to 60% off all electrical heating, duvetners, kitchen appliances, sheets, and much, much more. Thursday only. Open late at Briscoe's.
10: See online for T's and C's.
11: A safe night can change everything. That's why Contact donates the energy to power Women's Refuge. This winter, when you donate a safe night for someone seeking safety, we'll match it up to 5,000 nights. Donate now at safenight.nz.
12: The beat of Bollywood.
13: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं

0: sleepyhead sleepy easy queen beds from only 799 on sale now.
1: Nadeem Shravan ke gaane aaj aap sunenge lagatar back to back this hour 7 baje tak, aur wo isliye kyunki aaj Nadeem apna birthday celebrate kar rahe hain.
2: कॉन्ट्रोवर्सीज भी काफ़ी रही है 97 में टी सीरीज़ के फाउंडर गुलशन कुमार जब इनकी इनका मर्डर हुआ तो एक्विजिशंस नदीम के ऊपर भी थी
1: और उसके बाद से वो चले गए लंदन और दुबई उन्होंने ट्रेंड शुरू किया मुझे लग रहा है कि लंदन जाने का कुछ भी होता है तो
2: या बिकॉज ओवर टाइम क्या हुआ कि यूके कोर्ट उन्होंने डिक्लाइन किया जो एक्सट्रेडिशन होता है and he consistently maintained his innocence though lekin you know wahan pe career effect zarur hua but he came back and did Dhadkan and Raaz as well.
1: Oh wow,
2: yeah, ye dono movies ka hit gana unhone zarur diya tha. Legal and public discussion around the case jo hai ye chalti gayi, saalon tak ye chalti gayi, but unhone hamesha maintain kiya ki he is innocent.
1: उन्होंने एक्चुअली में जब ही उनके पार्ट वेज हो गए ऑफिशियली 2005 में नदीम ने अपनी पूरी एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री में लगा ली. दे ही ट्राइड टू मेक लग्जरी फ्रेग्रेंसेस और उन्होंने अपना खुद का एक नीश परफ्यूम ब्रांड दुबई में लॉन्च किया कॉल्ड नदीम परफ्यूम्स और उन्होंने उसमें काफ़ी पैरल्स भी ड्रॉ किए ब्लेंडिंग म्यूजिकल नोट्स हाई नोट्स बेस नोट्स एंड ब्लेंडिंग सेंट्स तो ऐसा करके उन्होंने अलग परफ्यूम का रेंज बनाया वहाँ पे.
2: दिस इज सो कूल. वेल इनकी मेलोडीज जो थी ये हमेशा यू नो बहुत ही मेलोडियस हम कह सकते हैं यही होती थी जिसके वजह से बिकॉज काफी लोग उस समय
1: चिपक जाती थी वो तुम्हारे ज़हन में.
2: या काफी लोग उस समय पर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स की ओर चल पड़े थे बट इन्होंने अपनी मेलोडीज को ऐसा रोमांटिक वो सब रखा जिसके वजह से आज तक हमें याद है इनके गाने.
1: या और आज भी कभी भी उनका कोई ऐसा धुन बजती है तो हमें पता चल जाता है कि अरे ये गाना वो वर्ड्स याद रह जाते हैं.
2: वर्ड्स याद है उनके. या
1: दैट्स राइट. सो चलो ये गाना सुनते हैं ये भी.

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rova. Accurate traffic.
1: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
2: Clear overnight for Auckland. We could get a frost, a low of 2 degrees. On the northern, it's heavy in both directions around the Oniwa Road interchange from town to Silverdale, 37 minutes. On the northwestern to Massey, 27. It's slow St Luke's to Rosebank. The southern to Manukau, 28 minutes to Drury, 40. Just heavy northbound from Sylvia Park to Green Lane. And the southwestern is slow still heading north from Massey Road to Mangere Bridge.
1: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
0: अपने घर को रेडी कीजिए Mitre 10 मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन के साथ क्योंकि अभी पाइए सीलिंग इंसुलेशन फ्रॉम जस्ट 69.95 पर बेल. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना. एलिमेंट आर 3.6 सीलिंग इंसुलेशन नाउ अवेलेबल एट Mitre 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन.
3: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings. Like the Chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Medical and Poke Koke, celebrating 36 years of great sleep.
4: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
5: Escape to Fiji and Hawaii with Flight Centre. Book a 13-night fly, stay and cruise from $5,899 per person. Fees, T's and C's apply. Departs Auckland. Flight Centre, your centre for travel.
2: Weeknights, you're flat out. And it's leftovers again?
6: Don't settle for meh dinners. Spice things up with HelloFresh.
2: Zesty laksa, viral tacos or a juicy steak. Ready in minutes.
1: Mm.
2: Take back dinner time with HelloFresh.
7: TradeDepot.co.nz.
6: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 7kg clothes dryer just $249. 9kg heat pump dryer just $499. 10kg 9-star energy rated heat pump dryer $899. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
7: TradeDepot.co.nz.
8: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
9: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
9: Let's go! 3, 2, 1.
10: Trend Makers.
11: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और ट्रेंड मेकर्स में आज नदीम श्रवण नदीम को हम शाउट आउट दे रहे हैं. उनके बढ़िया से गाने आपको सुना रहे हैं. एक और गाना सुनाने से पहले और उनके बारे में थोड़ी और बातें करने से पहले, यहाँ पे एक लाइव इवेंट हो रहा है जिसका नाम है भजन जैम्स. अगर आपको भी इस इवेंट का हिस्सा बनना है तो eventbrite.com पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे. रवितेश दियो और उनका इनक्रेडिबल लाइव बैंड आपके साथ एक इवनिंग शेयर करने वाले हैं ऑन सैटरडे 22nd of August 7 बजे एट वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापा टोटो. एंड $30 की ये टिकट है. चिल्ड्रन अंडर 5 जो है वो फ्री में जा सकते हैं वहाँ पे. एंड यहाँ पे स्नैक्स और कावा भी बेचा जाएगा. तो टिकट्स आप ले लीजिए eventbrite.com से या फिर कुछ जगहों पे भी आपको मिल रहे हैं जैसे कि जेस फ्रेश मार्ट पापा टोटोए, वैली फ्रेश पापा टोटोए और शिव प्रसाद एट केल्स्टन. तो टिकट्स आपके ले लीजिए फटाफट. 22nd August को ये इवेंट होने वाला है.
12: या नदीम के आज हमने गाने प्ले किए नदीम श्रवण की जोड़ी से एंड जिनके कंपोज किए गए गाने आज आपने यहाँ पे सुने. नदीम श्रवण ने वैसे इनके म्यूज़िक के ज़रिए बहुत सारे लोगों का जो करियर था ये एलिवेट हुआ है देखा जाए तो. जैसे कि कुमार शानू
11: भी और आई थिंक 90s के सारे सिंगर्स ना मोस्ट सिंगर्स के साथ
12: जैसे अनुराधा पौडवाल
11: अभिजीत के साथ
12: अलका याग्निक, उदित नारायण, सोनू निगम, एसपी बाला सुब्रमण्यम, तो ये सब लोगों ने नदीम श्रवण के साथ काम किया, जिसके वजह से इनके करियर को बूस्ट भी मिला, बिकॉज द कंपोजिशन वाज बाय नदीम श्रवण.
11: या एंड कि मतलब बहुत ही बढ़िया इनका तो रोल प्ले हुआ था बॉलीवुड में, जिसके आज भी गाने हम सुनते हैं. लाइक यहाँ पे जब भी कुमार सानू आते हैं, वो आज भी उनकी कंपोज्ड गाने
12: या नदीम श्रवण
11: के गाने गाते हैं ना.
12: श्रवण पास्ड अवे इन 2021, श्रवण राठौड़, ही पास्ड अवे इन 2021, बट देन नदीम कंटिन्यूड कंपोजिंग म्यूजिक इंडिपेंडेंटली. सो वो आज भी इंडिपेंडेंट अपना म्यूजिक जो है उसको कंपोज करते हैं, उसको अलग अपने चैनल पे रिलीज करते हैं.
11: वो एक परक्यूशनिस्ट भी है, स्किल परक्यूशनिस्ट, तो मतलब वो ड्रम्स, बोंगोस, ये पहले कॉलेज फंक्शंस में बजाते थे, और एंड दैट इज वेयर ही एक्चुअली मेट श्रवण फॉर द फर्स्ट टाइम.
12: वाओ.
11: और वहाँ से फिर उनका ये जो डुओ है, ये जोड़ी शुरू हुई. वैसे आपको पता है विशाल शेखर जो है, ये लोग भी ऐसे बैंड के थ्रू ही मिले थे. एक बैंड था जहाँ पे वो लोग दोनों थे, एंड देन वो बैंड तो चला गया, लेकिन वो दोनों साथ में लग गए.
12: विशाल अडलानी एंड शेखर अफजारी. शेखर मेरे को बहुत अच्छा सिंगर, ही इज अ वेरी गुड सिंगर एज वेल. इवन विशाल इज वेरी गुड सिंगर एज वेल.
11: विशाल आल्सो सिंग्स,
12: या ही आल्सो सिंग्स वेल. सो इसी नोट पे आपको यहाँ पे टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है. जाने से पहले हम नदीम श्रवण का कंपोज किया गया एक और गाना यहाँ पे सुनने वाले हैं. एंड रिमेंबर, हमारा पॉडकास्ट भी सुनते रहेगा, जो हमने लेटेस्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है. आने वाले दिनों में एक और पॉडकास्ट हम रिलीज करने वाले हैं. हमें बहुत अच्छा लगा रुजबे, आई थिंक इट वॉज रियली गुड कि ईयर 13 के स्टूडेंट्स के साथ जो हमारी मुलाकात कल हुई है, एंड वी टॉक्ड अबाउट अ प्रोजेक्ट दे डिड. एंड एक ऐसा प्रोजेक्ट ईयर 13
11: बिजनेस के बारे में बात की हमने.
12: मतलब ईयर 13 के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कुछ शुरू किया है यंगस्टर्स के लिए, अपने से भी यंग बच्चों के लिए उन्होंने कुछ शुरू किया है, जो हमें तो बहुत पसंद आया, और इसके बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे अगले हफ्ते.
11: जी, सो या देयर इज लॉट्स हैपनिंग. अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉडकास्ट चाहिए जो आपको सुनना है जिस टॉपिक के बारे में, तो हमें जरूर बताइएगा आप 5599 पे आप मैसेज करके.
12: एंड आल्सो आई विल से कि अगर आपके बच्चे कुछ ऐसा स्पेसिफिक कर रहे हैं व्हिच इज लाइक आउटस्टैंडिंग, reach
11: out to us.
12: Because
11: अभी काफी लोग वो participate कर रहे हैं ना, वो एक program है youth का, वो young enterprise scheme.
12: Yes,
11: मैं अगर आपने भी participate किया तो बताइए हमें, हम देखते हैं how we can also help you out. We'd love to support you. So yeah, with that, thank you so much for your time today. We'll see you tomorrow. कल Friday ये और भी ज़्यादा मस्ती.
12: Finally, so इसी note पे आपको टाटा बाय बाय कहते हैं. Bye.
11: Have a wonderful one. Bye bye.

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820262 35 మ్యాక్స్ టచ్.

हम पर यह है नाइट कैफे और रोमांटिक थर्सडे है, तो आपके लिए कुछ लिखकर लेकर आया हूं और बयां कर देता हूं। कुछ लोग लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ आंखों का। हम जब हाले दिल बयां करते हैं, ना सिर्फ आंखों का, ना सिर्फ लफ्जों का, दिलो जान से किया करते हैं।

Cafe on Hum. On vacation. A secret destination.

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rover.
1: Rebel is turning 30 and we've got 30% off deals to celebrate. Like 30% off all Adidas running shoes, 30% off birthday deals and so much more. On now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
2: Get fresh deals from the fresh food people at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, or yummy ambrosia apples, $4.79 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best, हमारी कोई branch नहीं है.
3: Hum. Night Cafe on Hum.
5: हम पर यह है नाइट कैफे और रवि का साथ है. 12 तक आपका साथ देता रहूंगा. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे के बारे में बात कैसे नहीं कर सकते हैं, जबकि सैंडी और रुस्बे काफी मेहनत करके ये जो पैकेज है आपके लिए लेकर आए हैं. मार्च 2027 में ये उड़ान भरने को है और इसमें आप एक ही ट्रिप में दो डेस्टिनेशंस घूम सकते हैं, बैंकॉक और बाली. तो इन पर और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप ड्राइव लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करें ताकि आपको ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस मिल सके, यानी कि सभी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रीपेड रहेगा और आप अपने फाइनेंशियल अरेंजमेंट को अभी से ही कर सकते हैं फॉर दैट अमेजिंग ट्रिप इन मार्च 2027. तो ड्राइव लिखे 5599 पर भेजे ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके. सैंडी और रुस्बे बिल्कुल लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और साथ में इनकी जो कंपनी है मज़ेदार रहने वाली है और साथ में जो एक्साइटिंग डेस्टिनेशन है बैंकॉक और बाली आपका इंतज़ार कर रहा है.

जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। हमारी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना। अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर आप फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilieservices.nz पर विजिट करें। ये सूचना मैसेज आपके लिए एशियन फैमिली सर्विसेज की ओर से है।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर ये नाइट कैफे का सिलसिला है और जबकि ये आज है थर्सडे तो रिदम एंड रोमांस की बातें हो रही हैं और ऐसे ही गाने इस आवा पर भी आपके लिए पेश करता रहूंगा जबकि इस जस्ट आफ्टर नाइन तो यहाँ पर आपके लिए जबकि रोमांटिक थर्सडे है तो ऐसे ऐसे रोमांटिक गानों को पेश करेंगे जो अगर जो आप बॉलीवुड की दुनिया में देखें तो दिलीप कुमार से लेकर विजयंती माला की जोड़ी से लेकर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी से लेकर आहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक जोड़ी तक गाने इस रेंज में आपको मिलेंगे। अब आप शायद हमसे ये पूछेंगे कि दिलीप कुमार और विजयंती माला की जो गाने हैं ये कैसे आप सुन सकते हैं, तो आपके पास में मौका है जबकि रोवा ऐप पर आप जाइए और यहाँ जाने के बाद में जो हम रिवाइंड का जो म्यूज़िक स्टेशन है 60s और 70s के गाने, तो दिलीप साहब और विजयंती माला की जो जोड़ी की गाने हैं ये आप यहाँ पर सुन सकेंगे। और इसके अलावा शाहरुख और साथ में काजोल की रोमांटिक जोड़ी के गाने और साथ में आहान पांडे और अनीत पड्डा के जो रोमांटिक गाने, ये इस रेंज के गाने आपको 104.2 FM पर सुनने को मिलेंगे। मैं हूँ अभी आपके साथ में, बस साथ देते रहिएगा।

हम पर यह है नाइट कैफे और करण औजला अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लाइव इन ओकलैंड करने जा रहे हैं। यह रहेगा 25 अगस्त को स्पा करीना ओकलैंड में। और अगर जो आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम rova.nz या फिर livenation.co.nz विजिट करें और यहां पर आपको और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टिकट्स मिल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपके पास में मौका है हम पर डबल पास जीतने के लिए। सो वेन यू आर विद हम्प यू आर ऑलवेज अ विनर। आपको सिर्फ क्या करना होगा, हम फेसबुक पेज पर जाइए जहां पर करण औजला का पोस्ट है, वहां पर उस पोस्ट को लाइक करिए और नीचे कमेंट्स में एक मैसेज लिखिए करण औजला के लिए, उनको टैग करिए। बस इतना ही करके आप अपने आप को ड्रॉ में शामिल कर लेंगे जहां पर जीतने पर आपके हाथ लग सकता है एक डबल पास फॉर द अमेजिंग अमेजिंग शो ऑफ करण औजला विच इज गोना बी ऑन द 25th ऑफ ऑगस्ट एट स्पा करीना इन ओकलैंड।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी
3: रुजबी टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की बाली बुला रहा
3: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
6: हेलो एवरीबॉडी
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
7: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे ओनली ऑन हम
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
9: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
8: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
9: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
11: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
12: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2MONTHS. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
0: Bollywood ka asli blockbuster.
13: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
14: Hum.
0: Night Cafe on Hum.
15: हम पर यह है नाइट कैफे विद अवि कभी सोचिएगा कि नज़रों के मिलने से शुरू होती है ये फिर जाकर सोच भी मिलने लगते हैं और जब सोच भी आपस में मिलने लगते हैं तो फिर दिल मिलने में समय नहीं लगता इंजॉय ये है रोमांटिक थर्सडे आपके साथ में 104.2 FM और रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं

जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। हमारी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना। अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की जरूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilieservices.nz पर विजिट करें। ये सूचना एशियन फैमिली सर्विसेज की ओर से है।

0: $5,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rova.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
5: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
6: Join the Tribe!
5: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
6: join the Tribe!
7: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
8: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. This morning, New Zealand's electricity system was pushed to its limits on the coldest morning of the year. Tomorrow, when you wake up, be aware that for many parts of the country, the morning is expected to be even colder than it was today. Spring seems a long way off right now. The government says 9 new subjects to be introduced in 2029 represent the workforce of the future. Industry leaders say they'll show teens the careers that are possible and give businesses confidence in their qualifications. There's been a noticeable smell from the Moore Point wastewater treatment plant in Wellington today as sludge was removed from the crippled facility. In sport, week 2 of the NPC Rugby, a first win of the season for North Harbour, far too good for Counties Manukau. Harbour dominated the first half, scoring 6-1 at the break. Harbour led 38-5. They were the first to score in the second half as well. It's a bit more even, but Harbour kicking on for a 59-19 win. And Rugby League with Machinery House in a league of their own. The Titans and Cowboys, plenty of interest in how the Cowboys come back tonight from last week's 70-point thrashing by the Roosters.
10: Sports News.
8: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
8: Night Cafe.
11: Yo, main hu chhota sa chhora.
8: You're listening to Avineet.
12: हम पर यह है नाइट कैफे का कारवा. मैं हूं अभी आपके साथ में जस्ट आफ्टर 10 PM, जबकि 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. आपको इस आवा पर बता दे भजन जेम्स के बारे में, जिसे प्रेजेंट कर रहे हैं साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड साथ में NZ कल्चरल ट्रस्ट. और ये लेकर आ रहे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट रवितेश देव को जो एक लाइव बैंड के साथ में आपके लिए डिवोशनल म्यूजिक साथ में फ्यूजन भजन और कीर्तन्स को पेश करेंगे. एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर आप एक नए अंदाज में भक्ति रस कीर्तनों को सुन सकते हैं, फ्यूजन भजन्स को सुन सकते हैं. ये सभी कुछ करने के लिए आपको सिर्फ जाना होगा 22 अगस्त को सैटरडे 7 PM एट वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापाटोई में, जहां पर टिकट से सिर्फ $30, चिल्ड्रन अंडर 5 इनके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स यहां पर बेचे जाएंगे। टिकट्स अवेलेबल है ऑनलाइन फ्रॉम eventbrite.com, साथ में जेस फ्रेश मार्ट पापाटोई, वैली फ्रेश पापाटोई, साथ में शिव प्रसाद केल्स्टन से। याद रहे ऑनलाइन टिकट्स के लिए eventbrite.co.nz। और यहां पर जितने भी प्रोसीड्स रहेंगे ये दिए जाएंगे इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी।

हम पर यह है नाइट कैफे, और जबकि रोमांटिक थर्सडे है तो इजहार करने के लिए फूल, खुशबू, बारिश या फिर लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी के टाइम पर आप इमोजी से भी काम चला सकते हैं। मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ, 12 तक ये प्यारा सा साथ बना रहेगा।

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी डिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा कप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
2: The beat of Bollywood.
3: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
2: Night Cafe.
4: हम पर मैं हूँ अवि और आपका साथ दे रहा हूँ 104.2 FM पर आप हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा आप रोवा पर भी हमें सुन रहे हैं। आपके पास में एक और एक जरिया है जहाँ आप अपना प्यार हमें दे सकते हैं, वो है हमारा फेसबुक पेज। हम 104.2 FM का जो फेसबुक पेज है, यहाँ जाकर आप इस पेज को फॉलो कीजिए। और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हम जो RJs होते हैं अपने अपने शो में, रिस्पेक्टिव शोज में जो अपडेट्स है आपके लिए डालते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेहतरीन मौके भी अक्सर रहते हैं, जहाँ पर आपके पास में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का और साथ में प्राइजेस जीतने का पूरा मौका रहता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप हमारे फेसबुक पेज को भी बिल्कुल फॉलो करें और वहाँ पर भी आप अपना प्यार हमें दिखाते रहें, ताकि हमें पता रहे आप हमारे साथ में ऑनलाइन भी जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से।

हम पर नेट कैफे के दौरान आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी बतलाते रहते हैं, जहां पर सोसाइटी को लेकर काफ़ी ऐसे मूवमेंट है या फिर डिस्कशंस है जिसमें आपका भाग लेना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। और आप ऐसा कर सकते हैं जब ऐसे पॉडकास्ट को आप सुनेंगे जहां पर अनफिल्टर्ड में, ब्रेकिंग बैरियर्स में शनील लाल ने खुल के बातें की हैं सेंडी और रुजबे के साथ में ऑन LGBTQ राइट्स और उनके जो रिप्रेजेंटेशन है सोसाइटी में और कैसे एक पहचान बनाने की वो कोशिश करते हैं और कैसे अक्सर लोग इनको टारगेट करते हैं। तो अगर जो आपको ये जानना है कि कैसे आप इस कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं तो आपको ये पॉडकास्ट सुनना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी बातें सुनकर आपको खुद पता चलेगा कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कैसे इनको सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे अपने माइंडसेट को आप बदल सकते हैं। तो ये सभी कुछ जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा अनफिल्टर्ड का पॉडकास्ट। आपको सिर्फ ड्राइव लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करना पड़ेगा और आपको पूरा का पूरा ऑडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ब्रेकफास्ट कैचअप भी है, अगर जो आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट शो मिस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्क स्केड्यूल, तो आप BF लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करें और इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा।

0: Coffee on Hum. You're listening to Avineet.
1: हम पर नाइट कैफे में यह है फाइनल आवर ऑफ द शो. अभी का साथ है अभी से लेकर 12 तक, एक और आवर तक हमारा और आपका साथ बना रहेगा. जो प्यारा सा साथ है 8 से बंधा हुआ है और इसी तरह से इस आवर पर भी आपका साथ देते रहेंगे. कुछ मेलोडियस नंबर्स और है जो लाइनअप करके रखे हैं आपके लिए. यह सभी कुछ कारवा चलता रहेगा. बस सुनते रहे हम, कीप हमिंग, साथ देते रहे और याद रहे जो मैजिक नंबर्स है 08004866 साथ में 5599 आपके प्यारे मैसेजेस के लिए.

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और यह है नाइट कैफे। और नाइट कैफे में अक्सर आपके साथ में हंसी मजाक की बातें भी होती रहती हैं और इसके अलावा बॉलीवुड से भी गपशप रहती है, लेकिन इन सभी के असाइड आपसे कभी कभी सीरियस बातों को भी करते हैं ताकि कम्युनिटी में ऐसे जो टॉपिक्स प्रेजेंट है उसको हम एड्रेस कर सकें। यही सोचकर सिंडी और रुजबे ने अपने अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट को तैयार किया है जिसका टाइटल है ब्रेकिंग बैरियर्स, जहां पर उन्होंने शनील लाल से बातें की हैं LGBTQ को लेकर, उनके राइट्स को लेकर और किन किन मुसीबतों का इनको सामना करना पड़ता है। तो ये सभी कुछ जानने के लिए, सुनने के लिए आपको ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजना होगा ताकि आप भी कुछ ना कुछ इससे गेन कर सके और अपने आसपास लोगों में इसका जो अवेयरनेस है आप क्रिएट कर सके। तो ड्राइव लिखे 5599 पर ज़रूर भेजें। इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट का जो केचअप है, विजय और पूजा लेकर आते हैं द ब्रेकफास्ट शो, जहां पर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हार्ड हीटिंग टॉपिक्स को आपके लिए लेकर आते हैं। तो BF लिखकर 5599 पर भेजें और जो केचअप है इसका भी पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा।

0: Coffee on Hum.
1: हम पर कम्युनिटी न्यूज में दो फेस्टिविटीज आपके लिए ऑर्गेनाइज की गई हैं इसी वीकेंड 8 अगस्त को शनिवार को मेघ उत्सव जहां पर इंडियाज मॉनसून फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मौका है आपके पास ओकलैंड में और आपको सिर्फ जाना होगा 8 अगस्त को एट माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल 4:30 PM से लेकर 8:30 PM तक यहाँ पर आपके लिए कल्चरल परफॉर्मेंसेस साथ में फूड स्टॉल्स और गेम्स एंड एक्टिविटीज रहेंगे. इसके साथ साथ 8 अगस्त को एक और एक इवेंट है जहां पर किवी फिन इन एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट अलोंग विद हम एज द मीडिया पार्टनर्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए रामलीला जो रहेगा वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पपटोय में. यहाँ पर टिकट्स है $10 पे पर्सन. मैंने लास्ट सुना था कि काफ़ी कम यूँ कहे कि कम से कम टिकट्स बचे हुए हैं जबकि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स इनके लिए एंट्री फ्री है. और अगर जो आपको स्टॉल्स के लिए इंक्वायरीज करनी है तो मास्टर अशोक को 02117954599 पर आप कॉल करें.

आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। 8 बजे रात से आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वादा किए जा रहे हैं आपसे अब मुलाकात होगी सैटरडे मॉर्निंग, लेकर आएंगे सैटरडे ब्रेकफास्ट शो, इसका भी हमें इंतज़ार रहेगा और हम लुक फॉरवर्ड करेंगे। इन द मीन टाइम आप खुद का ख्याल रखिए, औरों का भी ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इन्हीं बातों के साथ में आपसे अब जुदा हो रहे हैं, मिलेंगे फिर दोबारा वापस। और इन द मीन टाइम डू टेक केयर, बाय।

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rova.
1: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
2: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
1: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
2: पर डेवलपमेंट के पैसे
1: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4 NZPMI।

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: भी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
3: Yes, but I want to subdivide too.
2: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes packed with premium inclusions with full subdivision support if you need.
3: Really?
2: Yep. From planning and consents through to construction, the team can help manage the entire process.
3: Zelo. I like the sound of that.
2: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ से किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yar.
5: Kyun? Kya hua?
4: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne documents mange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
6: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
7: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाएं। हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर। ये है हर घर का बेस्ट चॉइस, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर। 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध। आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है। स्वाद भी, सेहत भी।
8: Reliance Ventilation System.
9: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
8: Moisture और ventilation का problem लगता है।
9: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
8: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
10: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
11: The beat of Bollywood.
12: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: हे, बाकी सब ठीक?
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: बस चल रहा है भाई।
0: What about you?
2: हाँ चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा?
2: बस चल

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई? लिख के दू क्या?

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: Night flight on.

0: Night Flight on Hum. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
2: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
1: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
2: पर डेवलपमेंट के पैसे
1: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
3: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the winter sparkle celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus have old gold of 18 carat or more to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
5: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, हमारी good brand.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का मौसम अगर देखा जाए तो 2.3 डिग्री टेम्परेचर है फिलहाल. फील्स लाइक 1 डिग्री ओवरनाइट टेम्परेचर. आज का 5 डिग्रीज रहेगा एंड हाई ऑफ 13 जबकि एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर. मौसम के लिए कहा गया इट्स गोइंग टू बी अ फाइन डे विद मॉर्निंग फ्रॉस्ट्स और सनराइज अगले घंटे 7:30 AM पर होगा जबकि सनसेट 5:42 PM पर आज होने को है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Breakfast catch up. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
1: Hello Kiora, good morning, namaste and welcome to Hum playing Bollywood's biggest hits. 3 minute ho rahe samay hamare studios mein 6 bajkar aaj hai Friday 7th of August aur aaj ki subah aap sabhi ko bahut bahut baar mubarak ho. Aaj hamare sath subah subah aap jud chuke hain uske liye sabse pehle to thank you so much and on the other hand 7th of August aapke liye bahut special day hai because aaj aapka birthday hai ya aapki shaadi ki salgirah to ye special din bhi aapke naam hum zarur kar rahe hain. Only on Hum playing Bollywood's biggest hits 104.2 FM पर या फिर रोवर ऐप पर अगर आप फिलहाल हमें सुन रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से आप सभी का स्पेशल वेलकम है आज के हमारे ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा के सफर में. मैं पूजा आपका साथ आज 10 बजे तक जरूर देने वाली हूं और यू नो आज सुबह की तो क्या ही बात करें. मुझे को ऐसा लग रहा है ना कि अभी हर रोज़ हम आपको बताते हैं कि ओवरनाइट टेम्परेचर 1 डिग्री रहेगा, सुबह सुबह इतनी ठंडी रहेगी, यू नो यू फील दिस यू फील दैट, पर ये हर रोज़ का हो चुका है. लेकिन एवरी नेक्स्ट डे इज़ लाइक समथिंग एल्स. आज तो भाई हालत बहुत ख़राब है. I felt so cold कि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं रात भर सोई नहीं ठंडी की वजह से. I mean, I had my you know warm clothing on and on top of it the heater was still on. But still, यार ये ठंडी ने तो जान ही ले ली ऐसा लग रहा है. I hope you guys are all good और आज सुबह को welcome कर रहे हैं आप अपने अपने अंदाज में. All set for today, all set for weekend as well. चलिए शुरू करते हैं आज के सफर को आप सभी के साथ सुखविंदर सिंह और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज़ों के साथ.

0: Inside Up.
1: You know, I'm very happy कि आज सुबह सुबह मैं आपके साथ जो सनी साइड अप स्टोरी ये शेयर कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली एनकरेजिंग एंड ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम. आज जो स्टोरी आपके लिए हम लेकर आए हैं ये बहुत ही कमाल की है और ख़ास तौर पर यू नो आई कैन से कि आजकल के ज़माने में इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड सच पीपल. ये कहानी दरअसल न्यूयॉर्क सिटी की एक जगह की है, स्टेटन आइलैंड मेरे ख्याल से. और इस जगह के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर एक डेली ओनर है, यानी कि एक डेयरी ओनर है. व्हाट एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ एज अ प्रॉमिस जो इन्होंने किया था एक बच्चे को जो इनके डेयरी आए थे, जहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर आप अच्छे ग्रेड्स यू नो लाते हो स्कूल में, आपके मार्क्स अच्छे हैं, इफ़ यू शो दैट टू मी, तो मैं आपको फ्री में एक मिल्क शेक दूंगा. Now this is how it started off and today ये एक ऐसा encouraging initiative run करते हैं through his dairy जिसके तहत he calls it grades for grabs. ये एक initiative है जो इन्होंने शुरू किया है. इनका नाम है Whale, जो ज़्यादातर लोग इन्हें वैली के नाम से जानते हैं. और वैली सेल्वी जो है ये एक ऐसे डेयरी ओनर हैं जो कि बच्चों को, खास तौर पर स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड करते हैं फ्री फूड, ग्रोसरी.

0: इंस है कि आजकल के ज़माने में इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड पीपल लाइक वैली जो कि यू नो जी जान लगाते हैं औरों को इनकरेज करने के लिए, औरों को अपनी ओर से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये देने के लिए.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao. Ladies and gentlemen.
1: Unfiltered with Sandy and Rusby. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
3: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan aate hain.
1: Unfiltered with Sandy and Rusby. On Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Kisi priyajan ko khona, parivar ya mitra के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
5: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से Asian Family Services New Zealand में Asian communities को उनकी भाषा में mental health, addiction, gambling और social support provide करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है Reach In, Reach Out, एक national campaign जो mental health पर खुलकर बात करने पर encourage करता है. Call Asian Family Services Helpline at 0800-862-342 या visit करें asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
6: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only, ends September 4th. Skinny terms and eligibility apply.
7: Get to Skinny!
8: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन. प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए. हरी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर ऑकलैंड.
9: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स बजे हिट गाने
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: अरे ये क्या बजा दिया मैंने. बर्थडे आपको ज़रूर विश करेंगे अभी नहीं लेकिन अगले घंटे, इसलिए रिमाइंडिंग यू ऑल कि अपने अपने बर्थडे ग्रीटिंग्स जो है कि हमारे पास आप सेंड कर दीजिएगा ऑन 5599 और अगले घंटे आपको हैप्पी बर्थडे जो है ये हम बेशक विश करते हुए चलेंगे. गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आपके आए हैं, सो वेरी क्विकली हैविंग अ लुक एट योर गुड मॉर्निंग मैसेजेस. थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए. बॉबी मान जी, लाइक एवरी मॉर्निंग यू नेवर फेल टू बी विद अस ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा. आज भी आपका मैसेज आया है, हैप्पी फ्राइडे. गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, जय माता दी, हैव एन ऑसम वीकेंड. मां की आशीर्वाद हमेशा सबके ऊपर बनी रहेगी, आपने कहा है. थैंक यू सो मच, आपके ऊपर भी माता रानी की आशीर्वाद बनी रहे और आज का दिन आपका फ्राइडे बहुत बढ़िया जाए. इसके साथ साथ मैसेज आए हमारे पास आज सुबह सुबह मिस्टर माडामाटा की ओर से, हैप्पी फ्राइडे फ्रॉम मिस्टर माडामाटा. -4 degrees, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, ये इन्होंने कहा है. गुड मॉर्निंग टू ऑल. राज, आप कभी मैसेज जो है कि हमें मिला है, एंजॉयिंग योर प्रोग्राम, गुड डे आपने कहा है. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. जय सिया राम पूजा जी, इट्स रियली कोल्ड, might be going by Sunday. Enjoy your day. Mata Lakshmi, blessings upon you. Parma Maharaj ji ke message ke liye bhi bahut bahut shukriya. To bhai sach mein yaar bahut zyada thandi, mere ko to aisa lag raha hai mera dimag bhi kaam nahi kar raha hai aaj. I have no idea ki ye kya ho raha hai. I just went out, मैंने अपने लिए एक कप ऑफ कॉफ़ी जो है ये बनाई जस्ट टू यू नो कीप माई सेल्फ अ बिट वॉर्म, क्योंकि आज तो स्टूडियो में मेरे को कुछ भी यू नो फील नहीं हो रहा है. इट फील्स लाइक इट्स सो कोल्ड इन द स्टूडियो एज वेल, बट नेवर द लेस एवर यू आर वट एवर यू आर डूइंग, अगर आप सुबह सुबह हमारे साथ ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा जुड़े हुए हैं, हम प्लेइंग योर बॉलीवुड स्पीकर हिट्स, तो ज़रूर हमें बताइएगा. 5599 हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है जिस पर आप अपने मैसेजेस हमारे पास भेज सकते हैं, और ऑन द अदर हैंड 800 हम 800

0: 1-800-400-866 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नाउ लेट मी रिमाइंड यू कि थोड़ी देर बाद आज की ग्लोबल हेडलाइंस भी आपके लिए लेकर आएंगे, और कल एक गेम भी हमने आपके साथ खेला था, रिमेंबर, यू हैड टू गेस द बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे। तो आज भी बॉलीवुड मूवी गेस करने का मौका आपको हम जरूर देंगे।
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
3: मैं लाऊं अपना ए गेम।
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: Global Headlines.
1: आज सुबह ग्लोबल हेडलाइंस पे सबसे पहली खबर ये आ रही है कि थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स जो है ये अभी भी स्पेनिश टेरिटरी ऑफ सूटा में है आफ्टर लास्ट वीक्स मास बॉर्डर क्रॉसिंग जो मोरक्को से हुआ। सूटा के लीडर का कहना है कि बिटवीन 3000 टू 5000 पीपल जो है ये अभी भी उनके टेरिटरी में है, इंक्लूडिंग थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन डिस्पाइट अराउंड 75,000 माइग्रेंट्स जिन्हें ऑलरेडी मोरक्को जो है वापस भेज दिया गया है। उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट को बताया है कि ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है और उन्होंने स्पेन का जो रिस्पॉन्स है इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है ये किया है। अन्य खबरों में कहा गया है करीबन 7 लोग घायल हुए हैं जबकि उनमें से 2 लोग काफ़ी गंभीर हालत में हैं और अन्य 3 लोग अभी भी अनआइडेंटिफाइड है, जबकि एक आर्म्ड व्यक्ति ने अलेजिडली उनके ऊपर खुले आम गोलियां जो है ये चलाई और ये घटना दरअसल गुड़गांव में भारत में जो है ये घटी है। पुलिस ने कहा है कि फिलहाल वो इस मामले की जांच कर रहे हैं और जो 7 विक्टिम हैं उन्हें अटेंड किया गया है जहां पर उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचाया गया और वहां पर ज़रूरी जो इलाज है ये उनको ज़रूर दिया गया है। फिजी की खबरों में बताया जा रहा है कि फिजी कमर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन ने फिजी ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो $8 एन आवर लिविंग वेज प्रपोजल है इसे अनरियलिस्टिक कहते हुए डिक्लाइन कर दिया है। इन्होंने कहा है कि बिजनेसेस अभी काफ़ी प्रेशर में है राइजिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट और साथ में लो प्रोडक्टिविटी के चलते, जिसकी वजह से ऑनगोइंग लेबर शॉर्टेजेस का भी सामना किया जा रहा है और इन हालातों में $8 एन आवर लिविंग वेज फिलहाल पॉसिबल नहीं है। खेलकूद के खबरों में कहा गया है ब्राज़ीलियन स्टार विनीसियस जूनियर जो है इन्होंने सारे स्पेकुलेशंस ख़त्म करते हुए अपना 6 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड के साथ साइन कर लिया है, कीपिंग हिम एट द स्पेनिश जायंट्स अंटिल 2032। ये थे आज सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।

0: $6,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rover. Accurate traffic.
1: Kitchen Mania free installation.
2: Fine today with a bit more cloud, a high of 14. A bitterly cold start to the day again, but a fast one on motorways. Northern, still just 16 minutes. Constellation Drive to the city, just starting to build a little bit, but fairly quick. Northwestern, 18 minutes. Massey to town, still looking fairly calm as well. And Southern, 20 minutes. Manukau to the city, 32 from Drury. A little slow at Manurewa, but otherwise we're fine.
1: Order your new Kitchen Mania kitchen this month and receive free installation. Kitchenmania.co.nz.
3: Professional Fine Ninjas has Sada. आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाएं
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 or search PFSL T's and C's lending and credit criteria apply.
5: Escape to Fiji and Hawaii with Flight Centre. Book a 13-night fly, stay and cruise from $5,899 per person. Fees, T's and C's apply. Departs Auckland. Flight Centre, your centre for travel.
6: Here for easy dinners, game-watching snacks and last-minute ingredients. When you need it now, get it delivered to your door. Just download and order on the Foursquare Now app. Foursquare, what'll it be today? Select stores only.
7: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से Asian Family Services New Zealand में Asian communities को उनकी भाषा में mental health, addiction, gambling और social support provide करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है Reach In, Reach Out, एक national campaign जो mental health पर खुलकर बात करने पर encourage करता है। Call Asian Family Services Helpline at 0800-862-342 या visit करें asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
8: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Centre, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi, or Shu Prasad, Kelston.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
9: Breakfast Catch-Up.
11: ब्रेकफास्ट कैचअप आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट साथ आप हमारे दे रहे हैं इसके लिए थैंक यू सो मच आपको ये भी याद दिला दें कि काफ़ी कमाल की चीज़ें जो है ये होने वाली है और इस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं आज एक ज़रूरी चीज़ आपको हम सुनाएंगे और बताएंगे भी क्या कुछ होने वाला है आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका और इसके लिए आपको करना क्या है ये सारे डिटेल्स आज हम ज़रूर रिवील करेंगे तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ ज़रूर बने रहेंगे और इसके लिए तैयार रहेंगे इसके साथ साथ चलिए आपको आज हम मौका देते हैं हमारे जो आज के बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे इसे गेस करने के लिए कल जो मूवी आपके लिए हम लेकर आए थे इट वॉज वेरी ईजी एंड इट वॉज़ नो एंट्री कुछ क्लूज हमने दिए आई मीन क्लूज नहीं मतलब एक्ट्रेस के नाम जैसे जैसे ज़्यादातर रिवील होते गए वैसे वैसे मूवी का नाम गेस करना और भी आसान हो गया तो आज लेट्स सी क्या आपके लिए इजी होता है या डिफ़िकल्ट टू गेस द मूवी ऑफ द डे जो हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे पहला नाम जो आज के मूवी ऑफ द डे के लिए हम आपके लिए रिवील करना चाहते हैं इज शर्मन जोशी शर्मन जोशी नाउ रिमेंबर कि कल भी हमने आपको बताया था कि तीन नाम हम रिवील करेंगे फर्स्ट नेम सेकंड नेम एंड द फाइनल विल बी थर्ड नेम ज़रूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर फिल्म में यू नो तीन से कम लोग हो सकता है तीन से ज्यादा पॉपुलर लोग हो, लेकिन अगर आप पहले या दूसरे गेस में अनुमान लगा ले कि कौन सी फिल्म है आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे, तो ये तो भाई आपकी जीत होगी। पर अगर नहीं अनुमान लगा पाए तो फाइनल जो नाम है वो हम आपको देंगे, जिसके उम्मीद यही है कि इससे आपको सबसे ज्यादा आसानी होगी फिल्म का नाम गेस करने में। तो चलिए शुरू हो जाइए 0800 00 0800 00 4866 पर आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे पास, अगर आप कॉल करना चाहते हैं कॉल करने की सिचुएशन में राइट नाउ, और हमें बता सकते हैं आपको क्या लगता है कि आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे कौन सी मूवी है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट जरूर कर सकते हैं 5599 पर, 5599 पर हमारे पास अपना मैसेज जो है ये आप भेज सकते हैं। BF लिखे सबसे पहले, फिर आपको क्या लगता है आज की जो बॉलीवुड मूवी है उसका नाम क्या है, और उसके बाद अपना नाम लिखकर हमारे पास भेजिए। सो द वेरी फर्स्ट एक्टर जिसका नाम हमने आज रिवील किया है आपके लिए इज शर्मन जोशी। शर्मन जोशी, अगर आपने मूवी गेस कर ली है BF लिखकर आंसर भेजे। इस गाने के बाद देखेंगे कि क्या किसी ने भी हमें सही जवाब दिया है या नहीं। किसी का सही जवाब अगर नहीं आया तो उसके बाद दूसरा नाम जो है ये हम जरूर रिवील करेंगे।
12: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

तो आपके लिए आज का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हम लेकर आ रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में. और अगर आप जानना चाहें कि किस फिल्म का गाना है तो आपको बता दें, हैप्पी भाग जाएगी 2016 में ये फिल्म आई थी और उसी का ये ट्रैक आज आपके लिए हम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में पेश कर रहे थे. बाय द वे, इधर आपके मैसेजेस भी कई आए हैं एंड आई कैन कन्फर्म एज ऑफ नाउ कि हमारे पास किसी ने भी अभी तक करेक्ट मूवी का नाम नहीं भेजा है. द वेरी फर्स्ट पर्सन आज जिन्होंने कोशिश की, सनी एक्सक्यूज मी आपने लिखा, और नील ने कहा गुड मॉर्निंग और साथ में जवाब दिया थ्री इडियट्स, और साथ में किसी और ने भी थ्री इडियट्स लिखकर भेजा है 7835. थैंक यू आपके मैसेज के लिए. कुमार जी हैं, इन्होंने भी कहा थ्री इडियट्स. नीलव ने कहा थ्री इडियट्स. नीलेश दयाल सेइंग थ्री इडियट्स. एंड परनीत फ्रॉम पापा टोई टोई, आपने भी थ्री इडियट्स ही कहा है. अनफॉर्चुनेटली ना ही तो थ्री इडियट्स है और ना ही एक्सक्यूज मी. तो कौन सी मूवी हो सकती है आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे? पहला नाम शर्मन जोशी, ये हमने रिवील किया. अब टाइम है आपके लिए दूसरा नाम, ये हम रिवील करें. आई पर्सनली फील दिस विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू. दूसरा नाम आज का हमारा तुषार कपूर. तुषार कपूर, लेट्स सी. शर्मन जोशी, तुषार कपूर, कौन सी बॉलीवुड मूवी है ये? अगर अब आपको थोड़ा आइडिया हो चला है तो जल्दी से अपना मैसेज 5599 पर भेज दीजिए. BF space your answer, your name. As of now, जैसे कि मैंने कहा, किसी ने भी सही तरीके से नहीं पहचाना. No one got it right. पर क्या दूसरे नाम के रिवील के बाद आप में से कोई सही जवाब पहचान पाएगा या नहीं? थोड़ी देर बाद I'll see. अगर किसी ने नहीं पहचाना तो थर्ड नेम भी हम रिवील करेंगे अराउंड थ्रोबैक, और देंगे मौका आपको जब तक कि थ्रोबैक का गाना बजे टू गेस द मूवी. बट इफ नो वन गेसेस इज राइट, तो आज का जो बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे ये हम आपके लिए रिवील करेंगे बाद में चलकर.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
3: A chilly morning, got a high of 14, fine and cloudy today. Into the city, motorways are still very quick. Southern, 23 minutes, Manukau to the CBD, just slowing through Manurewa and just past East Tāmaki. Northwestern, 17 minutes, Massey to town. Bit of traffic west of Massey and it's slowing very close to the CBD. Northern, 17 in from Constellation, not really slowing down too much. And Southwestern, fine.
2: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
4: Apne ghar ko ready kijiye Mitre 10 Mega वेस्टगेट और हेंडरसन के साथ, क्योंकि अभी पाइए सीलिंग इंसुलेशन फ्रॉम जस्ट 69.95 पर बेल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एलिमेंट आर 3.6 सीलिंग इंसुलेशन नाउ अवेलेबल एट माइट 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
6: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
7: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
8: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
10: तो चलिए थ्रोबैक की बारी आई है और इधर समय की ओर देखिए तो बस कितना टाइम बाकी है, हाँ 13 मिनट्स बाकी है, 13 मिनट बाकी है इस समय हमारी स्टूडियोज में 7 बजने में। तो आज का हमारा जो बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे, ये आपको अनुमान लगाना था, हमने दूसरा नाम रिवील किया तो कुछ और मैसेजेस आए एंड आई रियलाइज कि यार सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज का मूवी ऑफ द डे। रंग दे बसंती, ये मैसेज किया है 7835 आपने, तो ये जवाब नहीं है, आई एम रियली सॉरी। सनी, आपने दोबारा कोशिश की है और आपने कहा है ढोल। धमाल हमारे पास रोनल्ड आपने भेजा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शर्मन जोशी धमाल में तो नहीं थे, तुषार कपूर जो है इनके साथ, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तुषार कपूर भी धमाल में नहीं थे। कृणाल ने अपना मैसेज लिखा है ढोल, और इसके साथ साथ हमारे पास विश्नील का मैसेज आया है धमाल आपने भी कहा है, और नितिका ने भी कहा है ढोल। तो आज का मूवी ऑफ द डे जो है ये गेस करने के लिए अब फाइनल नाम हम रिवील कर रहे हैं। This is the final name for the movie of the day that aapke liye aasan ho jayega to guess kaun si film ye ho sakti hai. And the final name is Arshad Warsi. Arshad Warsi. ठीक है, एक नाम और है, काफ़ी बड़ा नाम है जो इस फिल्म का हिस्सा है, लेकिन मैंने उनका नाम रिवील नहीं किया, अदरवाइज बहुत ऑब्वियस हो जाता। लेकिन अरशद वारसी, तुषार कपूर और शर्मन जोशी, आपको क्या पता चला कौन सी फिल्म है? अगर हाँ तो जल्दी से अपना आंसर हमारे पास भेजिए, BF space your answer, your name, 5599 पर आप टेक्स्ट करें। हम रिवील करेंगे आज का बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे अगले घंटे मॉर्निंग मैडनेस की शुरुआत में। बट ऑन द अदर हैंड, अगले घंटे आपके लिए एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट भी है, जिसके लिए हमारे साथ ही बने रहिएगा।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Hum. Accurate traffic.
3: Fly Solomon Airlines.
4: A very chilly start. Fine today with a bit of cloud, a high of 14. Into the city, very quick. Southern, 25 minutes. Manukau to the CBD, 40 minutes from Drury. Slow at Manurewa, Papatoetoe, Highbrook and Remuera. Overall, very quick though. Northwestern, 20 minutes in from Massey, just slow from Greyland to the city. Northern, slowing close to the bridge, 17 minutes in from Constellation, just half an hour from Silverdale.
3: There's more to do in Vanuatu. Non-stop from Auckland, four times each week. Visit flysolomons.com.
5: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call. Dash!
6: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
7: IKEA. Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only, ends September 4th. Skinny terms and eligibility apply.
8: Get to Skinny!
9: And then Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas mera focus hai.
10: Achha,
9: batao. Tuhanda focus. Sada kuch nahi.
10: Shh, Mrs. Singh.
11: Arey pammi ji, mera focus means mere ghar ka kitchen, jisko design kiya hai Focus Kitchens ne.
12: Modern classic shaker style kitchens, Focus Kitchens, Unit K, 33 Wansley Road, Otahuhu. Call 09281 3050 or visit focuskitchens.co.in.
13: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry! Visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
0: Hum, time check.
14: Good morning, is Semitics 7 baj rahe hain.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
15: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 7. A warning, the country's power system could face pressure this morning as a polar blast takes hold. Electricity use broke records yesterday. Transpower says it issued notices to providers earlier this week. Most places are again waking up to below freezing temperatures. The Police Association is welcoming stronger penalties for attacks on first responders. New law just passed also carries stronger consequences for retail crime, coward punches and modern slavery. Association President Steve Watt says assaults have risen.
16: This sends a clear message that assaults on our members, assaults on first responders in general won't be tolerated. We've been asking for this for a number of years.
15: A new civil aviation rule will cut a long-standing red tape issue for regional airports. The government says it's bringing in flexible, cost-effective options to improve runway safety for smaller operators rather than the current one-size-fits-all approach. The Auckland home of champion golfer Ryan Fox's favourite pie admits it's struggling to keep up with demand. Roller's Bakery co-owner Tamara says that they're making nearly double the amount ever since he name-dropped them.
17: Yesterday we sold out before 12 o'clock. It really sucks turning down all the customers, but yeah, we are making so much more than we used to, which, yeah, a lot of work.
15: To rugby with shift four, illness has struck the All Blacks camp on the eve of the opening match on the tour of South Africa. Wallace Setiti has been ruled out of tomorrow morning's clash with the Stormers in Cape Town, with Anton Segner coming into the loose forwards. Captain Patrick Tuipulotu's backing his Blues teammate to hit the ground running.
18: A lot of energy, very fit, some good lungs on him, so he can go for 80 plus minutes.
15: And in the NPC last night, North Harbour Thrash Counties Manukau 59-19.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
14: सुपर सिटी ऑकलैंड में याद रहे कि आज का वेदर जो है ये काफ़ी कोल्ड रहने वाला है. राइट नाउ टेम्परेचर इज 2.6 डिग्रीज, हाई ऑफ हाई ऑफ 13 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर ओवरनाइट टेम्परेचर आज का रहेगा 5 डिग्रीज तक. आज ओवरनाइट टेम्परेचर 5 डिग्रीज जबकि रहने वाला है तो याद दिला दे सनसेट होगा 5:42 PM पर. मौसम तो खूबसूरत रहेगा, ब्राइट एंड सनी रहेगा, लेकिन मॉर्निंग फ्रॉस्ट हम जरूर एक्सपीरियंस करेंगे आज, मतलब ठंडी उसी तरह से बरकरार रहेगी.
0: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Get up, get up. Good morning. Morning Madness.
14: हेलो क्यूरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और ये है मॉर्निंग मैडनेस. मॉर्निंग मैडनेस के बारे में हम आपको बता दें कि आज इस घंटे जहां पर सबसे पहले दिन कैसा रहेगा आपका अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप्स, आपकी राशि वाइब्स, ये हम लेकर आएंगे. लेकिन उससे पहले पिछले घंटे हमने जो सवाल किया था उसके कई सारे आंसर्स जो है ये आए. आप में से कई लोगों ने वैसे हमारे पास अपना आंसर इज क्या बोलते हैं हाँ ढोल ये लिख कर भेजा था. तन्हा आपका मैसेज मिला, साथ में जेरी है, कुमार जी ने कोशिश की, एक और एक जवाब भेजा हमारे पास. उसके बाद नताशा का मैसेज आया, रवि है फ्लैटबुश से, आपने भी मैसेज किया. उषा थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल और स्टे वार्म HK, क्या बात है भाई, आपका भी मैसेज आया है, थैंक यू सो मच. अजय आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और शुभम है, आपने भी अपना जवाब दिया है. रिद्धि गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल. वी हैव गॉट विश्नील जिन्होंने अपना आंसर भेजा है, कुशाल है और साथ में रॉन का जवाब आया है, नितिका ने दोबारा कोशिश की है, प्रीतेश अनफॉर्चुनेटली आपका आंसर थोड़ा गलत हो गया पर कोशिश करने के लिए शुक्रिया. तो आज का हमारा बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे इज नन अदर देन गोलमाल Fun Unlimited. This was the very first Golmaal series का जो पहली movie जो है ये release हुई थी 2006 में. और इस film में काम किया था शर्मन जोशी, तुषार कपूर, अर्शद वारसी, अजय देवगन, रिमी सेन और परेश रावल ने. और फिल्म जो है काफ़ी अच्छी चली थी जिसके बाद में चलकर ऑफ कोर्स गोलमाल सीरीज जो है इतना आगे आ गई कि अब गोलमाल 5 जो है ये भी आने वाली है. नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग आपको बता दें कि ये जो फिल्म है इसके डायरेक्टर रोहित शेट्टी, इन्होंने इस फिल्म की कहानी लूजली या इंस्पायर्ड है या बेस्ड कहा जा रहा है एक गुजराती प्ले से जिसका नाम था अफलातून. और नीरज वोरा जो है इन्होंने ये गुजराती प्ले लिखी भी थी, उसे डायरेक्ट भी किया था गुजराती में. बट दिस पर्टिकुलर गुजराती प्ले वॉज एक्चुअली अडेप्टेड फ्रॉम अ मराठी प्ले जिसका नाम था घर घर. तो वहाँ से ये कहानी जो है गोलमाल की, ये गोलमाल फन अनलिमिटेड जो है ये बनी. और उससे ज़्यादा कमाल की बात ये है, विच आई कुडंट हैव इमेजिन, वो कि इस फिल्म में तुषार कपूर का जो कैरेक्टर है लकी का, इनिशियली इसे ऑफर किया गया था डीनो मोरिया को. Something happened, Dino Moria was not part of the role and बाद में चलकर तुषार कपूर को ये रोल मिला. एंड फाइनली गोपाल, लक्ष्मण, माधव और लकी गोलमाल के GLM और L ये दरअसल बने अजय देवगन और साथ में अर्शद वारसी और शर्मन जोशी, साथ में तुषार कपूर. तो गोलमाल फन इन अनलिमिटेड, दैट वॉज द बॉलीवुड मूवी फॉर टूडे. जितने लोगों ने सही आंसर्स भेजे, थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए. थोड़ी देर बाद इस घंटे आपके लिए हम न्यूज़ हेडलाइंस भी लेकर आने वाले हैं, इसके लिए भी हमारे साथ बनी रहिएगा.

0: श्रेया घोषाल रे वैनी और साथ में नोरा फातेही को आप सुन रहे थे ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मॉर्निंग मैडनेस की शुरुआत आज इनके साथ हमने की। 10 मिनट हो रहे हैं समय हमारी स्टूडियोज में 7 बजकर और हमने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि इस घंटे कुछ बहुत ज़रूरी कुछ बहुत स्पेशल आपको सुनाएंगे और ये ज़रूरी और स्पेशल चीज़ इसमें आपका फ़ायदा है क्या और कैसे इस फायदे को अपने नाम करना है आपको हमने कहा था जानने के लिए हमारे साथ ही बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं ये स्पेशल चीज आखिरकार है क्या।
1: अटेंशन एवरीवन, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट 2 परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
3: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
0: तो इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा और हम पर अब आपके लिए हम शुरू कर रहे हैं लिख रहा रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया मौका। एक तो आपको पता है कि हम आपके साथ हर साल हर त्यौहार जो है ये मनाते रहते हैं, तो इस साल रक्षाबंधन मनाने में कैसे पीछे हटते, इसलिए आपके लिए हम लेकर आ गए हैं हमारा रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन, हमारा रक्षाबंधन प्रमोशन, रक्षाबंधन सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू। आपके भाई या आपकी बहन उनका एक रिव्यू जो है ये आपको देना है। कैसे रहा आपका ये रिश्ता, कैसा था जब बचपन में आप एक साथ अपना समय बिताते थे, या फिर जब आपकी भाई या बहन की शादी हो गई, दे मूव्ड ऑन एंड स्टार्टेड लीडिंग देयर ओन लाइफ, उसके बाद आपके इस रिश्ते में क्या बदलाव आया, आपके भाई या बहन के लिए वो कौन सा एक स्पेशल मोमेंट है दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर एंड यूड लाइक टू रिव्यू योर सिबलिंग। तो याद रहे, आपको हम मौका ज़रूर देंगे आज हमारे प्रोग्राम में एंड नॉट जस्ट ऑन द ब्रेकफास्ट शो, लेकिन हमारे हर एक साथी के साथ ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। वे यूल हैव टू गिव अस अ कॉल जब हम आपके लिए लाइंस ओपन करेंगे और फिर उसके बाद अपने भाई या बहन के लिए एक परफॉर्मेंस रिव्यू आपको करना होगा। आपके भाई या बहन का परफॉर्मेंस एज अ सिबलिंग कैसा था, इस पूरे साल के लिए भी आप रिव्यू कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, जितने भी परफॉर्मेंस रिव्यूज हमारे पास आएंगे सबका नाम एक ड्रॉ में जाएगा, जिसमें से 2 लकी विनर्स होंगे जिनको मौका मिलेगा टू विन कैश और अ टोटल ऑफ $500 है एंड यू कैन विन योर शेयर ऑफ $500। 2 लकी विनर्स $250 ईच जो है ये जीत सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, 28 अगस्त को हम ड्रॉ भी करेंगे। तो ये तो खैर ऑन एयर की बातें, जहां पर रेडियो पे हमारे साथ जुड़ते हुए आप सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू में जरूर भाग ले सकते हैं। बट इफ यू आर ऑन फेसबुक राइट नाउ, या फिर अगर आप फेसबुक पर हैं तो एक मौका वहाँ पर भी आपके लिए। हमारा सोशल मीडिया कॉम्पिटिशन जिसके तहत रक्षाबंधन हम मना रहे हैं, अक्सर यू नो हमारे भाई और बहन के बीच जो रिश्ता होता है ये कभी कभी हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स होते हैं ना उससे नहीं डिफाइन होता, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कुछ ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरीज हमारे लिए लेकर आती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको शायद कोई और उतनी वैल्यू वाली नज़रों से ना देख पाए जितना कि आप या आपके भाई या बहन देखते हैं। रीज़न बिंग, क्योंकि आपको पता है कि उस चीज़ के पीछे की कहानी क्या है। तो अगर ऐसी ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपके पास है, आपके भाई और बहन के बीच जो आप शेयर करते हैं एक सीक्रेट के साथ, एक मेमोरी के साथ, तो उस चीज़ की एक फ़ोटो आप ले और फोटो के साथ हमारा जो फेसबुक पेज है आप विजिट करें, आपको एक पोस्ट दिखेगा फीचर्ड फोल्डर में हमारा लाइफ टाइम इन वन ऑब्जेक्ट प्रमोशन का पोस्ट। उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आपको वो फोटो डालनी है, उस चीज़ की, उस ऑब्जेक्ट की फ़ोटो डालनी है और फिर एक या दो लाइन में आपको बताना है कि उस चीज़ से कौन सी मेमोरी आपकी जुड़ी हुई है, क्यों ये चीज़ आपके लिए इतना स्पेशल है। वो आप कमेंट सेक्शन में डालें और अपने भाई या बहन को आप टैग करें, अपने सिबलिंग को आप टैग करें कमेंट सेक्शन में इस पर्टिकुलर कमेंट के साथ, एंड देन योर नेम विल बी पार्ट ऑफ अ ड्रॉ जहां पर आप जीत सकते हैं

राशि वाइब्स। तो चलिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप्स राशि वाइब्स में पता कर लेते हैं। सबसे पहले आज में शनि एरिस, आपके लिए कहा गया है कि अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम लगाइए, अदरवाइज इससे आपके बनते रिश्ते बिगड़ेंगे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी आप फंस सकते हैं। दूसरी ओर आपके लिए ये भी कहा गया है कि कोई भी पेपर वर्क अगर आपको करना था तो आज का जो ये दिन है बहुत पेशेंस के साथ एकदम आराम आराम से आपको इस पेपर वर्क का काम जो है ये करना चाहिए। डोंट रश, डोंट मेक इम्पल्सिव डिसीजंस, ऐसा भी आज आपके लिए कहा गया है। वृषणी टोरस, आज आप रहेंगे सेंटर ऑफ अटेंशन, लोगों का ध्यान आप पर रहेगा, लोग अपना पूरा का पूरा अटेंशन आपको देंगे, लोग आपको बार बार सलाह मशवरा लेंगे आपसे, मतलब यू विल फील सो सो सो इम्पोर्टेंट टुडे। दूसरी ओर आपके लिए ये भी बताया गया है कि आज लोग आपके साथ जो अपना समय बिताएंगे उनका जो मूड है ये तुरंत ही अपलिफ्ट हो जाएगा। मिथुन यानी जेमिनी, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, इसीलिए आज अपने एक्सपेंसेस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ यू नो बिल्स वगैरह अगर पेंडिंग है तो उस पर ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज कीजिए ताकि भविष्य में चलकर ये आपके लिए एक दिक्कत का कारण जो है ये ना बने। और साथ में आपके लिए बताया गया है कि थोड़ा ड्रेन्ड ज़रूर आप फील करेंगे, सोशल ऑब्लिगेशन आज बहुत रहेंगे ना, बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना, कुछ यू नो मीटिंग्स वगैरह

0: जो आपको करनी थी, तो यू फील दैट फिजिकली एज वेल. और कर्क ने कैंसर आपके लिए कहा गया है कि अच्छी खबर मिलेगी, दिन बहुत अच्छा बीतेगा, इनफैक्ट आप तो काफ़ी बिजी भी रहेंगे आज, आप यू नो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग फील करेंगे. यूजुअली जो सिचुएशन होता है आपका, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आप मेंटली फील करने वाले हैं आज, और इस वजह से आप बहुत सारे सही फैसले भी लेंगे और सही तरीके से सिचुएशन के साथ डील भी करेंगे. सिंह इन लियो, प्रोफेशनल लाइफ आपका फुल अटेंशन डिमांड कर रहा है आज, इसीलिए पूरा ध्यान लगाइए अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और जो सही तरीके से आपको काम करना है उसको आप ज़रूर अपना ध्यान दीजिए. ऑफिस गॉसिप जो है ये कहीं ना कहीं आपके कानों तक ज़रूर पहुंचेगी, लेकिन द राइट थिंग टू डू वुड बी टू अवॉइड इट टुडे. अपने अधूरे कामों को अधूरा ना छोड़े, उन्हें कंप्लीट करें ताकि समय पर पूरे होने के साथ साथ आपको भविष्य में चलकर इसका सही रिजल्ट भी मिले. कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि आज मन में इच्छा जागेगी ट्रैवल करने के लिए, तो इस वजह से ना आप बहुत डिटर्मिंड हो जाएंगे. यू विल पुल अप योर स्लीव्स एंड यू विल वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम, यू विल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दैट ड्रीम. और एक पर्टिकुलर जगह पर आपकी जाने की इच्छा है, उसको पूरा करने में आज आप काफ़ी मेहनत करने वाले हैं. आपके लिए ये भी कहा गया है कि आज आपका पर्सपेक्टिव बाकियों के मिलान में काफ़ी अलग रहेगा, जिसकी वजह से कई मामलों में यू विल बी स्टैंडिंग आउट टुडे. तुला यानी लिब्रा, आपके लिए कहा गया है कॉशियस रहिए, बहुत संभल कर आज चलना है आपको. किसी को भी पैसे वगैरह देने में आज शायद आपको थोड़ा सोचना पड़े, पैसे किसी को उधार देने से पहले evaluate the situation. और अपने intuition पर भरोसा करें, अपने intuition पर जो trust आप दिखाएंगे उसका सही फायदा आपके हाथ लगेगा. वृश्चिक ने स्कॉर्पियो, रिश्तों के बारे में कहा गया है कि आज पूरा फोकस आप देंगे, यू नो यू विल बी पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क अपने रिश्तों को सुधारने के लिए और मजबूत बनाने के लिए. जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे उनको आज आप क्लियर अप भी करने वाले हैं, जिससे पुराने बिगड़े हुए रिश्ते भी आज बनेंगे. धनु यानी सेगिटेरियस, आपके लिए कहा गया है यू माइट बी इन अ सिचुएशन जहाँ पर आप काफ़ी कुछ जो है ये संभालने में लग जाएंगे, और हो सकता है इस वजह से कुछ ज़रूरी मुद्दों पर आपका ध्यान ना जाए, इसीलिए यू नो अपने दिमाग में एक क्लैरिटी बना लें कि किस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस आज आपको देना है. और साथ में आपके लिए ये भी कहा गया है कि आज आप देखोगे आपकी कड़ी मेहनत का क्या अंजाम आपको मिलता है. मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आज बहुत अच्छा दिन है, जो आप सोच रहे हैं, जैसा काम आप सोच रहे हैं उसे करने में लग जाइए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू यू नो सिक्योर योर फ्यूचर. मूड भी बहुत बढ़िया रहेगा आज आपका, तो दिन इतना अच्छा बीतेगा आपके साथ, लोगों के लिए भी बहुत अच्छा दिन जो ये बीतने वाला है जो अपना समय आज आपके साथ बिताने वाले हैं. कुंभ यानी एक्यूरियस, आपके लिए कहा गया आपका फोकस डोमेस्टिक चीज़ों में ज़्यादा रहेगा, घर के काम, घर को सही करना, घर में क्या कुछ चल रहा है, तो इसीलिए आज आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन्ड फील करेंगे आप, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैमिली मेम्बर्स हु नीड योर सपोर्ट एंड योर अटेंशन, एंड आज आप सबको वो ध्यान जो है देने वाले हैं. एक पीसफुल एनवायरमेंट आप ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे अपने घर पर लेटर दिस इवनिंग. और फाइनली मीन यानी पाइसिस, कम्युनिकेशन इज द की टू सॉर्ट थिंग्स आउट, ऐसा आपके लिए बताया जा रहा है. शायद आज वो दिन आपके लिए फाइनली आए जहां पर आप किसी के साथ बैठकर बातें करना प्रेफर करें. दिस कुड बी समवन जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से, बट यू वुड बी ओपन फॉर कॉन्वर्सेशंस टुडे, और काफ़ी पर्सनल चीज़ों के ऊपर भी आपका ध्यान जो है आज जाएगा. सो इट्स अ डे टू बेसिकली वर्क ऑन योर पर्सनल इशूज एंड सॉर्ट इट आउट विद कम्युनिकेशन, ऐसा आज मीन यानी पाइसिस आपके लिए बताया जा रहा है. सो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स. उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे. थोड़ी देर बाद लेकर आने वाले हैं आपके लिए हम आज का हमारा थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म. और सेलिब्रिटी अलार्म में किसकी आवाज है, जानने के लिए हमारे साथ ही आपको बने रहना है.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: चुप हो जाओ पापियों, चुप हो जाओ.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.
3: ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਏਰੀਏ ਚ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਗੀਏ ਤੇ

0: Morning Madness.
1: News headlines.
2: आज सुबह के मुख्य समाचारों में सबसे पहले बताया जा रहा है कि इमिग्रेशन मिनिस्टर एरिका स्टैनफोर्ड ने कहा है सीनियर ऑफिशियल्स जिन्होंने कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन अपने तक रखा था अबाउट अ फेल्ड इमिग्रेशन न्यूजीलैंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से अब टैक्स पेयर्स को $40 million जो है ये कॉस्ट कर रहा है। एरिका स्टैनफोर्ड ने कहा है कि दो ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो है ये दिए गए जो बहुत अलग अकाउंट्स के हैं ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसमें कहा गया है राइजिंग कॉस्ट्स एंड डिलेज की वजह से कुछ डिफरेंसेस जो है ये सामने आए हैं, जबकि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और फाइनेंशियल ऑडिट में अभी कुछ जानकारियां हासिल की जा रही है टू डिटरमिन कि एग्जैक्टली क्या हुआ जिसकी वजह से ये पैसे जो है कि टैक्स पेयर्स को अब कॉस्ट करेंगे, $40 million तक कॉस्ट करेंगे, और क्या मिनिस्टर्स को इससे जुड़ी जानकारी पूरी तरह से दी गई थी या नहीं। अन्य खबरों में बताया गया है एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशंस न्यूजीलैंड में बढ़ रहे हैं डिस्पाइट इसके रिकमेंडेशंस किए जा रहे हैं टू स्क्रैप दिस सिस्टम। अभी तक अगर देखा जाए तो इस साल पॉलिटिकल पार्टीज को मोर देन $468,000 जो है इस प्रोसेस के जरिए मिले हैं, जहां पर डोनर्स की आइडेंटिटीज को सीक्रेट रखा जाता है फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड द पार्टीज देमसेल्व्स। क्रिटिक्स का कहना है कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी की कमी दर्शाता है, जिसके चलते पब्लिक ट्रस्ट जो है इस पर काफ़ी सवाल उठ सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि रूल्स जो है बदलना करेंटली प्रायोरिटी नहीं है। और खेलकूद के खबरों में द वॉरियर्स विल होस्ट नेशनल रग्बी लीग लीडर्स पैंथर्स माउंट स्मार्ट स्टेडियम में, ये रहेगा आज रात को और यहाँ पर बिगेस्ट मैच ऑफ द सीजन इसे माना जा रहा है जो खेला जाएगा वॉरियर्स के बीच में अलोंग विद पैंथर्स, और ये आज रात 8 बजे जो है ये शुरू होगा, जिससे जुड़े डिटेल्स हम आप तक जरूर लेकर आएंगे।
3: Accurate traffic.
4: Switch to AMI car insurance.
5: Finding cloudy today, a high of 14. Really chilly start to the day. Into the city, we're flying in on motorways. Southern, 28 minutes, Manukau to the CBD. 40 minutes in from Drury. Slow at Manurewa, Papatoetoe, and then Mount Wellington to Rimuera. Northwestern, 20 minutes, Massey to the CBD. We're slow from Greyland. Little heavy, but pretty good. Northern, 18 in from Constellation. Slow there to Milford and close to the bridge.
4: AMI roadside rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
6: Vaw, indelible Holmes wali kahani sunao na.
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: Award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
9: Kahani of Indelible Homes.
10: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials, and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
11: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in Asia, like Japan from $675 one way, Hong Kong from $709, or Singapore from $715. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
12: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
13: Budget to Gandhi.
14: The B
0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
13: Birthday greetings.
14: Iska birthday bhai?
15: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
14: Happy birthday to you.
2: आज 7 अगस्त को अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से आप तक हम जरूर पहुंचा रहे हैं। आज किरण अरोरा जी हैं, पॉइंट व्यू ड्राइव पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, तो आपको वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हम विश कर रहे हैं हमारी पूरी हम टीम की ओर से, आपके समस्त परिवार वालों की ओर से और दोस्तों की ओर से भी आज आपको हम जरूर याद कर रहे हैं। दूसरी ओर हैप्पी बर्थडे डियरेस्ट मिंटी चाची, विशिंग यू अ डे फिल्ड विद लाफ्टर जॉय एंड ऑल द लव यू गिव टू अदर्स। अयान एंड इवान आर सेंडिंग यू द बिगेस्ट हग्स एंड किसेस। मे ऑल ईयर अहेड बी एज ब्यूटीफुल एंड स्पेशल एज यू आर। With lots of love, always Govind, Srishti, Ayan and Ivan, Gaurav और Gullu और साथ में सायरा की ओर से भी आपको very happy birthday wish किया जा रहा है। So Minty हमारी ओर से भी आपको happy birthday, many many happy returns of the day. Happy 13th birthday to Tanvi Devi from Newly in Auckland. Lots of love and blessings and best wishes. आपके parents हैं Manish and Kamini और school friends हैं और family members हैं from Fiji, New Zealand, Australia, USA. सभी याद कर रहे हैं, तो हमारी हम टीम की ओर से भी happy birthday तन्वी, जन्मदिन बहुत बहुत बार मुबारक हो आपको।
0: मॉर्निंग मैडनेस,
2: मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स हम लेकर आ रहे हैं। दिस इज द ब्रेकफास्ट शो। फिलहाल 18 मिनट बाकी है हमारे स्टूडियोज में इस समय ठीक 8 बजने में। 8 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट तो आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आज के हमारे सेलिब्रिटी जिनकी आवाज आपको पहचाननी है। दरअसल देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग है। शुभम ने अपना जवाब भेजा है टॉम लेथम लिखकर, डेविड वॉर्नर जी ये है भेजा है, दिबांजन आपने, और इसके अलावा अंशु ने कार्ल अर्बन कहा है। चेतन आपका भी मैसेज आया है, लेकिन ऐसा है कि मुझे लग रहा है शायद आज रिवील करना पड़े कि ये कौन है, पर बिफोर आई डू दैट आई'd लाइक टू गिव यू अ फाइनल अपॉर्चुनिटी, और मैं आपको क्लू भी देना चाहती हूँ, ठीक है? तो आज के हमारे सेलिब्रिटी, पहले इनकी आवाज़ जरा आप सुन ले अच्छे से, पे अ बिट ऑफ अटेंशन एंड हियर वी गो।
16: व्हेनेवर यू कम टू इंग्लैंड इट्स ऑलवेज एन अमेजिंग एटमॉस्फेयर, एन अमेजिंग क्राउड, रिडिकुलसली इनक्रेडिबल फैनफेयर, आई थिंक वी सॉ फ्रॉम द एशेज सीरीज रिसेंटली, सो It's going to be awesome. Always say England in the summer is a great time to be here. So,
2: तो जल्दी जल्दी आप बताइए कि ये किनकी आवाज है। क्लू हम अब आपको दे देते हैं to make things easier for you. क्लू ये है कि आप में से बहुत से लोगों ने कल भी हमारे पास जो मैसेजेस भेजे थे, जो नाम आ रहे थे, वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से थे, एक पर्टिकुलर फील्ड से थे, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलरली क्रिकेट वर्ल्ड से। तो ये जो शख्स हैं, ये जो सेलिब्रिटी हैं, ये उसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्स वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं और क्रिकेट को खास तौर पर बिलोंग करते हैं। और इनके बारे में हमने कहा कि ये एक ऐसे शख्स हैं जो यहाँ न्यूजीलैंड में तो पॉपुलर हैं ही, इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर हुए हैं। और इनके बारे में आपको एक और एक चीज़ हम बता सकते हैं, यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है दे आर वेरी प्राउड ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि इनके जो यू कह सकते हैं एंसेस्टर्स दे आर फ्रॉम इंडिया, भारत से है ये। यहाँ न्यूजीलैंड में तो काफ़ी चर्चित रहे जब ये क्रिकेट की दुनिया में आए, लेकिन इनके रूट्स आर फ्रॉम इंडिया, और इंडिया में भी जब इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना कदम रखा, बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स दिए यहाँ न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को, तो भारत में भी जो क्रिकेट फैंस हैं वो इनके फैन बन गए। कौन है ये, क्या आपने पहचाना इनको? BF space your answer, your name लिखकर 5599 पर भेजे, throwback के राउंड देखेंगे क्या है सही जवाब।
17: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rover. Hum. Accurate traffic.
1: Curtain Studios birthday sale. Up to 50% off selected ready-mades.
2: A high of 14, fine and cloudy today after a very chilly start into the city. Northern Motorway, 20 minutes in from Constellation Drive. Just a bit slow there and close to the bridge. We had a breakdown on the bridge, but it was sorted quickly. Just a few minutes of impact. Northwestern, 24 minutes in from Massey. Slow from Point Chev, little heavy at times. Southern, half an hour in from Monaco. Slow on and off from Papatoetoe.
1: Huge savings store-wide. Visit Curtain Studio today.
0: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
3: Okay, let's run through this. You've set up a coffee group, a mum's group, a connect group, and you've adopted group fitness like a religion. Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Friends, whānau, workmates, get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
4: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like Ingham's Fresh Whole Chicken, 1.5 kg for just $8.99 each. And New Zealand grown The Odd Bunch Avocados, 1 kg, a fresh deal at just $5 a pack. T's and C's apply.
5: Please use your imagination for the following ad.
6: If I won Powerball, the first person I'd tell would be... and would surprise all our friends by...
5: Imagine winning $8 million this Saturday. Play in store or online.
7: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzoras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
7: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
9: तो थ्रोबैक की बारी आई है, बट बिफोर आज का थ्रोबैक आपके नाम हम करें, इधर आपको हम याद दिलाना चाहते हैं अबाउट द क्वेश्चन दैट वी हैड बेसिकली पुट इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपको आवाज़ जो है ये पहचाननी थी हमारी सेलिब्रिटी की. और हमारे ये जो सेलिब्रिटी है इनके बारे में हमने आपसे ये भी कहा था कि ये न्यूजीलैंड में काफ़ी जाने माने तो थे ही, पर इन्होंने जो कमाल का प्रदर्शन अपना दिखाया जिसके चलते इन्हें अब पूरी दुनिया में जाना जाता है. पर्टिकुलरली जो क्रिकेट लवर्स हैं ये काफ़ी पॉपुलर हैं इनके बीच में. तो आज की हमारे सेलिब्रिटी, मैंने क्यों आपको कुछ और क्लूज दिए मजबूरन, क्योंकि किसी एक शख्स ने इनकी आवाज़ पहचान ली थी विदाउट मी गिविंग एनी क्लूज. तो मैंने सोचा चलो क्लूज देकर बाकियों के लिए थोड़ा आसान जोई कर देती हूँ. एंड दैट पर्सन वॉज चेतन. यू आर द वेरी फर्स्ट पर्सन टू गेट इट राइट, जिसके बाद चलकर क्लूज दिए. तो हमारे पास कुछ और लोगों ने अपने आंसर्स भेजे. निक है, अंशु है, रजत ने कॉल किया था और कुछ लोगों ने मैसेजेस किए हैं, नाम नहीं लिखा है. अभिनव है, शिरीष है, आपका भी आंसर आया है. तो आज की हमारी सेलिब्रिटी जिनकी आवाज़ कल भी हम लेकर आए थे, पर कल नो वन कुड गेट इट राइट, वाज रचिन रविंद्र. रचिन जो है इनकी पैदाइश हुई थी 18th ऑफ नवंबर को इन द ईयर 1999 वेलिंगटन न्यूजीलैंड में. और ये क्रिकेट के बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं जो न्यूजीलैंड में तो काफ़ी जाने जाते हैं ही अपने अमेजिंग क्रिकेट स्किल्स के लिए, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम जो है ये कमाया है. इनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो वैसे तो इनकी पैदाइश वेलिंगटन न्यूजीलैंड की है, लेकिन इनके पेरेंट्स जो है ये बेंगलोर कर्नाटका के हैं. इनके फादर का नाम है रवि कृष्णमूर्ति और ये एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है जिन्होंने क्लब लेवल क्रिकेट जो है बेंगलोर में खेला बिफोर ही सेटल्ड इन न्यूजीलैंड इन 1997. इनके ग्रैंड फादर बालकृष्ण अदिगर जो है ये एक एजुकेशनिस्ट है और फॉर्मर प्रिंसिपल है विजय कॉलेज के. रचिन के बारे में कहा गया है कि इनका नाम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनके पेरेंट्स पेरेंट्स जब इनका नाम डिसाइड कर रहे थे तो राहुल ये नाम और सचिन ये नाम इनको बहुत पसंद था, एंड दैट्स हाउ राहुल का रा और सचिन का चिन मिलकर बन गया रचिन, जिसके बाद चलकर इनका नाम जो है ये रखा गया। ही इज ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सचिन तेंदुलकर, जिनकी वजह से इन्होंने क्रिकेट जो है ये खेलना शुरू किया। बचपन से ही क्रिकेट लवर है ये, और इन्होंने वेलिंगटन में तो एट द एज ऑफ 5 क्रिकेट खेलना शुरू किया, बट एवरी ईयर ही यूज्ड टू ट्रेवल टू इंडिया टू प्ले क्लब क्रिकेट अपने पापा के हट हॉक्स क्रिकेट क्लब के लिए, जो उनके पिता जो है ये रन करते हैं।

0: accurate traffic.
1: Get up and Gold Coast.
2: Really cool start to a fine and cloudy day. Got a high of 14 into the city at the moment. Northern Motorway just 20 minutes from Constellation Drive to Town 36 from Silverdale. Little slow at Constellation and close to the bridge. The Southern, 30 minutes Manukau to the city, 42 from Drury, slow on and off from Papatoetoe to the city. Fine on the Southwestern. Northwestern, 24 in from Massey, slow from Point Chev, a little heavy at times.
1: Trade the winter chill for Gold Coast sunshine with great low fares at Jetstar.com.
3: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
4: Shower dome.
5: Discover the magic at Go Bananas Chai Ke, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Chai Ke is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Chai Ke Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply.
7: At Southern Cross Pet Insurance, we know your pets are your besties. They love cheering you up when you're down, and they're always there for you, even when you much rather be left alone. So show your pet bestie some love by signing up to Southern Cross Pet Insurance with the promo code BESTIE by 31st of August, and you could win one of 25 $200 prezi cards for you and your pet bestie to enjoy. Offer ends 31st of August. TCs and exclusions apply.
8: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
9: क्यों, क्या हुआ?
8: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
4: टाइम चेक.
10: गुड मॉर्निंग, इस समय ठीक 8 बज रहे हैं.
4: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 8. A leading law professor is perplexed by the Prime Minister's MMP comment. Christopher Luxon claims he is open to a referendum on it if National is re-elected. Otago University's Andrew Geddes thinks he simply had a brain explosion.
12: Caused probably by the fact that for the last, you know, week or two, he's faced a constant barrage of questions about his coalition partners, and he's probably just getting fed up with it.
11: It's hoped a study into autism rates prompts long-term planning across health and disability sectors. They have tripled in the last 15 years. Research lead Ben Beagle-Hull says the system needs to be prepared.
13: Particularly with adult services who are less familiar with autism, we perhaps need to upskill ourselves and have a greater awareness of autism diagnoses.
11: Roller's Bakery in Auckland is struggling to keep up with demand for the now world-famous Foxy Pie. Co-owner Tamara says they've been selling out every day since Ryan Fox's celebratory visit, but only have one oven.
14: So with that oven door going all the time, like, we can only really do like 36 fresh pies at a time, and in between we're like topping up the pie warmer, and there's not enough space to have another one.
11: To rugby with Shift 4, Patrick Tuipulotu's honoured to captain the All Blacks in their tour opener against the Stormers in Cape Town.
15: Looking forward to leading this group of men out tomorrow. A lot of them probably haven't had a chance to play against South African sides.
11: Wallace Satiti's been ruled out with illness, replaced by Anton Segner. Kickoff's at 5 a.m. tomorrow. And the reason for Joseph Parker's failed drugs test has been explained. The UK anti-doping authorities have released a statement saying the Kiwi boxer's positive test was due to his nutritionist, who was a regular user of cocaine.
4: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
16: World's best, hamari koi branch nahi hai.
4: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: तो याद रहे मौसम तो वैसे साफ और सुहाना रहेगा, फाइन वेदर जो है ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है विद मॉर्निंग फ्रॉस्ट ऑफ कोर्स, जो आपने ऑलरेडी आज सुबह सुबह एक्सपीरियंस किया होगा इफ यू आर ऑलरेडी ऑन द रोड. सनसेट होगा 5:42 PM पर. ओवरनाइट टेम्परेचर 6 degrees, हाई ऑफ 13 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर. करंट टेम्परेचर है 3.6 degrees बट फील्स लाइक 2 degrees.
4: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
6: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग.
4: द रश आवर brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
10: तो ट्रेंड पेट्रोल जिससे हम कर रहे हैं आज की हमारे रश आवर की शुरुआत. और आपको पता है कि ट्रेंड पेट्रोल में वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ट्रेंडिंग. और एज फार एज थिंग्स दैट आर ट्रेंडिंग इज कंसर्न, न्यूजीलैंड में अगर देखा जाए तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है फिलहाल ट्रेंड कर रही हैं ऑन गूगल, जहाँ पर लोगों ने कई तरह के सर्चेज वगैरह जो है ये किए हैं, जिसके बाद चलकर कौन से टॉपिक के बारे में, मतलब क्या कौन सा वर्ड है जो ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसके बारे में काफ़ी बात जो है ये हो रही है. द फर्स्ट थिंग that I can say काफी देर से जो ट्रेंड कर रहा है यहाँ न्यूजीलैंड में is फूड स्टफ्स. ये काफ़ी लोग जो है गूगल कर रहे हैं, इसके बारे में अंडरस्टैंड करने के बारे में सोच रहे हैं. इन्वेस्टमेंट इज अनदर वर्ड दैट हैज़ बीन ट्रेंडिंग ऑन गूगल राइट नाउ, बट देर इज़ वन मोर वर्ड, फ्रॉड, विच हैज़ बीन ट्रेंडिंग एंड आई एम नॉट क्वाइट श्योर फॉर वट रीजन्स, बट दिस इज अनदर वर्ड दैट हैज़ बीन ट्रेंडिंग. नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर पर्टिकुलर सर्चेस की बातें करें कि कौन सा पर्टिकुलर सर्च है जो यहाँ न्यूजीलैंड में गूगल ट्रेंड्स में ट्रेंड कर रहा है आज फ्राइडे 7 अगस्त को, तो सबसे पहले आपको बताएं करंट टॉप गूगल ट्रेंड्स इन न्यूजीलैंड, सिटीजंस अरेस्ट लेजिस्लेशन. हाई सर्च वॉल्यूम रहा है फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स न्यू लेजिस्लेटिव चेंजेस रिगार्डिंग सिटीजंस अरेस्ट प्रोटोकॉल, जिसके चलते हुए सिटीजंस अरेस्ट लेजिस्लेशन ये आज सुबह सुबह न्यूजीलैंड में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है ऑन गूगल. और दूसरी ओर मिक्सड मेंबर प्रोपोर्शनल यानी कि MMP सिस्टम, इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशनल सर्चेस किए जा रहे हैं इस पर रिगार्डिंग द मैकेनिक्स ऑफ न्यूजीलैंड वोटिंग सिस्टम. तो काफ़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश यहाँ पर लोग कर रहे हैं न्यूजीलैंड में, पर्टिकुलरली कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पर. जो भी खबरों के मामले में बातें सामने आ रही हैं इस पर भी लोग जो है ये चर्चा कर रहे हैं. सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स ऑलवेज गुड टू डू योर रिसर्च, इट्स ऑलवेज गुड टू कीप फाइंडिंग फॉर आंसर्स, कीप लुकिंग फॉर आंसर्स. और जब तक आप सर्टन चीज़ों को लेकर श्योर ना हो जाए तब तक उसमें कमिटमेंट अपना जो है ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए. इफ यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज थिंग्स जो शायद आज सुबह सुबह आपने खबरों में सुना हो, तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हम आज बाद में चलकर डेली राउंडअप में भी कवर करेंगे. और आपके लिए जो राउंडअप है ये जरूर लेकर आएंगे. लेटर दिस आवर आज का हमारा व्हाट्स योर टेक टॉपिक ये भी हम लेकर आएंगे, जिसमें अपना कंट्रीब्यूशन आप जरूर हमें दे सकते हैं. पर फिलहाल शुरू करते हैं आज का हमारा रश आवर. 6 मिनट हो रहे हैं 8:00 बजकर.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: Jackie didn't think she needed a DVS system.
4: Our home is brand new.
3: Does your new home have condensation? And can it get a bit stuffy sometimes?
4: Yeah, it does.
3: New homes are built tight. They don't breathe very well. DVS can help with that. We have innovative ventilation.

0: $249. 9kg heat pump dryer, just $499. 10kg 9-star energy rated heat pump dryer, $899. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
1: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
2: IKEA.
3: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
4: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton.
6: What's your take?
7: तो आज का हमारा व्हाट्स योर टेक टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं 17 मिनट्स आफ्टर 8 फॉर नाउ 0800 00 हम 0800 00 4866 पर आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं और व्हाट्स योर टेक टॉपिक पर अपने अपने टेक्स जो है ये हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं. नाउ आई एम नॉट रियली श्योर अगर हमने ये पहले भी किया है या नहीं, बट आई थॉट कि क्यों ना ये टॉपिक जो है इस पर आज चर्चा जो है आपके साथ की जाए. वैसे तो लाइफ में ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें बचपने में भी एक्सपीरियंस करने को मिलती है और एज वी ग्रो इनटू अडल्टहुड तभी हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं. पर शायद जिस तरह से हम उस पर्टिकुलर चीज़ को बचपन में देखते हैं, जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो उस हिसाब से नहीं देखते हैं, उस हिसाब से उसे इवेलुएट नहीं करते हैं. आज आपको हमें ये बताना है कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी वो एक चीज़ है, दैट वन थिंग यू अप्रिशिएट एज एन अडल्ट. पर शायद व्हेन यू वर अ किड, एज फार एज यू कैन रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक रियली रियली यंग, बट जब आप उस उम्र में थे जहाँ पर आपको चीज़ें अभी आप रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो व्हेन यू वर अ किड आप उस चीज़ को शायद उस नज़र से नहीं देखते थे. व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू अप्रिशिएट एज एन अडल्ट बट यू माइट नॉट हैव डन व्हेन यू वर अ किड. 0800 00 हम 0800 00 4866 पर आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं अपने व्यूज़ अपने टेक्स शेयर करने के लिए आज के हमारे व्हाट्स एप टेक टॉपिक के लिए. आई वुड से मेरे लिए दैट वन थिंग दैट आई डिडंट अप्रिशिएट एज अ किड एंड आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग एज आई यू नो एज आई ग्रो ओल्ड एंड एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर इज नींद. नींद आई वुड से समथिंग दैट आई रियली ट्रूली अप्रिशिएट. कितना ज़रूरी होता है यार हमारे लिए, ये मुझे सच में अब जाकर पता चला. गुड मॉर्निंग परविंदर, कैसी हो आप?
8: गुड मॉर्निंग, अच्छी हूँ. आप कैसे?
7: एकदम बढ़िया. आवाज़ से तो लग रही है कि थोड़ी सी जुकाम सर्दी कुछ तो आपको हो रहा है फिलहाल, बट आई होप यू डूइंग वेल. हाँ,
8: कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट तो खुश हो गया, फ्राइडे है.
7: ओह अच्छा, कुछ भी नहीं है तो अच्छी बात है. मेरे को लग रहा है मेरे ही कान खराब हो गए, पता है इतनी ठंडी है कि इफ एनी टाइम इन द मॉर्निंग आई एम आउट देयर एंड आई डोंट हैव माय ईयर्स कवर्ड तो मेरे कान जो है ना बहुत दर्द करते हैं और कान बंद हो जाते हैं, और अभी भी मेरे दोनों कान बंद हैं. मेरे को ज़्यादा क्लियरली सुनाई भी नहीं दे रहा है, मेरा नाक बंद है और मेरे को ऐसा लग रहा है इस वजह से मेरा दिमाग भी बंद है. बट एनीवेज, ऐसी कौन सी चीज़ है परविंदर दैट प्रोबेबली जब आप छोटी थी तो अप्रिशिएट नहीं करती थी, अब करती है?
8: देखो उस टाइम में बचपन में अप्रिशिएट क्या होता था वो मुझे नहीं पता है ना.
7: हाँ,
8: बट अभी बहुत सारी चीजें हैं, पर उनमें से दो चीजें मैं बताऊंगी आपको. एक तो है कि खाना जब मम्मी बना के देती थी तो मैं सोचती थी ये क्या बना दिया. अब ऐसा होता है कि बना बनाया कुछ भी मिल जाए.
7: हाँ, बस मिल जाए
8: मिल जाए. अच्छा उस टाइम पे एक ना मम्मी बहुत एक स्टेपल होता था हमारे घर में, अंडा भुर्जी पराठा चाय. हाँ, या आलू की सब्जी पराठा चाय.
7: वाओ,
8: है ना. उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि आज फिर आलू की सब्जी, आज फिर आलू की सब्जी, है ना.
7: हाँ,
8: पर अब वो मेरा लाइक टाइप और ब्रेकफास्ट है कि मुझे कोई आलू सब्जी पराठा चाय दे दे.

0: है ना। और अब तो मैं बैंगन टिंडा घिया सब कुछ खाती हूँ। उस टाइम पहले तो मैं ऐसे, हमारा सिर्फ ऐसे फेवरेट था कि कटहल खा लिया, भिंडी खा ली, कोफ्ते खा लिए, बस। मतलब घिया के कोफ्ते हम खा लेते थे, पर घिया ऐसा सब्जी नहीं थे खाते। छोले कड़ी बस ये सब चीजें है ना। पर अब तो जैसे कभी मैं स्कूल से लेट हो जाऊँ ना, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ आपको कुछ बनाया है, लाइक कुछ भी बनाया है।
1: That is so true, यार।
0: और दूसरी चीज है जो मनी मैनेजमेंट हमारे पेरेंट्स कैसे करते थे। इंडिया में तो एजुकेशन पेड है, कितना फीस लगता है ना। और मेरे पापा थोड़ा ऐसे थे कि चलो अब मैं थोड़ा ऐसे सोचती हूँ ना कि स्कूल सभी सेम ही होते हैं, बट वो होता है ना, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए।
1: yes, true,
0: तो मेरे पापा ने हमें दोनों को अच्छे स्कूलों में डाला था, तो उनकी फीस भी बहुत ज्यादा थी है ना। मतलब वो इतना ज्यादा अच्छा स्कूल था कि कभी कभी हमें अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे लोग काफी ज्यादा मतलब अमीर टाइप के लोग थे। और हमें कॉम्प्लेक्स हो जाता था, oh my God, हमें कहाँ डाल दिया पापा ने है ना। तो मैं मनी मैनेजमेंट को भी वैल्यू करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मेरे डैड काम करते थे, मम्मा हाउस मेकर थे ना। तो मैं सोचती हूँ कि एक बंदे ने कैसे गुजारा किया है। हमारे तरफ दो बंदों में गुजारा नहीं होता, हम लोग सिर्फ अभी सिर्फ 2.5 ही है, बेटा तो मेरा छोटा है ना।
1: exactly.
0: इसका इतना खर्चा
1: उतने खर्चे नहीं है या।
0: पर हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं सोचती थी कि कैसे मेरे पापा ने
1: पेरेंट्स कैसे मैनेज करते थे। वेरी ट्रू या परविंदर, दोनों चीजें जो आपने बोली है ना, इट इज सो रिलेटेबल, आई वुड से एब्सोल्युटली ट्रू। थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए। आई विश यू अ वंडरफुल फ्राइडे एंड एन अमेजिंग वीकेंड। एंजॉय योर डे।
0: Thank you. Have a good day.
1: You too. तो परविंदर ने काफी अच्छी शुरुआत की है, पर अगर आप भी कॉल करते हुए अपना टेक जो शेयर करना चाहते हैं आज के टॉपिक के बारे में तो जरूर बताइए। सचिन ने मैसेज किया है, ईटिंग माई वेजिटेबल्स एंड स्लीप। तो सब्जी भाजी सब्जी और सब्जियां और नींद सचिन के लिए एक ऐसी चीज़ जिसे शायद बचपन में उतना अप्रिशिएट नहीं करते थे, पर अब कहीं ना कहीं इसकी कीमत समझ चुके हैं। फॉर मी फ्रेंडशिप, पहले दोस्त बुरा नहीं मानते थे तो इतना सोचते नहीं थे बोलने से पहले, और दोस्त भी साथ रहते थे। अभी यहाँ न्यूजीलैंड में उल्टा ही है सब, नेहा ने कहा है। क्या बात है, थोड़ा अलग सिचुएशन नेहा ने सामने रखा है। बट व्हाट्स योर टेक, हमने आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, दैट वन थिंग यू'ड लाइक टू डिस्कस ओ टॉक अबाउट, दैट आपने शायद बचपने में अप्रिशिएट नहीं किया, बट एज यू आर ग्रोइंग ओल्डर आपको अब समझ आ चुकी है उसकी कीमत, और आप उसे अब और भी अप्रिशिएट करते हैं, और वो चीज़ आपके लिए हमेशा आपके जहन में रहेगी। क्या है ये, अगर आप 0800 पर कॉल करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। कॉल कर भी आप अपने टेक्स जो है आज के टॉपिक के बारे में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि आप हमें टेक्स्ट कर दें तो वो भी आप ज़रूर कर सकते हैं। 5599 हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है।
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: जट खट जट लटक मटक लचक मचक लचक मचक चाल चलत जा।
1: ए छोरा क

0: आज का हमारा इस घंटे का चैटबस्टर फिल्म जय हो से आपके लिए हम पेश कर रहे थे और हिमेश रेशमिया और साथ में इनके साथियों की आवाज़ों में ये ट्रैक आपके लिए हमने पेश किया। बाय द वे, रिमाइंडिंग यू ऑल कि एक मौका आपके पास भी है, विच इज़ सैटरडे 22 अगस्त को 7 PM से एट वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोइटोई, जहाँ पर आने वाले हैं द इनक्रेडिबल रवितेश देव एक बहुत ही कमाल के लाइव बैंड के साथ और आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत अपलिफ्टिंग नाइट ऑफ डिवोशनल म्यूजिक सजा कर लेकर आएंगे। इट विल बी अ फ्यूजन ऑफ भजन एंड कीर्तन टुगेदर और आपको मौका मिलेगा टू एक्सपीरियंस दिस ब्यूटिफुल डिवोशनल नाइट, म्यूजिकल नाइट एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी अरेंजमेंट के साथ, जहां पर कॉन्सर्ट लाइक सेटिंग जो है कि आप इंजॉय कर सकेंगे। सो दिस इज समथिंग दैट आई कैन एक्चुअली से कि आप सब जो है इसका हिस्सा बन सकते हैं, बीट आप किसी भी उम्र के हो, आप जरूर इसका हिस्सा जो है ये बन सकते हैं। इनफैक्ट अगर हो सके तो बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल इवेंट, क्योंकि साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड और न्यूजीलैंड कल्चरल ट्रस्ट आपके लिए इसे लेकर आ रहे हैं फॉर अ वेरी स्पेशल रीजन। ये स्पेशल प्रोग्राम जो है ये किया जा रहा है इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फीजी के लिए, तो आप अपना योगदान भी दे सकते हैं और रवितेश देव जैसे कलाकार जो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं इनको परफॉर्म करता हुआ लाइव आप देख सकते हैं। टिकट्स ग्रैब कर लीजिएगा eventbrite.co.nz विजिट करते हुए, eventbrite.co.nz आप विजिट कीजिए और टिकट्स लीजिए अपने, और अगर आप चाहें तो लाइव लोकेशंस जहां जे सुपर मार्केट पापाटोइटोई, वैली फ्रेश पापाटोइटोई और शिव प्रसाद इन सन्स केल्स्टन से भी आप टिकट्स ग्रैब कर सकते हैं खुद के लिए। सो याद रहे, भजन जेम्स एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस 22 अगस्त को आप कर सकते हैं।
1: A secret destination.

0: discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
1: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
0: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
1: Available at selected branches. T's and C's apply.
2: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
3: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
2: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
3: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tāmaki showroom. It's worth the visit.
2: Elite Bathroomware.
3: A reflection of you.
4: Thinking about your next phone? You could already be closer than you think. Open your One Wallet to see how many phone dollars you have. One phone dollar equals $1 off your next interest-free phone. How wonderful. One New Zealand. Let's get connected.
5: Escape to Fiji and Hawaii with Flight Centre. Book a 13-night fly, stay and cruise from $5,899 per person. Fees, T's and C's apply. Departs Auckland. Flight Centre, your centre for travel.
6: Non-stop Bollywood.
7: Hum.
6: Playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
6: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
9: पिछले घंटे हमने आपको बताया था ना कि इस साल का हमारा रक्षाबंधन प्रमोशन सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू ये आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. तो आपके पास अब मौका है. हमारे पास 0800-004-866 पर आप कॉल कर सकते हैं और आपके भाई या बहन के लिए इस साल का रिव्यू आप हमें दे सकते हैं. आपके भाई या बहन किस मामले में आप उनको आज मेंशन करना चाहते हैं, कैसे थे, कमाल के थे, समय पर उठ जाते थे या नहीं, और जब आप उनको फोन करते थे क्या वो आपका फोन रिटर्न करते थे या नहीं, ऐसी कुछ यू नो प्यारी प्यारी नोक झोंक वाली बातें जो है ये भी आप हमें शेयर कर सकते हैं. या फिर यू वर स्टक विद समथिंग रियली बैड इन योर लाइफ, एक ऐसा सिचुएशन जहां पर यू जस्ट फेल्ट लाइक एवरीथिंग इज कमिंग टू एन एंड एंड हु केम टू योर रेस्क्यू. आपके भाई या बहन कोई एक ऐसा मोमेंट भी रहा अगर जो आप शेयर करना चाहते हैं उसके बारे में, जस्ट गिव अस अ कॉल 0800-004-866 पर और अपने भाई या बहन को एक सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू जो है ये आज हमारे साथ देते हुए ड्रॉ में शामिल होकर कैश इनाम आप जीत सकते हैं. टू लकी विनर्स रहेंगे जिनको $250 ईच मिलेगा, यानी अ टोटल ऑफ $500 जीतने का मौका. ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, इसलिए फाइनल वन मिनट, और विद इन अ मिनट अगर किसी का कॉल आता है देन वेल एंड गुड. हमारा जो रक्षाबंधन प्रमोशन है ये किक स्टार्ट होगा बहुत अच्छे नोट पर और उनका नाम हम ड्रो में शामिल करेंगे. ऑल यू नीड टू डू इज गिव अस अ कॉल, टेल अस अबाउट किसके रिव्यू आप कर रहे हैं, अपने भाई का, अपने बहन का, और फिर किस वजह से आज आप उनको मेंशन करना चाहते हैं, और उसके साथ अपना जो नाम है ये बताकर आप ड्रो का हिस्सा बन सकते हैं. इट्स दैट सिंपल, इतना आसान है. और अगर आपके भाई या बहन यहाँ नहीं है, मतलब न्यूजीलैंड में नहीं है, बट यू स्टिल लाइक टू यू नो डू अ रिव्यू फॉर देम एंड यूड लाइक देयर नेम टू बी पार्ट ऑफ द ड्रो, और अगर आप जीत जाते हैं तो आप उनको पैसे सेंड कर सकते हैं, जीते हुए अमाउंट सेंड कर सकते हैं ना. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
10: बढ़िया पूजा जी, आप सुनाइए.
9: मैं तो बढ़िया, एकदम कमाल का मौसम की तरह. बट आज किसका रिव्यू करने वाले हैं आप?
10: मैं अपने छोटे भाई का.
9: छोटे भाई का, क्या बात है, वेरी नाइस. तो बताइए किस रीजन से आज आप हमें उनको हमें कॉल कर रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं उनके बारे में?
10: तो अगेन वी बोर्न एंड ब्रॉट अप टुगेदर एंड काफी नटखट और हर एवरीथिंग वी एक्सपीरियंस टुगेदर, अप्स एंड डाउन्स, एंड आई वुड से ही इज ऑलवेज देयर विद मी. चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मैंने गलत किया या सही किया है, दिस इज द वन पर्सन जो मुझे पता है कि जो भी सिचुएशन होगी ही विल बी देयर, एंड आई बिलीव सेम फॉर हिम एज़ वेल. तो कुछ भी कैसा मर्जी सिचुएशन हो, फाइनेंशियल कुछ भी, मतलब यू नेम इट, यू कैन पॉसिबली इमेजिन द वर्स्ट, द वन पर्सन आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन इज हिम.
9: Oh, that's sweet.
10: And same goes for him as well. तो इतना क्या नहीं है काश ना एक ऐसे इमोशन ही होती है जिसमें आपको आपको ये पता होना कि भाई कुछ भी हो जाए दुनिया में ये बंदा मुझे आके बचा लेगा तो वो एक बहुत बड़ा एक my mental peace कह सकते हैं
9: relief होता है that you have someone like that in your life.
10: हाँ जी तो अभी recently we were traveling to South Island and he really got unwell. So fortunately we was both of us तो अच्छा मतलब चलो he had to go through a minor surgery and all that. But we spent good time together. So he was in lot of pain which was very hard to see. But we still found funny moments in that even. So हमारा बस हंसी मजाक वो pain के अंदर भी चलता रहा. So that was a very fond memory. Even though he was in pain. But we're still cracking jokes to each other. So that is an amazing. I don't believe कि ये वाला relationship कहीं और हो सकता है. Yes, दोस्तों में होता है. Yes, कहीं जगह से. But भाइयों में होना तो you know I'm blessed.
9: Oh, that's amazing. I just hope ये जो आप दोनों का strong bond है हमेशा ऐसे ही strong बना रहे. सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए.
10: मेरा नाम मनदीप है जी मनदीप बहल.
9: और आपके भाई का नाम?
10: का नाम है रमन बहल.
9: रमन बहल. ओके थैंक यू सो मच मनदीप. आपका नाम हम डेफिनेटली रो में शामिल कर रहे हैं. वैसे तो रक्षाबंधन जो है पर्टिकुलरली भाई और बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट किया जाता है. बट आई कांट सी व्हाई वी कांट सेलिब्रेट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ब्रदर्स एंड आपका नाम क्यों हम रो में ना करें. बट थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट.
10: मुझे एक इसमें छोटा सा अपना वर्जन ऐड करना चाहूंगा.
9: जी बोलिए.
10: रक्षाबंधन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना तो इट इज एज द नेम सेज रक्षा का बंधन.
9: हाँ जी.
10: सो इट डजंट स्पेसिफाई जेंडर. तो उसका आई थिंक इट नीड्स टू इवॉल्व कि भाई बहन की रक्षा करेगा. भाई को बहन की रक्षा करनी जरूरत नहीं, बहन को भी भाई की रक्षा करनी चाहिए ना. बोथ वे.
9: या ट्रू.
10: वो कॉन्सेप्ट नीड्स टू इवॉल्व एंड कुड बी बिटवीन ब्रदर एंड ब्रदर एंड सिस्टर एंड सिस्टर एज वेल. या करें क्योंकि आप सिब्लिंग्स हैं एंड यू नो दैट It has more value than कि एक लड़का और लड़की वाला जो ना उस फैक्टर को उस पे देखा जाए.
9: Absolutely.
10: So in our family, my brother has two sons and I've got three daughters. तो हम एक दूसरे को राखी बांधते हैं. तो जो मेरे nephews हैं वो मेरी बेटियों को राखी बांधते हैं. मेरी बेटियों को राखी बांधते
9: हैं. That is beautiful. That is absolutely. इसीलिए तो मैंने बोला ना कि क्यों I don't see a reason why I should not put your name in the draw. इसीलिए आपका नाम हम draw में जरूर कर रहे हैं.
10: Thank you so much.
9: And wishing you all the very best for today. Have a nice day.
10: Bye-bye.
9: तो याद रहे हमारा रक्षाबंधन प्रमोशन जारी है. सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू जहां पर आप हमें कॉल कर सकेंगे व्हेन वी ओपन द लाइंस एंड यू कैन रिव्यू योर सिबलिंग्स परफॉर्मेंस बी इट अभी तक जो सफर आपने सिबलिंग्स तय किया है उस तक के लिए या फिर इस पूरे साल के लिए. यू कैन टोटली डू दैट एंड बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ जस्ट लाइक मनदीप एंड रमन दिस मॉर्निंग.
6: From the heart. Unlock your property's true sale value with NZ PMI, your local developer.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Right now, Super City Auckland में temperature है 6.9 degrees, high of 13 expected है. बाद में चलकर overnight आज का 6 degrees temperature रहने वाला है. Fine morning with a little bit of frosts जो ही हम experience करेंगे. Sunset 5:42 PM पर आज होगा.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
4: What's going on? Kya bakte ho?
5: Are kehna kya chahte ho?
1: आज की क्या बकते हो स्टोरी. आई फाउंड इट टू बी वेरी वियर्ड, बट देन मैंने कुछ यू नो बिफोर मैंने सोचा ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करें, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पता कर लेते हैं. सो आई वेंट अहेड एंड आई डिड दैट. तो मैं आपको बताऊंगी भी क्या कुछ पता चला है, बट बिफोर दैट आज की स्टोरी, आज की क्या बकते हो स्टोरी इज़ अबाउट अ गाय. और इनके बारे में कहा गया है कि ये एक ऐसे सिचुएशन में है जिस पे किसी को विश्वास ही नहीं था. इमेजिन एक ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो जहाँ पर अगर आपको ब्रेथलाइजर टेस्ट देना पड़े, व्हेन यू हैव नॉट इवन टच्ड अ ड्रिंक इन इयर्स, और आपका ब्रेथलाइजर टेस्ट पॉजिटिव आए, तो हाउ विल दैट टर्न आउट टू बी. अपेरेंटली ऐसा ही हुआ एक शख्स के साथ जिनकी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं की गई, बट इनकी इस बीमारी के चलते, इनके इस सिंड्रोम के चलते लोगों को पता चला अबाउट ऑटो ब्रीवरी सिंड्रोम. और ये दरअसल एक रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसे गट फेमेंटेशन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर एक स्पेसिफिक फंगाई या फिर बैक्टीरिया जो है आपके गट के अंदर फेमेंट होता है, और इसकी वजह से जो इनजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो दरअसल एसिटोन में तब्दील हो जाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत उसके ट्रेसेस जो है ये आ जाते हैं. दिस इंटरनल प्रोडक्शन रेजेस ब्लड एल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इन योर बॉडी, जिसकी वजह से फिजिकल साइंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन जो है ये लोगों को दिखता है इन यू विदाउट इवन हैविंग और कंज्यूमिंग एल्कोहल. साइंस लाइक चक्कर आना, स्लर्ड स्पीच, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन और कन्फ्यूजन, और कॉग्निटिव इफेक्ट्स में ब्रेन फॉग, मेमोरी लॉस, एक्सट्रीम फटीग, मूड स्विंग्स, ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड द गट फर्मेंटेशन सिंड्रोम. और ऐसा ही एक अपडेट जो है एक शख्स के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में आया जिनका जो रेयर कंडीशन है, ये पता चला लोगों को कि इनका शरीर, इनका गट, इनके शरीर के अंदर ट्रेसेस ऑफ एल्कोहल जैसी चीज़ें जो है ये बनाता है खुद ब खुद, और इसकी वजह से ये ऐसे दिखते हैं जैसे कि ये नशे में हो, जबकि इन्होंने अपनी लाइफ में कभी किसी भी तरह का ड्रिंक जो है ये नहीं लिया, मतलब एल्कोहलिक ड्रिंक जो है ये नहीं पिया. एक पूरा डेकेड इनके शरीर का ये हाल रहा, एंड पीपल वुड नॉट ट्रस्ट हिम जब ही वुड से दैट ही डजंट ड्रिंक, लेकिन दे वुड से कि आप तो फुली इंटॉक्सिकेटेड लग रहे हो, सिचुएशन सीम्स लाइक यू आर ड्रंक. बट ये हमेशा लोगों को ये विश्वास दिलाते दिलाते थक जाते थे कि इन्होंने शराब की एक बूंद तक नहीं चखी, जिसके बाद चलकर ही वेंट ऑन दिस स्प्री टू सर्च फॉर आंसर्स कि एक्चुअली में इनके साथ क्या हो रहा है. डॉक्टर्स ने अज्यूम किया कि शायद ये अपने बारे में कुछ चीज़ें छिपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, एंड विच इज़ वाई इनिशियली इनके डायग्नोसिस के बारे में कोई पता भी नहीं कर पाया. धीरे धीरे करते करते करते ये फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया कि 10 साल लग गए, एंड फाइनली इनके बारे में ये बात जो है सामने आई. ये शख्स बेल्जियम में रहते हैं, और इनके बारे में ये कहा गया कि इनको कई बार ड्रिंक ड्राइविंग के लिए भी पकड़ा गया, जबकि इन्होंने कभी भी शराब जो है नहीं पी. लेकिन जब फाइनली इनकी डायग्नोसिस हुई और ये पता चला कि इनको ये सिंड्रोम है जिसे कहा जाता है एज दी गट फर्मेंटेशन सिंड्रोम, एक रेयर मेडिकल कंडीशन है, जिसके बाद चलते एक बार फिर 2024 में इनको ड्रंक ड्राइविंग के लिए जो है ये पकड़ा गया था. लेकिन जब ये कोर्ट गए और इन्होंने अपना मेडिकल कंडीशन प्रूव किया, तो फिर उनको रिहाई जो है ये मिली. एंड नाउ ही हैज़ दिस पर्टिकुलर आईडी, मेडिकल आईडी विद हिम, जहाँ पर ये इसके साथ ही ड्राइविंग करते हैं कि जस्ट इन केस ऐसा कोई सिचुएशन हो तो ये अपने इनोसेंस को प्रूव कर सके. इमेजिन ऐसा भी कोई एक सिंड्रोम होता है, इससे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था. सो देयर यू गो, अजीब दुनिया है, बहुत सी अजीब चीज़ें जो है ये होती है इस दुनिया में, और इससे जुड़ी चीज़ें अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आते हैं ऑन क्या बकते हो. व्हाट्स गोइंग ऑन आपके लिए हम शुरू कर रहे हैं लेटेस्ट दिस आवर. आज के हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ हम बातें करने वाले हैं. कौन है ये स्पेशल गेस्ट और क्या अपडेट ये लेकर आने वाले हैं हमारे लिए, जानने के लिए सुनते रहिएगा द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.

0: गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। ओकलैंड मैं तो बढ़िया हूँ, आप सब कैसे हो?
1: एकदम बढ़िया। और हम पर आपका स्पेशल वेलकम है, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो शुक्रिया आज के इस सुबह हमें अपना जो कीमती समय है ये देने के लिए। और आज जब आपसे बातें करने का मौका हमें मिला है तो हम आपसे बातें करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम के लिए जो कि इसी सैटरडे को होने जा रहा है। और बहुत ही खूबसूरत ये प्रोग्राम, एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि लोगों को मौका मिलेगा इसका हिस्सा बनने का दिस सैटरडे 8 अगस्त को रामलीला। तो क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में कुछ, आपकी भूमिका क्या है?
0: पहले तो मैं हम एफएम को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि हम एफएम इजावा मीडिया पार्टनर। रामलीला के बारे में क्या कहे, ये राम की अमृतमय गाथा है भगवान श्री राम की। और मेरा जो भूमिका है इसमें, मैं कथाकार हूँ और इसके साथ साथ में ये रामलीला का प्रोडक्शन का जिम्मेवारी मेरा था। तो वी हैव कोलैबोरेटेड एंड प्रोड्यूस्ड दिस रामलीला एंड डायरेक्टेड इट टुगेदर। तो ये मेरा भूमिका है।
1: क्या बात है। और अशोक जी, आपसे एक और एक ज़रूरी सवाल जो है ये हम करना चाहेंगे कि इस भाव के साथ जब हम आज ऐसे जो चीज़ें पेश करते हैं, ऐसी टॉपिक्स पेश करते हैं या फिर ऐसे कुछ हमारे जो कल्चरल एस्पेक्ट से हम चीज़ें जब पेश करते हैं तो उम्मीद यही होती है कि लोग एकजुट होकर उसमें अपना योगदान जो है ये दे। जब आप लोगों ने मिलकर इसका फ़ैसला किया, रामलीला का फ़ैसला किया, तो ये फ़ैसला कैसा हुआ, मतलब कैसे हुआ, कैसे आप इस जगह तक पहुँचे कि चलो ये करना ज़रूरी है, ये करते हैं? और इसे करने का जो मोटिव, मेन मोटिव इसके पीछे क्या है, रामलीला जो है ये करने का मेन मोटिव आपका?
0: तो सबसे पहले तो मैं आपको श्री रामचरितमानस से एक चौपाई सुनाता हूँ जहाँ पर कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तो ये सेकंड पार्ट था, इसका फर्स्ट पार्ट है, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। यानी कि जहाँ पर लोग एकजुट होकर मिलकर काम करते हैं तो वहाँ पर तो बिगड़ा हुआ काम भी बन सकता है। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट का पेशकश है ये रामलीला, जिसका मेन जो मकसद है, जो गोल है, जो विजन है, ये वो है कि यहाँ पर जो बच्चे पैदा हुए, खासकर एनीबॉडी फ्रॉम फिजियन ओरिजिन या इंडियन ओरिजिन लेकिन बोर्न इन न्यूजीलैंड, उनको अपने कल्चर और भाषा से जोड़े, सनातन से जोड़ने का प्रयास रामलीला का यही मेन मकसद है कि हमारे जो यंग जनरेशन है ये हमारे कल्चर को कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, इस हेतु ये रामलीला का स्टार्ट हुआ। और इसमें हमने पिछले साल भी किया था और उससे पहले भी एक छोटा सा रामलीला हमने किया था। एंड वी हैव सीन रियल डिफरेंस, हमने देखा है कि हमारे बच्चे पार्ट लेने के बाद, मेरे खुद के बच्चे मतलब राम के बारे में पूछना शुरू किया, रामायण के बारे में, फिर रामायण सीरियल देखना शुरू किया। तो ये जो मकसद है हमने उसको मतलब फ्रूटिंग होते हुए देखा है। तो इसीलिए हमारा ये भी
1: अच्छा, आई थिंक हम वापस से कॉल करते हैं अशोक जी को क्योंकि वो बात ही कर ही रहे थे कि लाइन ड्रॉप हो गया। एंड लेट्स कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन, बहुत ज़रूरी बात है ये जो चल रही थी। आई वंडर व्हाट वेंट रॉन्ग एंड द लाइन गॉट डिसकनेक्टेड। सो लेट्स सी इफ वी कैन गेट इन टच विद हिम अगेन, जहाँ पर आज मास्टर अशोक हमसे बातें कर रहे थे अबाउट रामलीला जो कि इसी सैटरडे को होने जा रहा है न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। अशोक जी, हाँ जी, ओह नहीं, अच्छा ये तो वॉइस मेल पे चला गया, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया, अचानक से बातें करते करते लाइन ड्रॉप हो गया। आई ट्राई अगेन बिकॉज देर आर सम इम्पोर्टेंट डिटेल्स दैट वी वर ट्राइंग टू गेट ऑफ हिम अबाउट दिस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रामलीला जो होने जा रहा है इसी शनिवार को। अशोक जी, कैन यू हियर मी?
0: Yes, I can.
1: हाँ जी, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ, आप बातें कर ही रहे थे कि ऑल ऑफ अ सडन लाइन ड्रॉप हो गया एंड वी हैड टू ट्राई एंड गेट यू बैक ऑन द प्रोग्राम दिस मॉर्निंग। आई होप कि अभी आवाज क्लियरली आ रही है आपको।
0: बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रहा है। मुझे पता नहीं मैं कहाँ तक कहा और या मैं फिर से बता सकता
1: हूँ? जी जी जी बिल्कुल, फिर से बता सकते हैं आप बिकॉज बड़े ध्यान से हम सुन रहे थे कि अचानक ही लाइन ड्रॉप हो गया।
0: तो अच्छा चलो, लाइन जो लाइन ठप हुआ उसके बारे में बता देते हैं
1: जी।
0: रामलीला लाइव ब्रॉडकास्ट तो होगा लेकिन लाइन उसका नहीं ठप होगा जिसने टिकट

0: खरीद कर सामने बैठ कर देखेंगे, वो तो वो एक्सपीरियंस करेंगे.
1: हाँ.
0: मतलब जो डिवाइन एक्सपीरियंस आपने अपने बातों में कही, वो एक्सपीरियंस आने से जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो लाइव देखने में नहीं होता है. फिर भी आपका सवाल था कि रामलीला का मेन मकसद क्या है.
1: जी.
0: तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा जो मेन मकसद है, न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट ये रामलीला लेके आ रहा है, ऑब्वियसली सपोर्टेड बाय कीवी फ्यून इमिग्रेशन जो वेलिंगटन न्यूजीलैंड में रह है, लेकिन उन लोगों का सपोर्ट है, दे आर आवर मेजर स्पॉन्सर. और फिर उसके साथ में कई और स्पॉन्सर्स है. मकसद यह है कि हमारे जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे आइडेंटिफाई एज इंडियन, वेदर दे आर फ्रॉम फिजियन ओरिजिन और इंडियन ओरिजिन, लेकिन पैदा यहाँ न्यूजीलैंड में हुए हैं, तो उनको अपने कल्चर और भाषा से जोड़ने का एक प्रयास है, सनातन से जोड़ने का एक प्रयास है ये. और हमने पिछले साल देखा है कई बच्चे जो भाग लिए हैं और पार्ट लिए हैं, उन लोगों में हमने चेंजेस देखा है. वो अपने कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं. कभी कभी हम जो यहाँ पर न्यूजीलैंड में स्कूल जाते हैं, बच्चे हिंदी में बात नहीं करना चाहते हैं. हमने वो देखा कि अब बच्चे बात कर रहे हैं हिंदी में, फिर एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं. हम लोग फिजी में राम राम बोलते हैं या इंडिया में नमस्कार बोलते हैं. वी हैव सीन दोज चेंजेस. तो इसीलिए हमारा मकसद यही है कि अपना कल्चर को, अपना लैंग्वेज को प्रिजर्व करें थ्रू रामलीला.
1: That is definitely a very, very beautiful thing to do. और I think कि ये एक ऐसा experience होने वाला है लोगों के लिए, जो जैसे कि आपने कहा कि जब आप वहाँ पर बैठ कर एक्चुअल में ये सारे performances देखोगे, उसका feel जो है ये अलग ही होगा और you'll feel very connected to it. Like first hand experience जो है ये आप करोगे ना. तो आज आपसे एक और एक चीज़ हम जानना चाहते हैं before we let you go, कि तैयारियाँ जो है ये सब कैसी चल रही हैं और जो लोग वहाँ पर आने वाले हैं, because I know कि ये ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, तो लोगों के लिए क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पर जब पहुंचने वाले हैं, और क्या कुछ यू नो अगर कोई इंफॉर्मेशन आप पहले से देना चाहते हैं टू ऑल दोस पीपल हु आर अटेंडिंग, कि आपको ऐसे ऐसे यू नो प्रिपेयर्ड रहना है, ये चीजें करनी है व्हेन यू आर एट द वेन्यू.
0: पहले तो ये जो शो है ये पापा टोईटोई में होने जा रहा है. हॉल का जो वेन्यू का नाम है वैदिक सेंटर. यहाँ पर मुझे लगता है जिस स्केल का इवेंट ये रामलीला होने वाला है, ये सोल्ड आउट इवेंट है, 500 लोग आएंगे. तो पहला मेरा सुझाव यहाँ रहेगा कि लोग कारपूलिंग करें, फैमिली साथ में आए ताकि उनको पार्किंग की असुविधा ना हो. लेकिन इसके साथ साथ जब वो पहुँच जाएंगे, तो जैसे शायद हम ये हमारा प्रयास है कि अयोध्या का माहौल क्रिएट करें, हर एक लोग उनको ग्रीट करेंगे जय श्री राम बोलकर. फिर वहाँ पर अंदर सबके लिए बैठने की सुविधाएं होगी. उसके साथ साथ बाहर माकी है, बड़ा सा माकी है जिसमें अबाउट 6 स्टॉल्स है, इंडियन बुटीक से लेके खाना पानी से लेकर और बहुत कुछ है, फेस पेंटिंग इत्यादि सब कुछ है. तो वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. लेकिन ऑफकोर्स मेन इवेंट मतलब पूजा पाठ तो शुरू हो जाएगा 5 बजे से, लेकिन मेन रामलीला शुरू होगा 6 PM से. वो जो एक्सपीरियंस वो करेंगे मैं कह नहीं सकता हूँ. ये इट विल बी अ डिवाइन एक्सपीरियंस. हमने जो लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया है उसके मतलब उस अनुभव को मैं बांटना चाहूँगा. ये ऐसा लग रहा है बच्चों ने जो 3-4 हफ्ते या 4 महीने से एक्चुअली मेहनत किया है, वो किस तरह से मतलब रिजल्ट उसको उसका हम देखेंगे. कि जो बच्चे कभी कभी हमारे पास आए जो जिसको हिंदी बोलना नहीं आता था, वो 4 महीने में लाइव डायलॉग बोल रहे हैं. रिकॉर्डेड डायलॉग्स नहीं है ये, लाइव डायलॉग्स ऑन स्टेज बोल रहे हैं, सीख कर याद करके विद इमोशंस, जो कैरेक्टर का भाव है वो लोगों तक पहुँचाना. आई थिंक ये इन इट सेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट. हमें पेरेंट्स को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने समय निकाल कर हर रविवार को 2 बजे से 6 बजे तक अपना समय देते थे, बच्चों को हमें सौंप देते थे कि इनको सिखाइए. तो ये सब एक्सपीरियंस करेंगे उस दिन.
1: दैट इज एब्सोल्युटली वर्थ प्रेजिंग एंड टॉकिंग अबाउट. अशोक जी, बिफोर हम आपको यू नो जाने दे, बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड फ्राइडे बिजी रोज दिन होगा आपके लिए, प्लस तैयारियां अभी कल के लिए भी करनी है, तो जाने से पहले कोई एक मैसेज जो आप सभी सुनने वालों को देना चाहते हैं, या फिर किस तरह से जो लोग शायद इस बार इसका हिस्सा नहीं बन पाए, इस बार रामलीला को अपना योगदान नहीं दे पाए, वो कैसे इसे अपना योगदान दे सकते हैं, और साथ में आप अगर अपनी ओर से कोई मैसेज जो है ये देना चाहते हैं.
0: हाँ, मैंने स्टार्ट में जो कहा था, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसको अगर मैं गा के सुनाऊं तो वो ऐसा है कि जहाँ कुमति तहाँ विपति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना. तो ये इसका मेन जो एक्सप्लेनेशन वो है कि जहाँ पर लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके मिल करके काम करेंगे तो कोई भी काम पॉसिबल है. हमने जो मेहनत किया है इसको आप आकर देखिए, जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए. अगर आपको कुछ ना अच्छा लगे हमें फीडबैक दीजिए, हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे. लेकिन मेरा कोशिश यह है और मेरा निवेदन भी यह है कि आप रामलीला जो टीम है इसको सपोर्ट करें, और हमारा ये मतलब जो जितना इंटरेस्ट हमने देखा है लोगों का इसमें, तो हमारा कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट ईयर हम बड़ा वेन्यू पे जाएं. ऑब्वियसली बड़ा वेन्यू पर जाने के लिए बड़ा कॉस्ट लगता है.
1: बिल्कुल.
0: तो ये सब बातें हम नेक्स्ट ईयर सोचेंगे. अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, इफ़ यू आर गुड बिजनेस, जो ये छोटा बड़ा हम वो नहीं देखते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जो भी ये सपोर्ट आप हमें करेंगे हम उसको आप तक एक अच्छा शो लाने का प्रयास करेंगे. शो बात अलग है, लेकिन कल्चर को प्रिजर्व करने का ये जो प्रयास है ये चलता रहेगा. और मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके हम लोगों को सपोर्ट करिए. कई सवाल भी उठते हैं, लोगों ने मुझे पूछा ये रामलीला किस लिए कर रहे हो, कहीं फंड रेजिंग कर रहे हो. फंड रेजिंग हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का एक प्रयास कर रहे हैं. और हम और आप एक ना एक दिन चले जाएंगे, लोग हमें कैसे याद करेंगे कि भाई कभी हम छोटे थे तो रामलीला देखते थे, मास्टर अशोक करा रहे थे, या हम FM में हमने इसके बारे में सुना इत्यादि. तो यही हमारा प्रयास है. तो मैं ये कहना चाहूँगा, अपना आशीर्वाद रखे और भगवान पर भरोसा रखे, क्योंकि भगवान सबका कल्याण करेगा. आइए रामलीला में राम जी का आप चरित्र देखिए और हमारे यंग जनरेशन को खूब खूब सपोर्ट करिए.
1: थैंक यू सो मच अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और इन सारी जानकारियों के लिए भी. आपको और आपकी पूरी टीम को हम कल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं जो है ये जरूर दे रहे हैं.
0: कल वेदा बहुत अच्छा रहेगा तो आइएगा. जय श्री राम.
1: जय श्री राम. थैंक यू सो मच. तो डेफिनेटली याद रहे कि कल ये होने जा रहा है श्री रामलीला, एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस. जैसे कि हमने बताया आपको, ये वैदिक सेंटर पर रहेगा, 32 ग्लासगो एफ पापा टोयटोय. ऑलरेडी सोल्ड आउट ये हो चुका है, पर यहाँ से कुछ लाइव स्ट्रीम्स किए जाएंगे अगर आप कुछ झलकियाँ देखना चाहते हैं, ताकि इस बार आप इसे इस तरह से ज़रूर एक्सपीरियंस कर ले, इसका एक हिस्सा बन जाए छोटा सा, और जब अगली बार ये हो एक ग्रैंड तरीके से, तो आप भी अपना योगदान जो है इसे ज़रूर दें.
2: Mornings made better.
3: Two frienda, char toast, butter jam, aur ek special chai.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
7: वो भी आई लव यू वाला.
6: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
7: अच्छा आप दिलजीत हो?
6: आए आए बताओगे यार.
4: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
8: Home loan ke saath thoda cash bhi paana chahte hain? Naya home loan lena ho ya maujooda loan ka review karwana ho? Squirrel aapko dilayega ek aisi zabardast deal ki aapki ho jayegi balle balle. Janiye power of the Squirrel effect. Squirrel.co.nz.
9: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
10: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
9: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
9: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
11: At Bunnings, you can make cleaning up your home easy with Sally's 750ml Rapid Mold Killer, only $9.90, or an all-set 50-litre clear storage container, just $8.99. Bunnings makes cleaning easy. Lowest prices are just the beginning.
12: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
13: Since 96, Rebel Sport has been getting Kiwis off the sidelines and into the game. And to celebrate our 30th birthday, we have $30,000 up for grabs. To enter, jump online to tell us why you or someone you know deserve to have their sport covered for a year. It's our way of giving back to the players, teams and supporters who love sport as much as we do. So go to rebelsport.co.nz for your chance to win a share of $30,000 now. Only at Rebel Sport.
14: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
15: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
16: अब हमारा क्या होगा?
17: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
15: तो क्या करें?
18: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: What's going on?
1: वैसे मैसेज भी आपने हमारे पास अपना भेजा, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिसिंग विजय अंकल्स ह्यूमरस डेड जोक्स, रोशनी, मेघा और सपना, आपने अपने मैसेजेस भेजे, थैंक यू सो मच। आई डेफिनेटली कन्वे योर मैसेज टू हिम एंड ऑफ कोर्स वेरी सून ही विल बी जॉइनिंग अस। बट बिफोर ये सारी चीज़ें आपके लिए हम लेकर आए, उससे पहले एक ज़रूरी अपडेट आपको हम देना चाहते हैं। व्हेन लाइफ बिकम्स ओवरवेलमिंग, यू डोंट हैव टू फेस इट अलोन। फॉर 28 ईयर्स एशियन फैमिली सर्विसेज हैज सपोर्टेड एशियन कम्युनिटीज across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand our language and culture. Now launching Reach In Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
2: Bollywood's most wanted.
19: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
20: Main laau apna A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
1: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
2: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
3: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है,
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
6: हेलो एवरीबॉडी।
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
8: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
9: क्यों, क्या हुआ?
8: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
10: Hello, NZHL helps you get ahead on your mortgage without living off office snacks, Christmas shopping on Boxing Day, buying handbags on the dark web.
11: It's a very Stassi.
10: Selling your organs, DIY Botox, ignoring expiry dates. Knitting, pickling, homebrewing, live camming, dining, dashing, or borrowing toilet paper from work.
11: Ah, you keep it.
10: Nope, there's a better way to have a mortgage and a life with NZHL.
12: NZHL. Please use your imagination for the following ad.
13: If I won Powerball, the first person I'd tell would be, and would surprise all our friends by,
12: imagine winning $8 million this Saturday. Play in store or online.
14: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
15: Macca's weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
16: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
17: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
16: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
17: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
16: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
18: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
19: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
20: Join our tribe!
19: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
20: join our tribe!
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
21: What's going on?
22: तो चलिए, डेली राउंडअप की बारी आई है व्हाट्स गोइंग ऑन में, जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले खबर आ रही है कि पुलिस एक मामले की जांच कर रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति को रिपोर्टेडली स्टैब किया गया ऑन विक्टोरिया स्ट्रीट वेस्ट इन सेंट्रल ऑकलैंड आज अर्ली इन द मॉर्निंग स्काई टावर के पास। इमरजेंसी सर्विसेज को जस्ट बिफोर 5:45 AM एट द सीन जो है ये बुलाया गया। एक कन्वीनियंस स्टोर वोका है जिन्होंने कहा कि ये जो इंसिडेंट है तब शुरू हुआ जब एक अलेज्ड अल्टरकेशन जो है ये दो लोगों के बीच में शुरू हुआ, बिलीव टू हैव नोन ईच अदर। पुलिस सीन पर मौजूद थी और कई घंटों तक सीसीटीवी फुटेज जो है ये रिव्यू करते हुए कुछ जानकारियां इकट्ठे करने की कोशिश कर रही थी बिफोर दे लेफ्ट। विक्टिम के कंडीशन पर अभी कोई डिटेल नहीं कंफर्म किया गया है, लेकिन पुलिस डेफिनेटली कुछ और डिटेल्स रिलीज करेंगे एज द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज, जिस पर आपके साथ भी डिटेल्स हम शेयर करते हुए चलेंगे। अन्य खबरों में कहा गया, एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर न्यूजीलैंड डेंटल एसोसिएशन को यह पता चला है कि बहुत से पेरेंट्स ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने बच्चों के ओरल हेल्थ को लेकर, विद 43% ऑफ 5-year-olds ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग टूथ डिके। इस रिपोर्ट में पता चला है 90% ऑफ पेरेंट्स बिलीव कि उनके बच्चों के पास एक अच्छा या फिर एक्सीलेंट डेंटल हेल्थ है, बट ओनली 63% ऑफ चिल्ड्रन ब्रश देयर टीथ ट्वाइस अ डे विद फ्लूराइड टूथपेस्ट। एसोसिएशन का कहना है कि पेरेंट्स शुड सुपरवाइज ब्रशिंग अंटिल चिल्ड्रन जो है दे टर्न 8 or 9 years old, और इस मामले में वो बेटर एक्सेस टू फ्री डेंटल केयर जो है इसकी भी मांग कर रहे हैं, जबकि थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को बताया जाता है दैट दे स्टिल वेट फॉर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंटेबल डेंटल डिजीज। ये था आज का डेली राउंड अप खबरों के मामले में। दीज आर दी टू मेजर अपडेट्स जो अभी तक हमारे हाथ लगे हैं आज सुबह से। बट ऑन द अदर हैंड, लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू कि एक और एक बहुत ही मेजर इवेंट होने वाला है इसी महीने 25th of August को। सुपर सिटी ऑकलैंड अपना वन एंड ओनली शो लेकर आ रहे हैं, द बिगेस्ट कॉन्सर्ट ऑफ दिस ईयर में से एक, ग्लोबल सुपरस्टार करण औजला। पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर के तहत ही विल बी परफॉर्मिंग एट स्पार्क अरेना 25th of August को ये रहेगा, और इनके स्पेशल गेस्ट इकी भी इन्हें ज्वाइन करने वाले हैं। एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ हिट सॉन्ग्स, इनक्रेडिबल एनर्जी और इलेक्ट्रिफाइंग परफॉर्मेंस का, जिसका मजा आप बेशक उठा सकते हैं। सो टिकट्स ग्रैब कर लीजिए, hum.rover.nz विजिट करना है डिटेल्स के लिए, या फिर livenation.co.nz विजिट करें टू ग्रैब योर टिकट्स। स्पार्क अरेना 25th of August को वन शो ओनली, एक लौता शो जो पूरे न्यूजीलैंड में होगा, और आपको मिलेगा मौका ग्लोबल सुपरस्टार करण औजला को लाइव देखने का। बट इफ़ यू वांट टू ट्राई योर लक टू विन सम पासेस, तो इसकी भी कोशिश आप कर सकते हैं। विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज हम 104.2 FM विद द ब्लू टिक, और ये वेरीफाइड पेज है हमारा, जिसे जब आप विजिट करोगे तो वहां पर आपको एक पोस्ट दिखेगा, उस पोस्ट को आपको लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में करण औजला के लिए एक प्यारा सा मैसेज लिखना है, और साथ में आपको उन्हें टैग करना है। वंस यू राइट दिस मैसेज फॉर करण औजला एंड टैग हिम, यू विल बी पार्ट ऑफ दिस ड्रॉ, जहां पर आपको मिलेगा मौका टू विन अ डबल पास टू दिस पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर शो।
1: Let's go.
4: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: ओ चलिए अब इसी के साथ साथ जाने का समय हो रहा है. आज का थ्रोबैक आपके नाम हम कर रहे हैं. आई वुड से कि आज भाई थोड़ा डिफिकल्ट डे था मेरे लिए, बट यू गाइज मेड इट ईजिया. आपकी कंपनी हमेशा ना हर एक दिन बहुत बढ़िया बना देती है मेरे लिए, और उम्मीद है कि आज आपने भी अपना फ्राइडे मॉर्निंग जो है ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा के साथ इन्जॉय किया. मंडे को एक बार फिर आपके लिए ब्रेकफास्ट शो का सफर हम तय करेंगे ठीक सुबह 6 पर. तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. फ्राइडे इन्जॉय कीजिएगा. वीकेंड आपका बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे, यही दुआएं हमारी ओर से. और चलिए जाते जाते आज का ये थ्रोबैक आपके नाम हम छोड़े जा रहे हैं.

0: Eat better, live better.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai
2: My Time with Kashika.
3: वक्त कहता है कि ठहर जा, दिल कहता है कि चल पड़, और ज़िंदगी बस ऐसी खींचातानी में निकल जाती है। मगर ऐसा ना हो कि इस खींचातानी में ये वीकेंड आपका निकल जाए और आप कहें कि ओहो हो, मैंने अपने लिए समय नहीं निकाला। आ गई हूँ मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक आपको याद दिलाने के लिए कि आपके लिए समय कितना ज़्यादा अहमियत रखता है, और ख़ास तौर पर फॉर योर मेंटल वेलबींग, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हेल्थ, एवरीथिंग। यही बातें मैं मंडे टू फ्राइडे आपके साथ करती हूँ, जहाँ पे आपके लिए माय टाइम लेकर आ जाती हूँ 10 से 12 बजे मंडे टू फ्राइडे। और कोशिश यही रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको आपके फ़ायदे के लिए मैं ज़रूर बताऊँ। कशिश फूड्स के सौजन्य से आपका साथ निभाने के लिए मैं काशिका आ चुकी हूँ स्टूडियोज़ में, और 12 बजे तक रहने वाली हूँ। आज मेरे साथ एक गेस्ट आ रही है, बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों क्या, बहुत सालों बाद आएंगी। इनके साथ इनका बैंटर मेरा बहुत ही अलग होता है, तो इनके साथ बात करने वाले हैं, और वो नाम है, आपको पता है, इधर उधर जाने से बचना, आगे क्या है वो आपको पता ही होना चाहिए। तो ठीक है, इनके साथ थोड़ी देर में हम बातचीत करेंगे, देखेंगे कि क्या बताएंगे मार्केट के सिचुएशन के बारे में। लेकिन अभी के लिए आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक, बिकॉज वी लव आवर लाइव्स, वी लव आवर सेल्व्स, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आसपास जो है उन सबसे हमें प्यार, हमें उनका चाहिए, और उन तक प्यार पहुंचाना है, तो प्यार बांटते चलो।

0: What's a duck?
1: सो एज प्रोमिस्ड एंड जो मैंने टेक्स्ट किया था कि मैंने कहा था कि कोई हमारे साथ एक बहुत दिनों बाद जुड़ने वाली हैं और मैंने आपसे कहा था कंप्लीट करो, इधर उधर जाने से बचना, और उसके बाद टेक्स्ट आने शुरू हो गए, कॉल 0800 रचना। तो भाई ठीक है, चलिए भाई, ये नाम तो हमें बहुत ही जाना पहचाना लगता है, जो कई सालों से हमारे साथ साथ जुड़ा हुआ है, जब से इनफैक्ट रचना ने 0800 रचना का आई कैन सी दैट उसका इजाद किया था या जब से उसका इन्वेंशन किया था। बट आई हैव ऑनलाइन विद मी एंड अ वॉर्म वेलकम टू यू रचना। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग।
2: हे गुड मॉर्निंग काशिका जी, हाउ आर यू?
1: आई एम फाइन। देखिए आपके लिए टेक्स्ट भी आ गए, मैंने कहा सिर्फ इधर उधर जाने से बचना, बताओ कौन आ रहा है, तो मैंने कहा कॉल करो 800 रचना।
2: एंड आपको मैं ये बता दूं, हमारा कारवा 12 साल से एक दूसरे के साथ जुड़ा है।
1: ओ वाओ, क्या बात है, कुडोस टू यू एंड कुडोस टू, अरे हमारा तुम्हारा बैटर ही अलग है।
2: यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी फॉर 12 इयर्स।
1: ओ माय गॉड, थैंक यू। ओ थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक। हमारा साथ निभाने के लिए, हमको सपोर्ट करने के लिए हमेशा आपका प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
2: आपका प्यार मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: एंड लाइकवाइज। एंड चलिए पहुंच जाते अपने पहले सवाल की ओर, और पहला सवाल मैं आपसे आज शुरुआत करना चाहती हूँ, सुस्वागतम करती हूँ आपका इस सवाल के साथ।
2: थैंक यू।
1: कि ये इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स के बारे में कुछ तो बता दो रचना।
2: अरे भाई देखो, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब रेट्स ऊपर जाते हैं तब लोगों को इश्यू होता है, रेट नीचे जाते हैं तो लोगों को इश्यू होता है कि अब क्या करें, राइट? सो द बेसिक क्वेश्चन कम्स दैट द एंग्जाइटी अमंगस्ट द कॉमन पीपल इज कि व्हाट इज द राइट रेट वेयर वी कैन लॉक इट फॉर अ सर्टन टाइम एंड हैव अ सर्टेनिटी ऑन द होम लोन रीपेमेंट, राइट? तो अभी राइट नाउ अगर आप देखोगे, 8 जुलाई को जब OCR अनाउंस हुआ था, इट इंक्रीज बाय 0.25%। ऑब्वियस है कि उसका इम्पैक्ट अपने नॉर्मल फिक्स रेट्स पे गया है। फ्रॉम नाउ अंटिल एंड ऑफ द ईयर दो मोर हाइक्स आर एक्सपेक्टेड।
1: अच्छा।
2: ऑफ 0.25 एंड 0.25। सो जाहिर है कि इंटरेस्ट रेट्स मे गो अप। नोबडी हैज अ क्रिस्टल। डेफिनेटली चांसेस आर कि इंटरेस्ट रेट्स अब से लेके एंड ऑफ द ईयर तक में 0.25 तक बढ़ेंगे। सो व्हाट वन नीड्स टू डू इज, आप किस रेट पे फिक्स्ड हो, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आप क्या ये अपना जो घर है वो इन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स बेचना चाह रहे हो कि यू आर वांटिंग टू रिटेन इट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स। बेस्ड ऑन व्हाट योर करंट इंटरेस्ट रेट्स आर, आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट एंड अर्ज पीपल, प्लीज आप अपना मॉर्गेज रिव्यू करवाइए। दिस इज द हाई टाइम वेयर यू नीड टू मेक श्योर कि क्या आपका लोन स्ट्रक्चर करेक्ट है, क्या आप करेक्ट रीपेमेंट दे रहे हो, what is your financial situation, is there a way where we can help you pay off your mortgage faster or have that stability for next 3 to 5 years of home ownership and also saving lots of money on the interest cost. Kyunki kai baar kya hota hai Kashika ji, with the interest rates increase or decrease, aapko yahi nahi pata ki aap apni repayments में $15-20 a week extra करते हो, आप 3 to 4 साल का लोन रीपे फास्टर कर देते हो, यू सेव सो मच मनी बिहाइंड द सीन ऑन द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका स्ट्रक्चर रिव्यू होना चाहिए। एंड यस, आए दिन रोज इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो

0: हैं, फिक्स से फ्लोटिंग पे आने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 60 डेज, वी कैन ऑलवेज लुक एट रिस्ट्रक्चरिंग और वी कैन ऑलवेज लुक एट रिजर्विंग योर रेट विद इन 60 डेज ऑफ योर फिक्स रेट एक्सपायरी. तो फॉर दैट प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन 0800 रचना, विच इज 0800-722-462, एंड लेट सिट डाउन एंड सी वॉट यू हैव गॉट दी ऑप्शन एंड वी कैन ट्राई अवर बेस्ट टू सेव यू वॉट एवर मनी और we can offer you the right structure that will help you save a lot of money on the interest cost.
1: Absolutely. तो भाई आपको भी पता चली गया है, आपका टैक्स लोगों का आ गया, क्योंकि रचना के साथ बहुत सारे लोग, जैसे तुमने कहा, 12 साल से जुड़े हुए हैं और सबको एग्जैक्टली पता है 0800 रचना इज द नंबर. सो भाई इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो
0: 0800 रचना.
1: बस थैंक यू सो मच रचना फॉर टुडे, इट्स सो रिफ्रेशिंग टॉकिंग टू यू एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड.
0: Absolutely. You too. Thank you.
1: Bye.
0: Bye-bye.
2: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better. Live better.
3: Attention everyone. हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर.
4: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
3: क्या आपकी

0: शॉर्ट आउट की जब मैं बात करती हूँ तो मेरे साथ साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जब जुड़ जाते हैं. एंड अ बिग थैंक यू टू यू. एंड दिस इज दिलजीत फ्रॉम पुकेकोई. एंड थैंक यू नीता फ्रॉम अगेन पाकुरंगा. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं एंड इंजॉय कर रहे हैं. हाँ, मेरे पास एक कॉल आई थी आपकी शर्मिला और आपने पूछा था कल क्या हुआ था. बताऊंगी उसके बारे में भी आपको, जो ड्राइव शो में सैंडी ने भी खुलासा किया था कि मेरे साथ कल क्या स्टूडियो में हुआ था. बट इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँचूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन बस इज़ राउंड द कॉर्नर. ऐसे में कुछ ऐसी मेमोरीज़, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपके साथ हुई हैं, आपके भाई बहन की एक ऐसी बॉन्डिंग जो थी, डेफिनेटली आपको क्या करना है. ये बॉन्डिंग जो है कभी कभी आप एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के साथ नहीं बता सकते, उन ऑर्डिनरी चीज़ों के साथ बता सकते हैं जो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती हैं. यानी कि किसी का टेप, किसी का रिकॉर्ड, कोई की, कोई यू नो एनीथिंग, यानी ज्वेलरी, कोई झुमका, कोई किसी का की चेन, कुछ भी हो सकता है. आपको क्या करना है, हमारे फेसबुक के पेज पे पहुंचना और वो जो एक मीनिंगफुल एक जो मेमोरी है आपके पास, अगर आपने रखी हुई कमेंट सेक्शन में, आप वो मेमोरी लिख दीजिए और अटैच कर दीजिए और अपने सिबलिंग को टैग कर दीजिए. दैट्स इट. $300 कैश जीतने के लिए आपका नाम ड्रॉ में चला जाएगा. 28 अगस्त को सुबह लाइव ये विनिंग कहानी पढ़ी जाएगी अलोंग विद $300 कैश टू द विनर.
1: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

एक मिट्योट जो है ये रिकवर किया गया था वायरारापा में, जहाँ पे एक स्पेक्टैक्युलर फायरबॉल जो थी ये लोअर नॉर्थ आइलैंड की तरफ से पहुँच गया था। और न्यूजीलैंड का 11th कन्फर्म्ड मिटोराइट जो था ये था पाया गया, जहाँ पे कहा जाता है कि एटलीस्ट अराउंड 28th ऑफ जुलाई के आसपास कुछ लाइट जो थी स्काइज में नज़र आई थी फ्रॉम कापीटी से लेके मास्टरटन, और उसके बाद फिर वो गायब हो गए। मल्टीपल क्रैकल्स जो थे उसके जो थे वो नज़र भी आए थे, और ये ऑब्जेक्ट जो था ये ट्रैवल कर रहा था काफ़ी फ्रेगमेंटेड जो था ये रहा, क्योंकि लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया। ये फायरबॉल जो था ये कैप्चर किया था फायरबॉल आउटेरोआ के नेशन वाइड नेटवर्क के मिट्योर कैमराज ने, जहाँ साइंटिस्ट ने उसमें कैलकुलेट किया कि उसके जो सर्वाइविंग फ्रेगमेंट्स जो थे वो जब लैंड हुए तो क्या हुआ। काफ़ी दिन की रिसर्च के बाद जो थे ये पता चला, इनका वेट था 8 ग्राम, 9 ग्राम, 12 ग्राम, 40 ग्राम, और साइंटिस्ट ने इसे रिकवर किया फ्रॉम फायरबॉल्स आउटेरोआ। फिर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने इस पर रिसर्च किया, और उन्होंने बताया एक बहुत बड़े साइज़ का मिट्योराइट जो था वो फूटा था, टूटा था, और उन्होंने कहा कि इतने दिनों से रॉक्स के बारे में उनके एक स्टूडेंट ने कहा, वो स्टडी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था। तो डेफिनेटली ये कुछ अलग ही चीज़ है, बट टू फाइंड समथिंग जो कई साल पता नहीं कितने सालों से चल के वो हमारे अर्थ पर आके गिरा, और ये पता नहीं वी डोंट नो, बट वो न्यूजीलैंड स्काइज में फायरबॉल स्पॉट की गई, क्या आप उस एरिया में थे, क्या आपने देखा कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। इट्स ग्रेट अगर आपने इस तरह का कुछ देखा। हमारा एंशंट जो एक सोलर सिस्टम का एक जो हम लोग तरीका है, आई थिंक इट्स वेरी मच एग्जिस्टिंग, वेरी मच देयर।

0: better.
1: Eat better, live better, and we want you to get entertained better. Kyunki aapke liye South Auckland Driving Limited and NZ Cultural Trust lekar aa rahe hain something very exciting. Ye Bhajan Jam Live jo hai aapke liye Ravitesh Deo jo hain bahut hi achhe talented vocalist aur accomplished musicians ke saath milke ek vibrant concert jo hai set karne wale hain. Ye 22nd of August ke din sham 7 baje Vedic Center mein hone wala hai. Aaiyega zarur kyunki yahan par aapko ek fusion of bhajans कीर्तन्स डिवोशनल म्यूजिक सुनने को मिलेगा. इवेंट ब्राइट के जरिए आप ये टिकट भी खरीद सकते हैं. भाई कमिंग अप नेक्स्ट कोई सपना वपना देखा है तो जरूर मुझे कॉल करो 0800 00 हम पर.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
8: Here for easy dinners, game-watching snacks, and last-minute ingredients. When you need it now, get it delivered to your door. Just download and order on the Foursquare Now app. Foursquare. What'll it be today? Select stores only.
9: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 7kg clothes dryer, just $249. 9kg heat pump dryer, just $499. 10kg 9-star energy rated heat pump dryer, $899. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
0: TradeDepot.co.nz. Kiwi kids are active kids. Creative kids.

0: ड्रीम डायरी। तो ड्रीम डायरी में आपका टेक्स्ट आया, आई ड्रीम्ड ऑफ अ बैडमिंटन। अच्छा, सो ड्रीमिंग ऑफ बैडमिंटन अगर देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है एक चैलेंज जहां आपको बहुत ही क्विक थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, जिस तरह से गेम में क्विक थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, एक स्ट्रगल जो होता है, यू कीप अप टू दैट स्ट्रगल। कुछ डिसीजंस जो आपको बनाने होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज जो आपको आती हैं, बहुत जल्दी बना लेते हैं आप, या फिर प्रॉबेबली वो जीत सकते हैं या हार सकते हैं डिपेंडिंग, लेकिन एक स्ट्रगल होता है जहाँ पे आप कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं लोगों के बीच में, और वहाँ आपको क्विक थिंकिंग, क्विक एक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसे अच्छी तरह मैन्यूवर कर सकते हैं। बैडमिंटन का एक गेम है, ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी एबिलिटी, किस तरह से आप अडेप्ट कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन या नई अपॉर्चुनिटी। जिस तरह से शटल जो है वेट कर रही होती है कि रैकेट के पास इस तरफ से आए या उस तरफ से आए, ठीक इसी तरह आपका माइंड भी दौड़ता है। जैसे कि कभी एक कोई मैच खेल रहा था तो वो अपनी लाइफ में उठे, उनको लगा कि शायद उन्होंने कुछ खास खो दिया है या कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो टोटली भूल गए थे कि क्या उनकी लाइफ में आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट वेन ही गॉट अप ही रियलाइज कि ही वॉज थिंकिंग एक्चुअली अबाउट बैडमिंटन, क्योंकि उनके पास बैडमिंटन का रैकेट पड़ा हुआ था। तो बताइए आपने लाइफ को कितना बड़ा चैलेंज दे दिया। एक बैडमिंटन रैकेट की तरह आपका माइंड भी किस तरह से घूमता है, लेफ्ट राइट, कहाँ आपको किस तरह से उस शटल का इंतज़ार करना होता है, जिस तरह आप उस चैलेंज का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ठीक उसी तरह से लाइफ में भी आप बहुत सारे चैलेंजेस का इंतज़ार कर रहे होते हैं और एक बैडमिंटन रैकेट की तरह आपका माइंड दौड़ रहा होता है।
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट NZPMI.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो जब बात कर रहे हैं अबाउट बहुत सारी बातें एक्चुअली कर रही होती हूँ मैं, और ऐसे में आपको मुझे याद दिलाना है कि कल क्या खास होने वाला है. कल रामलीला होने वाली है जो कि आपके लिए वैदिक सेंटर ग्लासगो एवेन्यू में होगी. $10 पर टिकट के हिसाब से आप पहुँच सकते हैं. बच्चे अंडर 5 ईयर्स कैन गो एब्सोल्युटली फ्री, तो आप डेफिनेटली इसमें जाके इंजॉय कर सकते हैं. आज शाम को 7:30 से 9 बजे तक चिन्मय मिशन आपको भगवद गीता डिकोडेड की मास्टर क्लास में इन्वाइट कर रहे हैं, जहाँ पर एक कॉमेंट्री जो है और पूज्य स्वामी चिन्मयानंद, ये एक सेशन जो है आपके लिए वेदांत टीचर ईशान चैतन्य जो है ये करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री है. और chinmaya.org.nz के जरिए आप रजिस्टर भी कर सकते हैं. चलिए इसके साथ में एक खास चीज़ और हो रही है, एक उत्सव है, मेघ उत्सव. सावन का महीना है और ऐसे में ये मानसून की फेस्टिवल की सेलिब्रेशन जो है आपके लिए कल माउंट अल्बर्ट वॉर मेमोरियल हॉल में होने वाली है. और 4:30 से 8:30 बजे तक फ्री एंट्री है. खाना पीना, स्टॉल्स, बच्चों के लिए कल्चरल परफॉर्मेंसेस, सभी कुछ है यहाँ पर. तो क्या जाएंगे आप?
2: बिल्कुल.

नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू पीपल. 7 अगस्त का दिन है, आपका बर्थडे एनिवर्सरी है, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. और फ्राइडे है तो ऐसे में मूड भी अलग हमारा चेंज हो जाता है. वैसे एक बात बता देती हूँ, अपने मूड के स्विंग्स के साथ साथ आप इस वीकेंड पर अगर चाहें तो अगर आप जैसे किसी भी एरा के गाने सुनना चाहते हैं, यानी कि 60s 70s के, तो हम रिवाइंड सुन सकते हैं पुराने गानों को लेके. 80s के जूक बॉक्स में भी आप जा सकते हैं, नहीं तो फिजी कीर्तन, फिजी भजन जो है ये भी आप इनके सेपरेट म्यूजिक स्टेशंस के जरिए सुन सकते हैं. पंजाबी गानों का मूड है तो फिर आप चढ़दी कला के जरिए हमारे पंजाबी हिट सुन सकते हैं हमारे म्यूजिक स्टेशन में. और राहत फतेह अली खान के भी सूफी और कव्वालियों का मौसम अगर चल रहा है तो आप डेफिनेटली हमारे रोवा ऐप के जरिए म्यूजिक स्टेशंस में इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, रोवा ऐप को, और उसके जरिए हमें सुन सकते हैं. वैसे कहाँ से सुन रहे हैं, हमारी 6-word स्टोरी आज की बहुत ही सिंपल होने वाली है, हॉलीडे मूड. तो 6-word स्टोरी आपकी जो भी होगी वो मुझे आपको बताना है कि आपका हॉलीडे मूड क्या है या वीकेंड मूड आपका क्या है. चलिए, आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दिया और साथ में बचा कुचा खाना जो होता है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, एंड एक चांस देंगे आपको जहाँ आप कुछ जीत भी सकें.

0: चौबीस घंटे शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: रक्षाबंधन आ रही है और ऐसे में मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ऑफ कोर्स एक कॉल आपकी एक्सपेक्ट करूँगी मैं, एंड लेट्स सी इफ़ यू आर गोइंग टू गिव मी अ कॉल. तो मैं आपका नाम ड्रॉ में भी एंटर करना चाहूँगी. खाली आपको ये करना है, आपको बताना है कि परफॉर्मेंस कैसी रही है आपके भाई आपके बहन की.

0: तो भाई ये जो मजा है ये बढ़ता चला जाता है जब भाई बहन एक साथ आपस में होते हैं और भाई बहन आपस में होते हैं और फिर एक रिव्यू करते हैं उनको हम, भाई इस महीने इस साल हमारे भाई बहन ने हमारे साथ ऐसे बिहेव किया, पहले ऐसे नहीं थे। लेकिन सुनील जो है यहाँ मेरा साथ निभाने के लिए स्टूडियो लाइन पर आ गए हैं एंड देखते हैं ये क्या बताते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू सुनील, कैसे हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग कशिका जी, आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: आई एम फाइन। तो बताइए रक्षाबंधन के मौके पे आपके भाई या बहन का कोई रिव्यू करिए, चलिए।
1: वैसे तो हर मोमेंट ही खास होती है कशिका जी, भाई बहन के बीच में तो क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ पे फिर थोड़ी तकरार भी होती है,
0: बहुत होती बाबा।
1: तो मेरी जी तो मेरी बहन है, मेरे से छोटी है, तो जब आप सुबह आपने ये कंपटीशन शुरू किया तो मैं आप सुन रहा था रेडियो, तो मेरे दिमाग में सडनली एक मेमोरी क्लिक हुई।
0: हाँ।
1: तो क्या होता था कि जब हम छोटे थे तो उस टाइम टीवी पे वो प्रोग्राम आते थे ना, शक्तिमान, अलिफ लैला,
0: हाँ,
1: हाँ, हाँ, तो
0: हाँ।
1: हमारे बीच में हमेशा लड़ाई होती थी कि कौन कौन सा प्रोग्राम देखेगा या किसने क्या देखना है।
0: हाँ।
1: तो इस चक्कर में हमारी लड़ाई ज्यादा हो जाती थी, तो कई बार मॉम डैड घर पे नहीं होते थे तो आस पड़ोस वाले भी आ जाते थे, क्या हो गया क्या हो गया। तो अच्छा वो होता था, नॉर्मली सभी को पता था हमारे आस पड़ोस में, बट एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही लड़ाई शुरू हुई तो मेरी बहन ने मेरी बुक्स निकाल ली मेरे बैग में से, कहती उसको मैंने ये देखना है नहीं तो मैं तेरी बुक्स फाड़ दूंगी। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं तेरी बुक्स उठा लेता हूँ, मैं तेरी बुक को फाड़ दूंगा। और सडनली उसने देखा कि ये तो टिट फॉर टैट हो गया, उसने मेरे सर्टिफिकेट उठा लिए।
0: ओह माय गॉड,
1: कहती अभी मैं तेरे सर्टिफिकेट फाड़ूंगी। मैंने कहा नहीं, ये ले मेरे हैंड्स इन द एयर, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो तूने करना है कर, मेरे सर्टिफिकेट साइड में रखो।

0: मैंने आपका नाम प्रो में ऐड कर लिया. ब्यूटीफुल स्टोरी. थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू.
1: थैंक यू कशिका जी. हैव अ गुड डे.
0: यू टू. बाय बाय.
1: बाय.
0: तो कल ये मौका, मतलब मंडे को ये मौका आपको दोबारा मिलने वाला है. लेकिन अभी सिक्स वर्ड स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट.
2: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम.
7: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
8: क्यों, क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
9: Hello. NZHL helps you get ahead on your mortgage without living off cabbage.
10: Ooh, yuck.
9: Joining a company with a pyramid-shaped structure. Ordering Happy Meals as an adult. Celebrating your anniversary in the food court. Selling your clean urine to competitive cyclists. DIYing, side hustling, catfishing, cold showering, couch surfing, foraging, freeloading, or joining a thruple.
11: How's it? I'm Dennis.
9: Nope, there's a better way to have a mortgage and a life with NZHL.
12: If you don't play Instant Kiwi, it's just another day. If you do play Instant Kiwi, you have absolutely no idea what could happen next. Instant Kiwi, you never know. Play at your local lotto store or online today. R18.
13: Right now at Guthrie Bowron. Enjoy free curtain making on thousands of quality fabrics. Take 15% off selected blinds, shutters and motorization. Plus, get a free in-home measure and quote on us. Guthrie Bowron. Inspiration starts here. Conditions apply.
14: Reliance Ventilation System.
15: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
14: Moisture और ventilation का problem लगता है.
15: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
14: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
16: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
17: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
18: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
0: तो मेरी आज की सिक्स वर्ड स्टोरी सारिका आपने भेजी है. और ये आपको पता है, एक टीज़र तो चल ही रहा है कुछ वेकेशन वेकेशन का. क्या है, चलो आपके हिसाब से वो फिजी है ना. तो आपकी स्टोरी है, अ ड्रीम हॉलीडे बिगिंस टू फिजी. अ ड्रीम हॉलीडे बिगिंस टू फिजी, इट कुड बी दैट. ओके, आई एम गेसिंग सारिका कि ये आपने जो भेजा है, शायद या तो आप फिजी जा रही हैं तो, या फिर आप जो हमारा टीज़र चल रहा है कि भाई ये एक ड्रीम वेकेशन है तो शायद उससे रिलेटेड हो. कुछ भी हो सकता है ना. एंड यू थैंक्ड हम फॉर दैट. सो आपने जब थैंक किया हम FM, तो इसका मतलब ये वो टीज़र ही है जिस पर आप को लग रहा है कि एक हॉलीडे बिगिंस, एक वेकेशन बिगिंस. तो क्या है ये, तो अ ड्रीम हॉलीडे बिगिंस टू फीजी. आपके हिसाब से वो फीजी जाने के लिए हम जो वेकेशन का जो टीज़र दे रहे हैं वो पता नहीं कहाँ के है. हम नहीं बताएंगे अभी, बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा. बट थैंक यू सारिका फॉर दिस. एंड साथ साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक ड्रीम टाइम होता है जब आपको आपके सेलिब्स लाइव देखने के लिए

0: स्टेज पर मिल जाते हैं। तो 25th ऑफ अगस्त के दिन स्पा करीना में आप एक सुपरस्टार यानी कि करण औजला को देख पाएंगे। पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर जो ये आपके लिए इक्की के साथ परफॉर्म करने वाले हैं, सम इनक्रेडिबल एनर्जी और कुछ ज़बरदस्त हिट सॉन्ग्स लाइव परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। बस हमारे फेसबुक के पेज पे आ जाइए। अगर आपको एक डबल पास जीतना है एक करण औजला के लिए, आपको मैसेज करना है और आप उस कमेंट सेक्शन में उनको टैग कीजिए और नाम आपका ड्रॉ में चला जाएगा।
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

0: Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: बात तो अद्भुत ये है कि एक कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो है -7.2 डिग्री रोटोरुआ में पता चला है, और साथ साथ ये पता चला कि तापो में जो है कोल्डेस्ट अगस्त टेम्परेचर -6.6 पामिस्टर नॉर्थ में, नया अगस्त का रिकॉर्ड है -3.5 और फांगरे में कोल्डेस्ट डे इज 0.4 डिग्रीज। तो भाई ये काफ़ी जगह एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर जो है, ऑकलैंड ने रिकॉर्ड किया 1.4 एंड इट्स द थर्ड कोल्डेस्ट अगस्त टेम्परेचर इन रिकॉर्ड। हैमिल्टन का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ एट -4.6 डिग्रीज, द थर्ड कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑन रिकॉर्ड। और नेपियर का -3.2 डिग्रीज, सेकेंड कोल्डेस्ट अगस्त टेम्परेचर जो बताया गया है। फाटकाने का -3 डिग्री, ओ माई गॉड, ये सोच सोच के ठंड लगती है। ऑकलैंड ने एक्सपीरियंस किया द कोल्डेस्ट डे इन 5 years विद -2.5 डिग्रीज रिकॉर्डेड एट फेनुआपाए एयरपोर्ट, एंड माउंट कुक में रिकॉर्ड किया -10 डिग्रीज ऑन थर्सडे मॉर्निंग। ये सोच सोच के ठंड लग रही है।

0: Eat better, live better.
1: तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कल क्या हुआ था. तो दरअसल ऐसा था कि मैं कोशिश करी एक वीडियो बना के उसकी पोस्ट करूं. तो हमारा डेस्क जो है, जो हमारा मॉनिटर, जो हमारा यू नो यहाँ कॉन्सोल है जिसमें हम साउंड आगे बढ़ाते हैं, माइक ऑन करते हैं, एक कॉन्सोल होता है. उस कॉन्सोल को हम यू नो इट्स एडजस्टेबल, ऊपर नीचे उसकी टेबल हम कर सकते हैं. तो पूजा कल अपने बड़े प्यार से सब क्लीन वीन करके स्प्रे व्रे मार के यू नो कि हाइजीनिकली यू नो शी लेफ्ट. एंड क्योंकि उनकी हाइट है तो उन्होंने अपना इस कॉन्सोल को जो है टेबल जो है एडजस्टेबल ऊपर नीचे हो जाती है, एडजस्टेबल है तो उन्होंने हाइट पे कर दी थी. अब वो उनकी हाइट और मेरी हाइट में फ़र्क है. तो मैंने आके, हमेशा मेरा काम होता है कि मैं डेस्क को मतलब जो नीचे करके एंड देन अपनी चेयर को नीचे कर लेती टू द लोएस्ट पॉसिबल बिकॉज इतनी हाइट नहीं है ना, 5'1" वाली बंदी हूँ मैं. ओके, नाउ इन बिटवीन द एडजस्टेबल टेबल एंड द ग्राउंड देर इज़ अ ट्रांसमिशन बॉक्स राइट साइड पे रखा हुआ है. शायद कल गलती से पूजा ने जो एक हमारे पास डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे होता है, अब वो स्प्रे सैंडी ने ला के रखा हुआ था कि भाई आप आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो स्प्रे मार सकते हैं, तो वो स्प्रे वहाँ रखा था. हो सकता है ट्रांसमिशन का जो बॉक्स था उस पर उन्होंने वो रख दिया. अच्छा ठीक है, मैंने तो देखा नहीं. मैंने आके भाई एज़ यूजुअल टेबल को सेट किया, कुर्सी को सेट करा, और जब टेबल को मैं सेट करने लगी उसके बाद 10 o'clock की न्यूज़ स्टार्ट हो गई और एक अलग से आवाज़ आनी शुरू हो गई. मैं तो डर गई. मैंने कहा माय गॉड, ये टेबल एडजस्ट करते ही कुछ होना शुरू हो गया और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है आप लोगों तक? हमारी आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए. हमारा स्टूडियो में कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ आग वाग लग गई है, कि कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया? तो मैंने फटाफट हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो स्टूडियो को संभालते उनको बुला लिया. उन्होंने लेफ्ट राइट साइड ऊपर नीचे टेबल के हर जगह देखा और उनको ये स्प्रे मिला. उन्होंने कहा तुमने तो स्प्रे दबा दिया था. ओह माय गॉड, दैट वाज माय मोमेंट. बट एनीवेज, इट वाज वेरी यू नो क्रिटिकल बिकॉज वो स्प्रे जो था, एक हमारा स्टूडियो है छोटा सा प्यारा सा, उसमें वो अगर स्प्रे भरता चला जाए, अब आप सोच सकते हैं उसके बाद क्या हो सकता है. इट कैन गेट हैजर्डस, एकदम हैजर्ड एक तरह से हो जाते हैं, क्योंकि आई स्टार्टेड चोकिंग आफ्टर दैट. एंड वो आपको ब्रीद करने के लिए फ्रेश एयर चाहिए होती है. सर्कुलेशन में अगर सारी जगह डिसइंफेक्टेंट की स्प्रे अगर आप रखेंगे तो खुद का क्या हाल होगा? तो कल मेरा वही हाल हुआ था. आह ओके, आई एम हियर रॉकिंग.
2: ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहां पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिल्ली से बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिल्ली? तो
4: आए आए बताओगे यार.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
6: Trades and business owners can now build big rewards with new PowerPass Pro Rewards by Bunnings. Earn Pro Reward dollars on eligible items to redeem off future purchases. The more you spend on qualifying items, the closer you get to that next level of rewards. Unlock tiered benefits to access fuel discounts with mobile card. Plus get exclusive member gifts, offers and loads more. Minimum spend limits and exclusions apply. See website for eligibility and all T's and C's. Sign up to PowerPass Pro Rewards today.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
8: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
7: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
8: Available at selected branches. T's and C's apply.
9: MediaWorks complaints. How can I help?
10: My kids won't shut up.
9: I'm not sure that's our problem.
10: They keep reciting lines from one of your radio ads.
9: Aw, cute. cute.
10: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
11: What do you want, son?
12: I want me some of that real southern chicken.
10: 28 times.
9: So where are you now?
10: Eating chicken.
13: Advertise with
14: Media Works.
13: New Zealand listens to us.
15: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy. And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
16: Contact supportive promo not applied. T's and C's and fees apply.
17: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
18: The sleepless nights. The aching knees. The energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise, and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.

कैलोरी साइकिल में अभी रोटियां होती हैं हमारी, कभी थिन क्रिस्पी रोटी होती है, अभी इसको अगर हम टैकोस बना दें, उस पर अपनी फेवरेट फिलिंग ऐड कर दें, जैसे कि आपने चपाती ले ली, उसके अंदर आपने बटर लगाया दोनों तरफ, उसके बाद थोड़े से होल्स उसमें बना दिए ताकि वो क्रिस्पीनेस उसके अंदर आ जाए, फिर इसको अवन में आपको बेक करना है 200 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे, निकालिए बाहर और स्टफिंग्स इसमें आप ऐड करिए, छोटे छोटे कच्चा प्याज, हरा धनिया, टमाटर डालिए, कोई सब्ज़ी डालिए, अगर आपके पास चिकन है तो वो चिकन आप उसमें ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया डालिए, एंड दैट्स अबाउट इट, आपके टैकोस तैयार, और गर्मा गर्म आप इन्हें खा सकते हैं, एज़ गुड एज एनी अदर टैकोस जो आपको मार्केट में भी मिलते हैं। बाय द वे आपको बता देते हैं, हमारे अनफिल्टर्ड ड्राइव में आप बातें कर मतलब हमारी जो टीम है सैंडी और रुजबिन, उन्होंने अभी कोहले से बात की जो प्रिंसिपल एडवाइज़र फॉर एम्प्लॉयमेंट सिस्टम गाइडेंस एंड एंगेजमेंट है एट द एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड, और इनके पास काफ़ी सारे आंसर्स थे ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या माफ़ कीजिए एम्प्लॉयमेंट राइट्स, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अनपेड ट्रायल्स, रियल केसेस जहाँ एम्प्लॉयर्स जो हैं इन्होंने लॉ ब्रेक किया है और काफ़ी पेनल्टीज फेस की हैं, किस तरह से वर्क प्लेस पर एक्सप्लॉयटेशन होता है, कुछ अनोनमस कंप्लेंट्स कैसे हम कर सकते हैं, इन सब की जानकारी अगर आपको चाहिए तो भाई आपको सिर्फ 5599 पे ड्राइव लिख के भेजना है और आपको ये इनका बहुत ही ब्यूटीफुल सा एपिसोड मिल जाएगा। दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: देखो वीडियो बनाने में तो मैं बहुत पुअर हूँ तो नहीं बना पाई मैं वीडियो एक उधर करा बट डजंट मैटर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में सभी को याद रखिएगा एंड स्टे वॉर्म ठंडा मौसम है और ऐसे में अपने जलवे दिखाने के लिए कहीं आप ठंड में बीमार ना पड़ जाएं तो इसी नोट पर कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार आज का दिन कहलाता है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे और ये वीकेंड का वार भाई आपके लिए है इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको रखना है अपना ख्याल मुलाकात होगी आपसे दिन कहलाएगा सोमवार सो लुक आफ्टर योरसेल्फ हैव अ ग्रेट वीकेंड एंजॉय योरसेल्फ स्टे वार्म हैव वार्म वाटर टू ड्रिंक ओके दिस इज कशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज ठीक है बाय